FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 23 मई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं और अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया।

0: निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिन कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना साथ ही विनिर्माण नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं जीवन का उद्देश्य विषय पर विचार।
2: मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर अब तक मनुष्य एक प्रश्न पूछता चला आया है, आखिर मानव जीवन का मकसद क्या है? क्या ये जीवन गुल्लर के भुनगे की तरह थोड़े ही समय में समाप्त होने वाला नाटक मात्र है? क्या इस जीवन की शुरुआत इसी पृथ्वी पर है या इंसान कहीं और सृजित होकर मात्र देह धारण के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता है? आखिर इंसान के जीवन का अर्थ क्या है? सदियों से गूंजते आए इस प्रश्न के उत्तर को शायद ही मनुष्य इस धरती पर ढूंढ पाए, क्योंकि वो भूल जाता है कि उसकी रचना खुद उसके हाथों ने नहीं की। वो भूल जाता है उसके जीवन अस्तित्व का मूल आधार वो खुद नहीं है। वो भूल जाता है कि उसकी लाखों कोशिशों के बावजूद वो केवल एक रचना मात्र ही है। लेकिन इंसान अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं करता है। वो अपने घमंड में चूर होकर अपनी जिंदगी की दौड़ में लगा रहता है। वो अपने घमंड में चूर होकर अपनी कमजोरियों को अनदेखा करता चला आया है। अंत में वो अपने घमंड में चूर होकर अपने सृष्टिकर्ता उस शक्ति उस परम ज्ञान और

0: जीवनदाता को नजरअंदाज करते हुए निराशा में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। भौतिक सुख सुविधाओं में लीन मानव अपनी धन लालसा में लिप्त होकर भौतिक चीजों की खरीद फरोख्त को अपनी तरक्की का मूल आधार समझता है। जी हाँ, भौतिक वस्तुओं के संग्रह में मानव अत्याचार, झूठ, फरेब और पाप करने से भी परहेज नहीं करता है। वो तमाम सुख सुविधाओं को ग्रहण करना ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समझने का भ्रम अपने अंदर समाये रखता है और जीवन पर्यंत इस मृग मरीचिका से बाहर निकलने का प्रयास भी मानव को अच्छा नहीं लगता। संपूर्ण ऐशो आराम की प्राप्ति को ही मानव जीवन का अर्थ समझता है। जी हाँ, ये है मानव, जो ईश्वर की सृष्टि का मुकुट माना जाता है, जो ईश्वर की रचना का मूल आधार है, जिसे धरती पर ईश्वर को प्यार करने और उसकी सच्ची खोज में लगे रहने के लिए बनाया गया था। और हाँ, इस मानव को धरती पर सुख संपन्न जीवन बिताने के बाद उस परम पिता परमेश्वर, जहाँ उसकी आत्मा और शरीर की रचना हुई है, उसमें लीन और संपन्न होने के लिए सृजित किया गया था। लेकिन आधुनिक ज्ञान और तकनीकी के चलते इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता उस परम आत्मा को अपनी मुट्ठी में करने की तमाम कोशिशें करता रहता है। प्रयोगशालाओं में उस जीवन तत्व को ढूंढने के लिए निरंतर कोशिश करता चला आया है, लेकिन अब तक के मानव इतिहास में इंसान न कभी अपने और न पूरे प्रपंच के सृष्टिकर्ता उस सनातन सत्य पर कभी विजय हासिल कर पाया है और न ही उसे समझ पाया है। सृजनहार भगवान की इच्छा है कि उसकी अनमोल कृति एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे में जीवन बिताए, अपने दिल की आवाज को सुनते हुए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए, दया दिखाते हुए एक परिवार के समान जीवन बिताए, जो पूरे ब्रह्मांड को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र में बांध देती है। यही है ईश्वर की इच्छा हम मानवों के लिए।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे जीवन का उद्देश्य पर विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रभु जी तुम बिन कौन हमारा, ये मन हर पल तुझे पुकारे। भीड़ भरी इस दुनिया में बस तेरे चरण ही लगे प्यारे। जब कोई साथ न दे तब तेरा नाम ही संभाल लेता है, टूटती हुई उम्मीदों को फिर से जीवित कर देता है।

कृष्ण की बंसी जब मधुर स्वर में गूंज उठती है, मन की हर बेचैनी जैसे खुद ही शांत हो जाती है। उस तान में छुपा होता है प्रेम, भक्ति और अपनापन। जो सुन ले श्याम की बंसी, उसका मन पवित्र वृंदावन बन जाता है।

इस भजन में बंसी के सौभाग्य का वर्णन है जिसे कृष्ण अपने अधर से लगाए रहते हैं, लेकिन बंसी की तपस्या को कोई नहीं जानता।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मन का मान त्यागो, तभी प्रभु हृदय में उतर पाएंगे। अहंकार के रहते हम उनसे दूर ही रह जाएंगे। झुकता वही है जिसे भक्ति का सच्चा ज्ञान होता है। समर्पण में ही ईश्वर का सबसे सुंदर स्थान होता है।

ठुमक चलत रामचंद्र, चरणों में मधुरता छा जाती है। बाल रूप ही हरदा भक्तों के मन को भा जाती है। उनकी भोली मुस्कान में पूरा अयोध्या धाम बसता है। बाल श्री राम का दर्शन ही मन को पावन कर देता है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। राम में मर्यादा का प्रकाश, श्याम में प्रेम की धारा है। दोनों ही रूपों में प्रभु ने भक्तों को सहारा है। राम मन को संयम सिखाएं, श्याम भक्ति में डुबो जाएं। जिस हृदय में दोनों बस जाएं, वहां स्वयं आनंद समाए।

भोले भंडारी की कृपा से सूना मन भी भर जाता है। उनके दर पर आया हर दुखी सुकून पा जाता है। न राजमहल न वैभव, बस भक्ति उन्हें प्यारी है। महादेव का हृदय ही सबसे बड़ी दुनिया सारी है।

इसी भजन के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज इस कार्यक्रम में आपने महेंद्र कपूर, बिजोया चौधरी, लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और सुरेश वाडकर के गाए भजन सुने।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज की बात। आज की बात सुनने वालों को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। आज है 23 मई और आइए जानते हैं इतिहास में आज के दिन की खासियत। श्रोताओं, हर साल 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति नालव्रण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रसूति नालव्रण जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए वैश्विक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को आधिकारिक रूप से 23 मई 2013 को मनाना

शुरू किया। श्रोताओं, ये प्रसव के दौरान होने वाली सबसे गंभीर और दुखद चोटों में से एक है, जो मुख्य रूप से गरीब और वंचित महिलाओं को प्रभावित करती है। लंबे और बाधित प्रसव के दौरान यदि समय पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसे सिजेरियन नहीं मिलती तो जन्म नलिका और मूत्राशय या मलाशय के बीच एक छेद बन जाता है। इसके कारण महिलाओं में मूत्र या मल अनियंत्रित रूप से रिसने लगता है। शारीरिक पीड़ा के साथ साथ ये महिलाओं के लिए सामाजिक बहिष्कार, गहरा अवसाद और भारी गरीबी का कारण बनता है। श्रोताओं, ये एक पूरी तरह रोकी जा सकने वाली बीमारी है। एक साधारण सर्जरी के माध्यम से इसका इलाज संभव है। श्रोताओं, वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम है उसका स्वास्थ्य एक अधिकार है। फिस्टुला और प्रसव की चोटों को समाप्त करने में निवेश करें। श्रोताओं, हर साल 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1951 में चीन द्वारा तिब्बत पर जबरन 17 सूत्री समझौते थोपे जाने की याद दिलाता है। श्रोताओं, जहां तिब्बती समुदाय इसे अपने अधिकारों के हनन के रूप में काला दिवस के रूप में याद करता है, वहीं चीन इसे शांति दिवस के रूप में मनाता है। 23 मई 1951 को चीनी सरकार और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच बीजिंग में 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को वैध बना दिया। दुनिया भर के तिब्बती और उनके समर्थक इस दिन चीन की नीतियों का विरोध करते हैं और तिब्बत की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। श्रोताओं, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कमलाबाई होसपेट का जन्म 23 मई 1896 को श्रीपुर नासिक में हुआ था। ये नागपुर स्थित मटरू सेवा संघ नामक सामाजिक संस्था की सह संस्थापिका थी। कमलाबाई होसपेट को उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री और जमलालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 नवंबर 1981 को इनका स्वर्गवास हो गया। श्रोताओं, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता राखालदास बंदोपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 12 अप्रैल 1885 को ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। श्रोताओं, ये भारतीय पुराविदों के उस समूह में से एक व्यक्ति थे जिसमें से अधिकांश ने 20वीं शती के प्रथम चरण में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के सहयोगी के रूप में पुरातात्विक उत्खनन शोध तथा स्मारकों के संरक्षण में विशेष ख्याति प्राप्त की थी। 1922 में बौद्ध स्तूप की खुदाई के सिलसिले में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता की खोज करना इनका महत्वपूर्ण कार्य था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द ओरिजिन ऑफ बंगाली स्क्रिप्ट, हिस्ट्री ऑफ ओरिसा, बास रिलीफ्स ऑफ बादामी, शिव टेम्पल ऑफ भूमरा आदि। 23 मई 1930 को राखालदास बंदोपाध्याय का निधन हो गया। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार वसुंधरा कोमकली का जन्म 23 मई 1931 को जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। ये अपने समय के प्रसिद्ध संगीतकार कुमार गंधर्व की पत्नी थी। श्रोताओं, ये भारत के प्रसिद्ध संगीत घराने ग्वालियर घराना के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी। ये बहुत ही सुघड़ गायिका थी। इन्होंने पंडित कुमार गंधर्व की गायन शैली को आगे बढ़ाया और देवास का नाम रोशन किया। वर्ष 2009 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। 29 जुलाई 2015 को इनका स्वर्गवास हो गया। श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे मूक, शांत और बेहद अद्भुत जीव के बारे में जिसकी पहचान सदियों से धैर्य और निरंतरता के प्रतीक के रूप में हो रही है। श्रोताओं, आज 23 मई है और आज पूरी दुनिया में विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। श्रोताओं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस दिन की शुरुआत कब और क्यों हुई। साल 2000 में अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम अमेरिकन टर्टोइस रेस्क्यू है ने इस दिन को मनाने की नींव रखी थी। इस संगठन की स्थापना मार्शल थॉम्सन और उनकी पत्नी सुसान टिटेलम ने की थी। श्रोताओं, इनका उद्देश्य बहुत सरल लेकिन गहरा था, दुनिया को ये बताना कि जो जीव करोड़ों सालों से हमारी पृथ्वी को सवार रहा है आज इंसानी लालच की वजह से वो विलुप्ति की कगार पर है। श्रोताओं, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम राजा महाराजाओं या मानव सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन कछुओं का इतिहास तो मानव सभ्यता से भी करोड़ों साल पुराना है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कछुए इस धरती पर लगभग 200 से 220 मिलियन सालों से रह रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब इस धरती पर विशालकाय डायनासोर घूमते थे तब भी कछुए मौजूद थे। श्रोताओं, डायनासोर जैसा शक्तिशाली जीव एक महाविनाश में खत्म हो गया, लेकिन अपनी धीमी चाल, मजबूत बनावट और गजब की अनुकूलता के कारण कछुए उस महाविनाश से बच निकले। श्रोताओं, आज जब हम कछुओं को देखते हैं तो हम असल में हम इतिहास के चलते फिरते जीवाश्म को देख रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि

0: पर्यावरण के लिए कछुए इतने जरूरी क्यों हैं? श्रोताओं, लोग अक्सर सोचते हैं कि एक धीमा जीव पर्यावरण को क्या ही फायदे पहुंचा सकता है, लेकिन प्रकृति ने इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। श्रोताओं, कछुए मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, टर्टल जो पानी में रहते हैं और टर्टोइज जो जमीन पर रहते हैं। समुद्र के रखवाले, समुद्री कछुए समुद्र के नीचे उगने वाली घास को खाकर उसे ट्रिम करते हैं। अगर ये घास ज्यादा बढ़ जाए तो समुद्री पानी में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ सकता है। कछुए इस घास को स्वस्थ रखते हैं, जिससे मछलियों को रहने और अंडे देने की जगह मिलती है। नदियों के डॉक्टर, श्रोताओं, मीठे पानी और नदियों के कछुए पानी में मौजूद मृत जीवों और सड़ी गली चीजों को खाकर पानी को साफ रखते हैं। ये जल प्रदूषण को रोकने में नेचुरल क्लीनर का काम करते हैं। जमीन पर रहने वाले कछुए जो फल और पौधे खाते हैं, उनकी बीज अपनी बीट के जरिए दूर दूर तक फैलाते हैं। श्रोताओं, कछुए की पाचन क्रिया से गुजरने के बाद इन बीजों के अंकुरित होने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कछुए अनजाने में ही सही नए जंगल उगाने का काम करते हैं। श्रोताओं, कछुओं की औसत उम्र 100 से 150 साल होती है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित कछुआ जोनाथन नाम का एक कछुआ है, जो सेशेल्स द्वीप पर रहता है। इसकी उम्र 190 साल से ज्यादा हो चुकी है। श्रोताओं, कछुए की पीठ पर जो कठोर शेल होता है, वो कोई अलग से लगी ढाल नहीं, वो उनकी पसलियों और रीढ़ की हड्डी का ही बड़ा हुआ हिस्सा है। इसमें लगभग 50 अलग अलग हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। श्रोताओं, मादा समुद्री कछुए अंडे देने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंडे देने के लिए उसी समुद्र तट पर लौट कर आते हैं जहां बरसों पहले उनका खुद का जन्म हुआ था। श्रोताओं, जो जीव करोड़ों सालों के बदलावों को झेल गया, वो आज इंसानी लालच के चलते खतरे में है। समुद्र और नदियों में हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक फेंका जाता है। पानी में तैरती हुई प्लास्टिक की थैलियां बिल्कुल जेलीफिश जैसी दिखती हैं, जो कछुओं का मुख्य भोजन है। कछुए अनजाने में इन्हें निगल लेते हैं। इन्हें पालने के लिए इनकी अवैध तस्करी की जाती है। कछुओं के साथ एक बहुत ही अनोखी बात होती है कि उनके अंडों से नर पैदा होगा या मादा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रेत का तापमान कितना है। श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ बात न करें बल्कि इनकी संरक्षण के लिए कदम उठाएं। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कछुए की धीमी चाल हमें सिखाती है कि जीवन में बिना रुके धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। आज इस विश्व कछुआ दिवस पर आइए हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा लें कि हम इस शांत और बेजुबान जीव के अस्तित्व की रक्षा करेंगे। अगर कछुआ बचेगा तभी हमारी नदियां और समंदर बचेंगे और तभी ये धरती बचेगी। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और उसके बाद हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानां आतंकवादिनां आतंकिसंघटनानां च विरुद्धं अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन

0: इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेश मंत्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमे विभागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्य प्रदेशे पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45°C यावत् न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे।

0: कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा चांगना सैरी सीपी माधवन नंबूथरी का कर्नाटक गायन। श्रोताओं, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 7:10 पर श्रीराम चरितमानस से सुनिएगा 102वां प्रसंग। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं लोक मंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर और शैलस्वर कार्यक्रम में शाम 5:05 पर। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दोपहर 2 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा प्रातः 8:23 पर और सुबह 11:23 पर। मिले जुले गीत और गज़लों का कार्यक्रम सबरंगों का सुबह 10:05 पर। सुगम संगीत दोपहर 1:15 पर और सबरस रात्रि 8 बजे। दोपहर 12:30 पर अर्पण कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बच्चों को सिखाएं नैतिकता। साथ ही सुनिएगा बच्चों में नैतिकता का विकास है जरूरी विषय पर शिक्षिका श्रीमती आशा जोशी से दीपा जोशी की बातचीत। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लेखक मोईरांग थेम इनाव सिंह के मणिपुरी नाटक का हिंदी रूपांतरण नाटक 2 रास्ते। दोपहर 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिएगा मक्का की फसल की वैज्ञानिक खेती विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार की वार्ता। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा साइबर बुलिंग।

ना करें ना सहें। साथ ही प्रश्न मेरा रहा रहेगा आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पर आधारित। प्रतिभागी होंगे पवन कुमार, गौरव आर्या, सोहन आर्या और देवेंद्र आर्या। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत योजना और मिशन लाइफ कचरा कम करें। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कुछ भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा शाम 6:41 पर। शाम 7 किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन। साथ ही सुनिएगा कुर्मला कीट प्रबंधन विषय पर डॉक्टर प्रताप ए दिवेकर से प्रमोद कुमार पांडे की भेंटवार्ता। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे परमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में सुबह 9:05 पर। सुरबहार कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में सुबह 11:00। मेरी पसंद कार्यक्रम में दोपहर 12:00। एक ही फनकार कार्यक्रम में दोपहर 2:45 पर। सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में अपराह्न 3:00। फिल्म संगीत कार्यक्रम में शाम 7:40 पर और इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से 102वां प्रसंग।

श्रीराम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

श्री रामचरितमानस से अभी आप सुन रहे थे 102वां प्रसंग। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क, पेयजल, विद्युत और पर्यटन विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की। कुंभ मेला 2027 को ग्रीन कुंभ बनाने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहयोग से हरित हरिद्वार अभियान संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में टी टूरिज्म को देगी बढ़ावा। और वनाग्नि रोकथाम और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में पिरूल एकत्रीकरण अभियान शुरू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क, पेयजल, विद्युत और पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6 नई ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए 23,86,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित अश्वसनीय पशुओं के बीमा के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने चंपावत के तामली क्षेत्र में पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिए लिफ्ट पेयजल योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा बनबसा नगर पंचायत में खराब मोटर मार्गों और नालियों के निर्माण कार्यों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त सल्ट, यमकेश्वर, अनिखेत और भीकियासैंण क्षेत्रों में मंदिरों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है। वहीं टनकपुर बनबसा क्षेत्र में 220/33 kV विद्युत स्टेशन स्थापना परियोजना के लिए भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने हरबतपुर क्षेत्र में सुरक्षा दीवार और पुलियों के निर्माण, कक्षा क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क एवं तालाब सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह

रावत ने श्रीनगर क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। डॉ. रावत ने कहा कि नए विद्यालय भवनों के निर्माण से बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षिक वातावरण में अध्ययन का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कंप्यूटर कक्षों की स्थापना से छात्र छात्राएं डिजिटल शिक्षा व तकनीकी ज्ञान से जुड़ सकेंगे, जिससे वे भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए बेहतर रूप से तैयार हो पाएंगे। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने विद्यालय परिसरों का निरीक्षण कर छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनकी पढ़ाई उपलब्ध सुविधाओं व आवश्यकताओं की जानकारी ली। कुंभ मेला 2027 को ग्रीन कुंभ बनाने के लिए हरिद्वार मेला प्रशासन ने एक अभिनव पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत मेला प्रशासन द्वारा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहयोग से हरित हरिद्वार अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के लिए मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार डॉ. ललित नारायण मिश्रा को समग्र नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डॉ. मिश्रा ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि हरित हरिद्वार अभियान के अंतर्गत जन सहभागिता के माध्यम से व्यापक स्तर पर पौधारोपण कराया जाएगा, जिसे जनता ही जगह और प्रजाति बताएगी और प्रशासन की टीम उस जगह पर वृक्षारोपण करेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। उन्होंने आमजन, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं से हरित हरिद्वार अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

0: पार्टिसिपेशन के माध्यम से हमारा एक मिशन है जिसमें हम कुंभ मेला क्षेत्र से शुरुआत कर रहे हैं। कुंभ मेला अधिकारी महोदय द्वारा एक स्कीम बनाई गई है जिसमें जनता ही बताया गया कि कहाँ पौधे लगाने हैं, किस जगह पर पौधे लगाने हैं। और ये प्रस्ताव हमें दो नंबर हैं जिन पर हमने कहा है कि ये प्रस्ताव हमें पब्लिक दे सकती है, जनता दे सकती है, किस जगह पौधे लगाने हैं। प्रस्ताव आपका होगा, जगह आप बताएंगे, प्रजातियाँ आप बताएंगे कि कौन सी प्रजाति लगानी है, किस तरह की लगानी है, और हम आपको पौधे भी उपलब्ध कराएंगे और हमारी टीम जाकर के वहाँ पौधे लगाएगी भी। तो इसके लिए दो डेडिकेटेड नंबर जारी किए गए हैं, मैं उन नंबरों को एक बार रिपीट करना चाहूँगा। पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 9084700675, कॉलिंग नंबर है 9084700674। इन नंबरों पर जो आपका प्रस्ताव है, जो जनता का प्रस्ताव है, वो आप हमें दे सकते हैं और इस तरह से हम अपने कुंभ क्षेत्र को और हरिद्वार को हरित हरिद्वार बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुरोध है आपसे कि आपका जो भी प्रस्ताव है कृपया समय बढ़ ढंग से हमें उपलब्ध करा देंगे तो हमें सुविधा होगी, जहाँ प्लांटेशन चाह रहे हैं वहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं। तो आपकी सहभागिता बढ़ चढ़ करके इसमें अपेक्षित।
1: उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और स्थायी हरित वातावरण विकसित करना है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: राज्य सरकार प्रदेश के टी टूरिज्म को बढ़ावा देगी। इसके लिए राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और चाय बगानों को पर्यटन से जोड़कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। श्री जोशी ने असम की तर्ज पर उत्तराखंड में भी वन विभाग की रिक्त भूमि पर चाय बगानों के विकास की संभावनाएं तलाशते हुए वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चाय की ब्रांडिंग व विपणन के लिए प्रतिष्ठित समूहों से समन्वय स्थापित करने को भी कहा। श्री जोशी ने प्रदेश के राजकीय उद्यानों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी टी टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में गंगा स्वच्छता एसटीपी प्लांटों के संचालन व सुधार कार्यों की समीक्षा की गई। जिला गंगा समिति की मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों में एसटीपी प्लांटों को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी मानकों के अनुरूप संचालित करने की प्रगति रिपोर्ट मांगी। समीक्षा के दौरान जल संस्थान मुनिकिरेती गंगा इकाई द्वारा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए एसटीपी प्लांट पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्माण व अनुरक्षण इकाई गंगा श्रीनगर के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि देवप्रयाग में 217 मीटर सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। बैठक में भागीरथीपुरम स्थित एसटीपी प्लांट के नवीनीकरण को लेकर भी चर्चा की गई। वनाग्नि रोकथाम और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में पिरूल एकत्रीकरण अभियान शुरू किया गया है। विकासखंड जखोली के दरमोला में आयोजित कार्यक्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन और मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने पिरूल से भरे वाहन को सोनप्रयाग के लिए रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जंगलों में आग फैलाने वाले प्रमुख कारणों में प्रमुख पिरूल को हटाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस कार्य से जोड़कर उन्हें अतिरिक्त आय का अवसर भी दिया जा रहा है।
3: आज पिरूल एकत्रीकरण अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो वर्तमान में वनाग्नि हो रही है उसको रोकने के लिए पिरूल जो इधर उधर पड़ा रहता है, हमारी एसएचजी की महिलाएं इसको एकत्र कर रही है और वन विभाग के साथ एमओयू हुआ है इसका, जिसमें 10 रुपये वन विभाग द्वारा और जो हमारी एक दूसरी संस्था है हाई फीड, उनके द्वारा 2 रुपये दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से महिलाएं को पर केजी धनराशि दी जाएगी और इसका उपयोग सोनप्रयाग में हमारे यहाँ पास जो श्री केदारनाथ जी की यात्रा के दौरान जो खच्चरों से या घोड़ों से जो लीड आती है, जो गंदगी होती है उसको और पिरूल को मिक्स करके उनके कोयले बनाया जा रहा है।
1: प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने बताया कि एकत्र किए गए पिरूल का उपयोग ईंधन और औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। जल विकास अधिकारी अनिता पवार ने बताया जिले की 13 आजीविका संघों से जुड़ी 114 महिलाएं इस अभियान में भाग ले रही हैं और अब तक 434 कुंतल पिरूल एकत्र किया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क प्रदेश में सड़क पेयजल विद्युत और पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की। कुंभ मेला 2027 को ग्रीन कुंभ बनाने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहयोग से हरित हरिद्वार अभियान संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में टी टूरिज्म को देगी बढ़ावा और वनाग्नि रोकथाम और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में पिरूल एकत्रीकरण अभियान शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं मनोज कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कमला देवी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: खुशहाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं कमला देवी का गाया एक और कुमाऊनी लोकगीत।

कमला देवी के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा लोक मंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

0: आता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र

0: नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता आपसी सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोड ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो

0: सोमवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का

0: बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ते की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared

अभी आप सुन रहे थे शर्मिष्ठा बिष्ट का राग नट भैरव में गाया ख्याल। आइए अब सुनते हैं स्वपन चौधरी का तबला वादन, द्रुत रचना, रूपक ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे स्वपन चौधरी का तबला वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.91 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट यू सी

www.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इनके पास अवैध दस्तावेज थे। ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पलडाम में एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र पाए गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया। भारतीय सेना के अधिकारी

0: इनके पास अवैध दस्तावेज थे। ये मजदूर तिरुपपुर जिले के पलडामे में एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र पाए गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ रिश्तों की खूबसूरती ये होती है कि उन्हें ज़्यादा अल्फाजों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक एहसास ही काफ़ी होता है दिल तक पहुंचने के लिए। कभी किसी की बातें शायरी सी लगती हैं तो कभी किसी की मुस्कान एक खूबसूरत गज़ल बन जाती है, और फिर धीरे धीरे ज़िंदगी का हर लम्हा किसी प्यारे से गीत की तरह महसूस होने लगता है। शायद इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं, जहां एक दिल शायर बन जाता है और दूसरा उसकी सबसे हसीन शायरी। तो चलिए श्रोताओं, इस प्यारे से एहसास और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे साजन फिल्म से। फायज अनवर और समीर के लिखे बोलों को संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। फरमाइशकर्ता थे लमगड़ा अल्मोड़ा से पुष्कर बिष्ट, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईशाप्रीत शर्मा, बिपाशा शर्मा और माया कुमार, भूर चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, राशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के

सभी सदस्य। श्रोताओं, लीजिए पेश है राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में आर किरण का लिखा गीत। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, ए हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें किया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवगी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री, मेघाराशि और माधुरी किरण। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष ने।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं परमर्शी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के लिए पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम तमन और अभिजोत, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, ग्राम दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर, सांबल पूर्व कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं रोटी फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है।

इस गीत के बाद लीजिए पेश है लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में राम लखन फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के इंतज़ार में है समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावले, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है गीत निर्झर। श्रोताओं, लीजिए पेश है रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों के। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाहड़कर, राही, श्रीमती सरिता ग्वाहड़कर, प्रिंस एकांश ग्वाहड़कर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता ग्वाहड़कर, सिद्धांत ग्वाहड़कर, लाडला टुकटुक ग्वाहड़कर। आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वाहड़कर, सुमित ग्वाहड़कर, कुमारी ध्वनि ग्वाहड़कर परी। मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

इस गीत के बाद लीजिए पेश है जानी दुश्मन फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। वर्मा मलिक के लिखे बोलों की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत के इंतज़ार में हैं बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। राजनगर से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, माला मिश्रा, विभा मिश्रा, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रूपा इलाहाबादी, रश्मि और नीलम गुप्ता। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी। औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, अंशुमन ओवी, सुभाष, सदानंद, नीरज और विराज।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के लिए, फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभम दीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, गंजडुंडवारा से शमशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, राजस्थान से कृष्ण कुमार डाभी, भूपत कुमार डाभी,

राधा ढाबी, विक्रम अर्चना और साक्षी ढाबी, गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा, लुधियाना से विनोद पुरी, वीपी रांजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रमा पुरी, पाली पुरी, सुनील पाठक और विनोद पुरी। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं जानवर फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में, शब्द रचना समीर की है।

इस गीत के बाद कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है फरीब फिल्म का गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ों में। जतिन ललित के संगीत निर्देशन में शब्द रचना समीर की है और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पाटन गुजरात से धीरज वीरावारी, छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता हागोड़े, कुमारी प्रियाली हागोड़े, पार्थ हागोड़े और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या खुराना, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एसके पप्पी खुराना। महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, शिवकुमार शर्मा, बेबी वैदही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवट जी। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डावर। राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फरीब फिल्म का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को है, अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक

विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर त्रिपुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन

0: लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं निदा फाजली के कलाम से। फनकार हैं भूपिंदर सिंह।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सवर्ण कार्यक्रम में लीजिए पेश है मेहदी हसन की गाई ये गजल।
2: गजल दाव की गजल पेश कर रहा हूं। गजब की याद के वादे पे इतबार किया।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग. कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है जगजीत सिंह की गाई ये गजल.

जगजीत सिंह की गाई इसी गजल के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा सबरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने उत्तरकाशी में खेल विभाग व खेल प्रशिक्षण केंद्र और स्पोर्ट्स हॉस्टल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री सिन्हा ने स्पोर्ट्स हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खेल प्रशिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने प्रशिक्षकों से खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं, डाइट और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग विभिन्न होटल, ढाबों और भोजनालयों में छापेमारी और निरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में माँ चंडी देवी परिसर में और भूपतवाला क्षेत्र में विशेष जाँच अभियान चलाया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में टीम ने चंडी देवी मंदिर परिसर और आसपास स्थित 6 कैंटीन और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल के नमूने जांच के लिए गए। वहीं एक जलपान गृह में फूड लाइसेंस और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिलने पर संचालक को नोटिस जारी किया गया। भूपतवाला क्षेत्र में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में 5 होटल और ढाबों का निरीक्षण किया गया। यहाँ पनीर और लाल मिर्च पाउडर के नमूने जांच के लिए लिए गए। साथ ही संचालकों को स्वच्छता मानकों का पालन करने, खाद्य पदार्थों को ढककर रखने और कूड़े के उचित निस्तारण के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा अभियान के तहत चमोली जिले के मलारी गांव में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यान, पशुपालन, पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग सहित कई विभागों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी भी दी। शिविर में सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारिका ने विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने ऐसे शिविरों को उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी नियमित आयोजन की मांग की। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा अभियान का उद्देश्य दूरस्थ जनजाति क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आवास और आजीविका जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना तथा जनजाति समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने इस वर्ष उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को करियर, समय प्रबंधन और जीवन में लक्ष्य निर्धारण से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा संतुलित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने को कहा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से रोड सेफ्टी और विद्यालय आने जाने के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही अभिभावकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया। देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी

0: योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। पिथौरागढ़ में भारतीय सेना की मध्य कमान और देहरादून स्थित थिंक टैंक के संयुक्त तत्वावधान में भारत के पड़ोस में रणनीति, संस्कृति, निरंतरता, विरोधाभास और समकालीन निहितार्थ विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में राष्ट्रीय सुरक्षा और बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, रणनीतिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, छात्रों और एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। वक्ताओं ने सीमा प्रबंध, सैन्य रणनीति, सूचना युद्ध, ग्रे जोन वॉरफेयर और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी के दौरान पंचशूल ब्रिगेड और सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य अकादमिक सहयोग, शोध और युवाओं में रणनीतिक अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हम बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के बारे में।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, शाहरुख खान बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और टेलीविजन पर्सनालिटी भी हैं। इन्हें लोग प्यार से बॉलीवुड का बादशाह, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग खान भी कहते हैं। शाहरुख खान के करियर की शुरुआत टेलीविजन से हुई थी। दिल दरिया, फौजी, सर्कस जैसे सीरियल से इन्होंने अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म दीवाना से की थी, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उस समय ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी फिल्म ने शाहरुख खान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। इसके बाद शाहरुख खान लगातार सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते चले गए।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, इसके बाद शाहरुख खान ने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की, जिनमें डर, बाजीगर और अंजाम शामिल है। इनके द्वारा अभिनीत 11 फिल्मों ने विश्व भर में 100 करोड़ का व्यवसाय किया। श्रोताओं, शाहरुख खान की कुछ फिल्में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, देवदास, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, रावण, कभी खुशी कभी गम, कल

होना हो, वीर ज़ारा अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में रही हैं और इन सभी फिल्मों ने विश्व भर में 100 करोड़ का व्यवसाय किया। इसके अलावा बाजीगर, डर, अंजाम, कभी हाँ कभी ना, करण अर्जुन, चाहत, यस बॉस, परदेस, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, मैं हूं ना, डॉन टू, माय नेम इज़ खान, जब तक है जान और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी प्रसिद्ध फिल्मों से शाहरुख खान ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया।

स्थित है। इसका पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को ये पूरे भारत में देखी गई। श्रोताओं, इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के पुत्र आदित्य चोपड़ा ने किया। इस पे प्रमुख कलाकार शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी थे। श्रोताओं, इस फिल्म के नाम सबसे ज्यादा चलने का रिकॉर्ड है। ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में 13 सालों से भी ज्यादा समय तक चली। मार्च 2009 में इसने मुंबई के मराठा मंदिर में 700 सप्ताहों तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। श्रोताओं, इस फिल्म ने भारत में 58 करोड़ रुपए जबकि विदेशों में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म से शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी काफ़ी मशहूर हो गई।

श्रोताओं, शाहरुख खान और काजोल की 1995 में बनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दर्शकों को बहुत पसंद आई। ये उस समय की बेहद रोमांटिक फिल्म मानी जाती है जो DDLJ के नाम से भी

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, शाहरुख खान द्वारा दोनों हाथों को फैलाकर किए जाने वाला स्टेप आज एक सिग्नेचर स्टेप बन चुका है। इन्हें इनके फिल्मी करियर के दौरान कई पुरस्कार मिले। ये फिल्म फेयर पुरस्कारों में 30 बार नामांकित हो चुके हैं, जिनमें से 14 बार इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया है और इसमें भी 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। श्रोताओं, जिन फिल्मों के लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त किया वो फिल्में हैं, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, देवदास, स्वदेश, चक दे इंडिया और माय नेम इज खान आदि। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा सन 2005 में शाहरुख खान को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है।

श्रोता हूँ, आज इस कार्यक्रम में आपने दीवाना, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है फिल्मों के गीत सुने। इसी गीत के साथ ही आज के सुरबहर कार्यक्रम से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत आपने एलओसी कारगिल फिल्म से सुना। इस गीत को आवाज दी थी सोनू निगम ने, जावेद अख्तर के लिखे बोलों की तर्ज बनाई थी अनु मलिक ने। आइए आप सुनते हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया परदेसी बाबू फिल्म का गीत। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का है।

रन लीजिए पेश है इस फिल्म का गीत कुणाल गांजावाला और ऋचा शर्मा की आवाजों में। हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है समीर ने।

किए गए रोजगार मेले के इस क्रम में आज हम 19वां अंक लेकर के उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए 19 रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर नियुक्ति सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों में संख्या में वृद्धि हुई है, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें भी टाइमलाइन अथवा समय सीमा का अनुशासन बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीदवारों का नियुक्ति प्रणाली में विश्वास भी बढ़ा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का मेरिट भी श्रेष्ठ रहा है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में गत कुछ वर्षों में और 2024 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपने लाल किले से आह्वान किया था, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें जाती रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अनेकों रिफॉर्म्स लाए हैं जिसके परिणाम स्वरूप रिक्रूटमेंट साइकिल की अवधि में या अवधि काल में औसतन 15 महीने से घटकर अब 8 महीने हो गया। अब परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो रही है। उम्मीदवार के लिए फिजिकल डोजियर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डोजियर उपलब्ध कराया जा रहा है और SSC पोर्टल पर लॉग होकर के उम्मीदवार अपने एग्जामिनेशन सेंटर का इंतखाब भी कर सकता है। परीक्षा के फौरन बाद आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत हो या शंका हो तो वो अपनी ग्रीवेंस भी दर्ज कर सकता है। और अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और इनोवेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है और इस प्रैक्टिस का नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश इम्तहान में अपीयर नहीं हो पाता तो उसकी वैकेंसी खाली ना जाए इसलिए अगले उम्मीदवार को भी मौका दिया जा सकता है। इसी तरह UPSC ने यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सेंटर ऑफ चॉइस की सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है और अभी पिछले ही साल प्रतिभा सेतु यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल इंप्लॉयर्स उनको एंगेज कर सके। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्म योगी प्रारंभ किया गया है जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्म योगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का

0: प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा ये भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरी के बाहर के विकल्पों की तरफ भी रुझान करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की संख्या 2,26,719 तक पहुंच गई है और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जनरेट होने वाले जॉब्स की संख्या 23 से 24 लाख, पेटेंट्स की संख्या 1,10,000 से अधिक। हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है और छठे दर्जे पर खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस की हैं। यहीं पले बले, यहीं उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, जिनमें से 50% से अधिक रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदेही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा है, खासतौर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना ना की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चन्हाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ भी की। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हरेक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता, आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं

0: विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा आरपीएफ कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, सीपीएसई, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें यहां पहुंचाने के लिए हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन
उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद

सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। UAE और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प

2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है हर स्तर पर।

काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को

मजबूत किया जा रहा है। पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है। किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से हैं। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु

0: ही है, सरकार का सामर्थ्य आप ही है, जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही है और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है।

किरणों की चमक, चंदा की चांदनी, फूलों की बहार, रिमझिम की फुहार, कलियों की मुस्कान, चमन की महक, आज की मेरी पसंद, जिंदगी की एक खास रहनुमाई, खूबसूरती। कार्यक्रम की सभी श्रोता दोस्तों को माधुरी का स्नेहिल अभिवादन।

दोस्तों, खूबसूरती हर रूप में अनूठी होती है। ये न केवल बाहरी सौंदर्य में बल्कि उससे कहीं ज्यादा आत्मिक और भावनाओं में बहती है। जहाँ भी भावों का मिलन होता है, संतुलन का चरम होता है, वहीं नजरों में खूबसूरती आकर बस जाती है।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी पसंद, और आज मेरी पसंद है खूबसूरती। दोस्तों, खूबसूरती ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। किसी शख्स के लिए तन की सुंदरता मायने रखती है तो किसी के लिए मन की सुंदरता। हम खूबसूरती को किसी एक परिभाषा में बांध नहीं सकते। प्रकृति को गौर से देखें तो हर जर्रे पर खूबसूरती छलक पड़ती है, जिसे जुबान से बयां करना भी आसान नहीं होता, पर कोशिशें बदस्तूर जारी रहती हैं। फूल ही फूल याद आते हैं आप जब जब भी मुस्कुराते हैं।

दोस्तों, खूबसूरती हमें खुशी देती है, जिंदगी में ऊर्जा भरती है। बस निहारने के लिए मन की आंखें होना जरूरी है। मिश्री घोलती किसी की बातें, हर राह पर हौसला देती बाहें, हर आशय को प्यार से समझ लेने की कला, हर शख्स के मन की दशा को पढ़ने का हुनर, शिकायतों से दूर का नाता, दिलो दिमाग को हर लम्हा सकारात्मक बनाए रखने का अंदाज, जिंदगी का शुक्रगुजार होना, ये सब खूबसूरती नहीं तो और क्या है। तेरे दिल के कायल हैं हम, तेरे दिल के कायल हैं हम, मेरा तो ये जहां तुझ में है।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता, जिंदगी खुशी और गम के एहसासों का नाम है, मगर खूबसूरत तो वही है जिसके अंदर गम को छिपाकर मुस्कुराने की ताकत है। और मुस्कुराते चेहरे भला किसे पसंद नहीं होते। रुआंसे चेहरों से सभी दूरी बनाते हैं। दिल के परतों में गमों के साए हैं, दिल के परतों में गमों के साए हैं, बहते आंसुओं को पलकों में छिपा लेते हैं। यूं ही नहीं कहा करते हैं लोग, ये मुस्कुराने की अदा कैसे है।

ये थी आज की मेरी पसंद। इस कार्यक्रम में आज आपने 1942 वाला स्टोरी, मोहरा बाजार, प्रेम गीत और अर्थ फिल्मों के गीत सुने। गायक कलाकार थे कुमार सानू, पंकज दास, साधना सरगम, लता मंगेशकर, तलत अजीज, अनुराधा पोडवाल, सुरेश वाटकर और जगजीत सिंह।

0: फूल महकेंगे यूं ही, चांद यूं ही निकलेगा, तेरे होते हुए मंजर को हंसी रहना है। अशफाक हुसैन के इसी खूबसूरत शेर के साथ आज की मेरी पसंद से अपनी दोस्त माधुरी को दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात की उम्मीद के साथ नमस्कार।
1: तुम क्यों छेड़ जा रहे?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार, माफ कीजिएगा, आप सुनेंगे अर्पण कार्यक्रम।

एपड़ कार्यक्रम सुने सब रेडियो दे गड़ियों के मैं दीपा जोशी नमस्कार स्वागत आप सब लोगों ना आज के एपड़ कार्यक्रम में देगड़ियों रोजा के चारी कुछ बातचीत आप लोगों ने दगा करूल कुछ जानकारी आप लोगों के दूल और दगड़ में करूल आप लोगों को भरपूर मनोरंजन तो कार्यक्रम में पछा तक हमारा दगड़ बढ़ी रहे देखो जसके हर एज बाबक फर्ज हो कि वो अपन नानतेनों भल का पालन पोषण करो उनर भल खान पान भल स्वास्थ्य और भल शिक्षा प्रबंध करो उसी का हर एज बाब और परिवार वालों की यह जिम्मेवारी है कि वो अपन नानतेनन के नैतिकता सिखाओ ताकि वो एक भल मन की बढ़ सको एक भल नागरिक बढ़ सको यह लीजिए नानचिने बटे हम सबन के अपन नानतेनों में भल आदतों का डालन बहुत ज़्यादा जरूरी छो देखो देख लीजिए हम इनका बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए उन्हें के नैतिकता सीखूँ बहुत जरूरी छू नंतर उनके नैतिकता सीखूँक सब है भल तारीख यही छू कि उन्हें के उपदेश देने के बजाय खुद भल आचरण करो जैसे कि अपन घर में अपन सबनक ठुनुक हमेशा सम्मान करण ईमानदारी अपन काम का करण दूसरों का भले निंदा नहीं करण और अपशब्दों प्रयोग बिल्कुल नहीं करण झूठ नहीं बुलान और अनुशासन में रूं अगर घर में यस माहौल रुझो तो नान लफ्स सीखनी क्योंकि नान जस देखनी उसे करनी वो अपन घर में अपन ठूलों के अपन बुजुर्गों के एज बाबू के जस व्यवहार करते हुए देखनी जस अपन घर का आसपास का माहौल नान देखनी वो कहीं अपन दिलो दिमाग में हूँ बैठा लेनी और उसे करनी उन्हें पर उपदेश जनक के असर नहीं पड़न उन्हों कोणक बजाय हमन कह के करण छू कि उनर अपन व्यवहार के यस बनू छे कि नानथिन उसे सीखो तो अपन ननन के हमन का ईमानदारी सम्मान जिम्मेदारी सहानुभूति और दूसरों की मदद करण और सच बुलाण यो गुण बुनैद नानछने बटे डालन हुई और तो उन्हें नानथिन कह हमेशा यो सीखो छू कि हमन के जतुक लह सको दूसरे की मदद करना चाहिए तब वो जीवन भर उनके उन गुणों के अपनाल और एक भल मन की बढ़त ये तो कुछ बातचीत नानते नानके हम उनके सीख नैतिकता सीखों छुगे और अब आगे के कर लूँ कार्यक्रम आप लोग मनोरंजन और सुनो यो गीत

0: हाँ बोलो रोगल जी, लिवे आ रही हूँ। बच्चों में नैतिकता है, बच्चों में नैतिकता का विकास है जरूरी विषय पर शिक्षिका श्रीमती आशा जोशी द्वारा करी गई हमारी आज क्षेत्र संकलित बातचीत। हर इस बहुत चाहत है कि उन्हें अंतिम भल संस्कारवान और नैतिक गुण है परिपूर्ण हो, नैतिकता को उनमें विकास हो, उन्हें चहुमुखी विकास हो और हर क्षेत्र में वो अखिल के बढ़ो और एक भल नागरिक बढ़ो। हमारे नंदिन यश बढ़ो, ये अखिल जी हम इनके के करण चाहें और नंदिन में नैतिकता विकास कैसे करण चाहें, यही सब बारे में आज हम बात करने लग रही। तो आज हम भेंट करी शिक्षिका श्रीमती आशा जोशी जी दगा। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपन में
1: धन्यवाद।
0: आप उसे जानना चाहो कि नंदिन में नैतिकता का विकास हम इनके कैसे करण चाहें।
1: आज समाज में नैतिक मूल्यों को ह्रास होने कारण समाज में अशांति का वातावरण व्याप्त छ। वास्तव में समाज का सुव्यवस्थित करने लीजिए बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करी जान बहुत जरूरी छ। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास जो छू शुरुआत जो छू हमारे परिवार बेटी का वो पहली शुरू है। पहली वो अपने माँ बापों को देखूँ, उन्हें अंदर का संस्कार छन, वो घर में का व्यवहार करनी, तो वही हमारे बच्चों जो छू परिवार बेटी सबसे पहली सीखूँ। वही बाद वो अपने आस पड़ोस में देखूँ, फिर वही बात जाऊँ समाज में बिहार कर देखूँ, फिर जाऊँ विद्यालय में जाऊँ, अपन साथ में जो बच्चों को देखू को कस व्यवहार कर लो को कभी उनको देखे फिर सीखू उनको देखे उस सब नैतिक मूल्य हुई अंदर बचपन बड़ी हुई अजानी हुई अंदर, तो बचपन में जो संस्कार हुई अंदर हला जो आजीवन युद्ध चला लो।
0: बिल्कुल सही आप को कि नंचना बटी हम नंथिन के जस आदत को सिखा दे जस नैतिक गुण विकास भी विधेय कर दे नंथिन जीवन पर्यंत उसे करूँ नंचना जस देखू जस सुनू जस करूँ जीवन पर्यंत हमेशा वही गुण विधेयर समाहित है जानी। आप उसे जानना चाहो कि नैतिक शिक्षा आखिर छू के
1: नैतिक शिक्षा मतलब छू की भल गुणों का विकास जे में वो ये जान सको कि सही के छू गलत के छू उमा अंतर सिखाई जाओ सही गलत है पछाण हो कस आचरण मिल करण से लोगों दगे और समाज में कस मिल व्यवहार करण से जे कारण उमे भल आचरण सदाचार और मानव मूल्यों समझ आदि गुणों का विकास हो। नैतिकता जो छू यो किताबी ज्ञान है बल्कि यो नंतिनों में चरित्र निर्माण और जिम्मेदार नागरिक बनाने लीजिए शिक्षा छू।
0: बिल्कुल नंतिनों के जिम्मेदार नागरिक बनाने शिक्षा नैतिक शिक्षा छू। नैतिक शिक्षा मुख्य पहलू और उद्देश्य के छन।
1: नैतिक शिक्षा और पहलू मुख्य उद्देश्य जस ये छन की मूल्यों का विकास हो, चरित्र निर्माण हो, सामाजिक सद्भाव हो ये अंदर और नैतिक निर्णय लेने क्षमता हो। जैसे मूल्यों विकास में हो गई की ये द्वारा बच्चे छू ये अंदर ईमानदारी छू सहानुभूति छू एक दूसरे प्रति करुणा दया निष्पक्ष भाव और सम्मान जस गुणों का विकास होते हैं। और चरित्र निर्माण में हो गई जस जो बच्चे छू अपने कार्यों को निर्णय जिम्मेदारी लेने सके अपने काम जो छू मिल कसी करण छू यो कभी वही जिम्मेदारी ले जस जे लीजिए एक सुदृढ़ चरित्र निर्माण जरूरी छू। सामाजिक सद्भाव में यह जस समाज में शांति सहयोग और न्याय को बढ़ोने लीजिए जे लीजिए बच्चे जो छू सामाजिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके समझ पाल सामाजिक सद्भाव अंदर हलो जब नैतिक निर्णय लेने क्षमता जो है यो बच्चे को कठिन परिस्थितियों में सही दिशा सही के छू गलत के छू ये में वो निर्णय लेने क्षमता प्रदान करे। और दगड़े प्रजातांत्रिक संस्थाओं विकासक लीजी ले समाजक नागरिकों में भल नैतिक मूल्यों होन ल जरूरी छू। ये कही जा की विधायिका ले कानून बढ़ोन वक्त समाजक प्रचलित नैतिक मूल्यों के विधान में सम्मिलित करें, यस प्रकार कानूनक परिपालन ले नागरिकों द्वारा भली का करी जाए।
0: बिल्कुल सही आप कहो की अगर नंतिनों के भीतर भल गुण हल भल संस्कार हल नैतिकता उनमें हली तो वो हर जगह के समाज में परिवार में पड़ोस में भल अपने एक व्यवहार प्रस्तुत करनी और हर नियम कानून जो कि समाज द्वारा हमको दिए गए उन्हें परिपालन करनी। आप एक शिक्षिका छा और नंतिनों में नैतिकता गुणों का विकास करने के लिए काम कर छा, तो उनके नैतिकता सीखने के लिए आपको क्या कर छा?
1: नंतिनों में नैतिकता विकास करने लीजिए हमको पहले आपको सुधारण पड़ो बच्चे जो होनी की जो हमको देखनी हो अक्सर ठूला का दिखनी आपको हमें बड़ों को जो देखनी वी एकदम नकल कर लेनी, तो यह लीजिए हमको यह करना पड़ेगा। पहली हमको आपको रोल मॉडल तौर पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब हमको सच बुलाने आदर डालना भाई उन्हें झूठ नहीं बुलाओ और समय पालन ला करो, दूसरा आदर सम्मान करना आदर डालो, दूसरे मदद करना एक जैसी ने अपन जो दैनिक जीवन है जो हमारे कार्य छन उनको सही ढंगल करो तो बच्चे हमको देखे ये समाज में यो कस करने का भी वो जी देखे उससे हमको देखे बच्चे सीखल हम बच्चों का कस व्यवहार करनी है स्कूल में।
0: यो बात घर में लागू हो और स्कूल में घर में जैसा नंतिन छन अपन माँ बाबू को देखे अपन घर बाकी सदस्यों को देखे पास पड़ोस में देखे उसे सीखो ना।
1: जो हम बच्चे अपने घर में देखल या स्कूल में देखल या अपन पास पड़ोस में देखल बच्चे जो हूँ कच्चा

0: घड़ा जो समान हूँ तो वो एकदम जस वो देखल वही वही दिमाग में वो घर कर जाऊँ बात तो उससे वो सीखूँ। पहली हम खुद अपन जो छन मतलब हमारे अंदर भल संस्कार जब हाल तो हम लोग उनको उन्हें हिलवे प्रस्तुत करना पड़ा ना उसी
1: बिल्कुल आपको कुछ है कि पहले हम उनके खुद को सुधारना पड़ा
0: भल भल बड़ भी देखना पड़ा लो उनको समय पालन छु भल व्यवहार छु अपने समाज दगे कसी बात करी जाए अपन आपस में कसी मिलजुल रही जाए तो हम जब भल करूँ तब बच्चा हमको देख बेर तब उसे गुणा का सीख लो। दूसरा हम स्कूल में जो छू हम उनको या घर में जो छू कहानियों माध्यम हमारे जो दादा दादी बड़ी बच्चे कहानी सुन छी उन्होंने नैतिक शिक्षा ऊँची पहली बार बहुत बड़ी बड़ी कहानी ऊँची किताब ऊँची नैतिक शिक्षा देने लीजिए हमारे जो छू सबसे सरल उपाय जो छू तरीका अपना सकनू कहानियों उपयोग कर भी कि लगी हमारे स्कूल में आजकल बहुत सारी किताबों जो उन्हीं कहानियों किताब हमको मिली हुई बच्चों लीजिए लाइब्रेरी बड़ी है पूरा पुस्तकालय तो उमा बहुत विभिन्न प्रकार हमको किताब मिली होनी उमा कदू किस्म किस्म पशु पक्षियों संबंधित कहानी ला होनी पंचतंत्र वाली जो कहानी होनी दंत कथाएं होनी शिक्षाप्रद कहानियां होनी तो येनो द्वारा हम बच्चों को कहानियां सुने बेले उमा नैतिक शिक्षा विकास कर सकते। और जब वो बच्चे भल काम करूँ तो भी तारीफ करी जाए कोई बच्चे जब बढ़िया स्वच्छ बढ़े हुए हमको हिल पे बच्चों सामने में प्रस्तुत करना देखो ये साफ कदू साफ सुथरे बढ़वे रोक तो जी ताली बजाओ जी विशेष ताली बजाओ यश करवे हम लोग उत्साह वर्धन करवे वही तारीफ करवे जो हूँ इसीलिए हम ये अंदर नैतिक विकास कर सकते। हमारे व्यवहार देखो ये कदू भल छू ये कदू भल व्यवहार करूँ बच्चों लगे अपन दादा दादी सम्मान करूँ ईज बाबू सम्मान करूँ या समाज में जो और लोग थे उन सम्मान करूँ स्कूल में सब भल बच्चों का सब बढ़िया व्यवहार करूँ
1: तो ये सीखनी बिल्कुल सही है आपको
0: तो नाइनटीन जो सुनी तारीफ सुन भी बहुत ज्यादा और बढ़िया काम करनी है जैसे स्कूल में जी हम सुने तो हम बच्चे जो मतलब भल काम नहीं करन कॉपी मिले उदाहरण तौर पर तो हम दूसरे बच्चे जो थोड़ा कर लो वो हम जरा प्रोत्साहित करूँ ये अरे इसने बहुत बहुत बढ़िया काम करो ये करो करो तो वो देखी बेला वो सीखू
1: अगर दूसरा भल काम के देखे तारीफ करी जाए तो नानते सोचने की एक तारीफ करे की मतलब भल काम करो तो मेरा तारीफ
0: हाँ तो बच्चे मतलब देखे बहुत वही अंदर वो है कि मेरा तारीफ हो और मेरा ऐसा काम करूँ भल करूँ
1: तो उन्हें भल व्यवहार तारीफ करना
0: भल व्यवहार तारीफ करने बहुत जरूरी छू इसीलिए उन्हें नैतिक गुणों विकास हूँ नानतीना का सहानुभूति सुखण जरूरी छू कि जैसे एक दूसरे मदद करो देखो इंटरवल हरू वह हम ये सुनो कि ये को नहीं उड़ा माना लिखन तो ये हाथ पकड़ थोड़ी ये मदद कर दे या ये पाई ये चीज है थोड़ा तू ये कर दे मदद कर दे तो इसी ये अंदर एक दूसरे दयालु करनी हूँ इसी सहानुभूति द्वारा नैतिकता गुणों विकास करी जाए अगर बल्चा विधि कभी तक गलती ले जाए तो उनको व्यक्ति पर डांटन नहीं चाहिए और भरी के प्यार समझे बेर कि हमको यश नहीं करना चाहिए ये गलतियों को सुधारना प्रयास करना चाहिए चिल्लाना नहीं चाहिए ऊपर ना उनको प्यार समझना चाहिए सजा हजा नहीं देना चाहिए उनको प्यार समझाई जाना चाहिए तो इसीलिए मैं सुधार करी जा सकते हैं। नैतिकता का विकास जो छू एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया छू नंतिनू विकास लीजिए हर पड़ाव पर उनको सही मार्गदर्शन देने आवश्यकता छू जब हम नंतिना का भली प्यार समझूंगा तो उन्हें अंदर भल गुणों का विकास हो चिड़चिड़ापन करूँ हम उनको डांटते रहून ये यश नहीं कर सकन यश नहीं कर सकन कभी तो वही अंदर खराब गुणों का विकास हो भी
1: तो हमारे श्रोताओं थे आप कौन चाहना
0: तो मैं सब श्रोताओं से ये कौन चाहूँ की अपने बच्चों को जो छू घर बैठी तुम भल शिक्षा दियो उनको भल नैतिक गुणों विकास करो ताकि वो भूआ दिन एक भल नागरिक बढ़ सको। पहली तो हमको जो छू नैतिक गुणों विकास जो छू परिवार बटी देना चाहिए कि लेकिन जब वो घर में जो सीख लो वो भेर ली जाए सब वो पहली वो इज बटी उस संस्कारों को सीखल और वे बात जो भेर अपन पास पड़ोस में सीखल फिर जब स्कूल आए तो फिर बाद में आए तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में भल है भल वातावरण हम बच्चों को दियो और उन्हें अंदर भल नैतिक गुणों का विकास करना।
1: बहुत बड़ी बड़ी बात आपको हम इनके बताएं और अपना अमूल्य वक्त दें याद लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: बच्चों में नैतिकता का विकास है जरूरी यह विषय पर शिक्षिका श्रीमती आशा जोशी द्वारा करी गई हमारे क्षेत्र संकलित बातचीत प्रोग्राम सुनी और देखो आज शनिवार छो और आज हम ले पोषण की पाठशाला। पोषण की पाठशाला के अंतर्गत आज हम बात करने लग रही औषधीय गुणों है भरपूर पुदीना के बारे में। देखो पुदीन जो छो वो औषधीय गुणों है भरपूर छो ये बात को तो हम सब जानना छन ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अभल हो एक तासीर ठंडी है तो अजाल गर्मियों में यह एक खटे बड़ेबीर पुदीना का पान बड़ेबीर जलजीर जो हूँ मैं डालबीर यह प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा आजकल कर लूँ यो पाचन शक्ति कला हमारे बढ़ूँ और आयुर्वेद में पुदीन के शीतल जड़ी बूटी मानी जाँच जो पित्त दोष के संतुलित करण और स्वस्थ पाचन अग्नि के सहार देना लीजिए मानी जाँच औषधीय पोषक तत्व है भरपूर।

पुदीनाक अगर जरा सा पत्तों के हम अपन खाने में अचार रोज शामिल करूँ तो हम अपन पाचन शक्ति के बढ़ूँ और रोग प्रतिरोधक क्षमता और ताजगी के भल बढ़ सकनूँ। पुदीना का कतु का फायदा हम उनका होनी जैसे कि यो पाचन में तो मदद करूँ और पेट फूलन कम करूँ, यो हमारे सांसों के प्राकृतिक रूप पर ताज बढ़ूँ। पुदीना का जीवाणारोधी गुण मुखक हानिकारक बैक्टीरिया के रोकने और लंब बखत तक ठंडक एहसास देनी। पुदीना के पत्तों के चबुणल या पुदीना के चाह पिणल मुखक दुर्गंध जो छू वो कम है और पुदीन अपच और जो हमारे छाती में जलन है जे वो कले शांत करो। यह कलवा यो हमारे त्वचा कले स्वस्थ बनाए धरण में मदद करो। नगड़ियो अगर हमारे खुरपी है जाए और तनाव में हम कहते रुनू तो यह तनाव कले कम करो और खुरपी मैंने राहत दूँ। यो पुदीन हमन के और संक्रमण हले बचाव में मदद करो तो यह अपन खाने में हमन के जरूर शामिल करना चाहिए। और अजाल गर्मी दिन में रोज अपो पुदीना खटे बड़े वीर और पुदीना पाने बड़े वीर यह एक ज़्यादा है ज़्यादा प्रयोग कर सकता जो भल स्वादक दगड़ दगड़ है भल स्वास्थ्य ला हम उनके दें। तो देखो अब सब लोग पुदीना भरपूर मात्रा में प्रयोग करो, स्वस्थ और निरोगी रहो। और हम तो यही चाहूँ कि हमारे सब श्रोता दगड़ी स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, मस्त रहो और हमारे कार्यक्रम के सुनते रहो।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अर्पण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ किया। आयोजन के शुभांकर क्यालू हिम तेंदुआ का भी अनावरण किया। टिहरी गढ़वाल में तेज आंधी और तूफान से कई क्षेत्रों में नुकसान, मकान क्षतिग्रस्त होने और सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित, प्रशासन ने राहत और सर्वे कार्य शुरू किया। और सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्य

0: और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने BLO मिंटू देवी से मतदाता सूची पुनरीक्षण, मैपिंग और स्मार्टफोन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ज्ञानेश कुमार ने सीमांत क्षेत्र में BLO मिंटू देवी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्रों में इस प्रकार की सक्रियता और समर्पण चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। निरीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ SIR कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने मशाल प्रज्वलित कर प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने आगामी 31 मई को आयोजित होने वाली नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के शुभंकर क्यालू हिम तेंदुआ का भी अनावरण किया। इस आयोजन के लिए देश के 27 राज्यों और दो अन्य देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को बढ़ावा देने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं बल्कि इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी है।
1: जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण स्थान पर दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए इसके लिए एक अपने अंदर आत्मविश्वास चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस चाहिए। मुझे गर्व है कि आज मेरे सामने आप सभी जुझारू और दृढ़ संकल्पित युवा खड़े हैं। साहस से पर्यटन और सामर्थ्य के आप सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मात्र उत्तराखंड नहीं है, आज का नया उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड का हर क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बन रहा है और नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन नए उत्तराखंड की शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक पर्व है।
0: श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमावर्ती गांवों को देश के पहले गांव बनाने के विजन को ये आयोजन आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों और युवा उद्यमिता को नई गति मिलेगी।
1: आज जिस तेजी से चाहे माड़ा गांव हो, चाहे हमारा गुंजी का क्षेत्र हो, नाभी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा नीति हो, माड़ा हो, ऐसे अनेक बैलियां जो हमारे अंतिम गांव के रूप में जिनको हम लोग पहले जानते थे, अब वो पहले गांव के रूप में भारत के पहले क्षेत्र के रूप में उनका विकास तेजी से किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस आयोजन के द्वारा उस क्षेत्र में स्थानीय उत्पाद हमारे और ज्यादा उनको प्रसिद्धि मिलेगी, युवा उद्यमिता को भी नई गति मिलेगी।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज सुबह देहरादून के विजय कॉलोनी क्षेत्र का दौरा कर बरसात से पहले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विजय कॉलोनी पुल से बद्रीनाथ कॉलोनी तक बिंदाल नदी में चैनलाइजेशन कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बरसात शुरू होने से पहले चैनलाइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि जल भराव और संभावित आपदा से क्षेत्रवासियों को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी सुरक्षात्मक कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने विजय कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में क्षेत्रवासियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए और किसी प्रकार की जल समस्या न होने पाए। उन्होंने पेयजल व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: टिहरी गढ़वाल जिले में कल देर शाम मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज आंधी और तूफान के कारण कई क्षेत्रों में नुकसान की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं

0: बालगंगा तहसील के डाल गांव में तेज तूफान की चपेट में आने से कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं एक घर की टीन उड़ गई। खवाड़ा गांव में एक मकान की टीन शेड भी आंधी में क्षतिग्रस्त हो गई। घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर कई स्थानों पर चीड़ के पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। कंडी सौड़ क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से तहसील कार्यालय में काम प्रभावित हुआ है। इसके अलावा क्षेत्र में कुछ मकानों और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रशासन की ओर से राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है और रिपोर्ट मिलने के बाद प्रभावित परिवारों को नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
1: कल जो शाम को देर शाम को जो तूफान आया उससे घनसाली तहसील के डालगांव और खवाड़ा में लगभग अभी प्रारंभिक सूचना के अनुसार चार घरों की छत जो कि टीन शेड के थे कुछ क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है आंशिक। तो उस संबंध में हमारी जो फील्ड टीम है उन्होंने मौका मुआयना कर लिया है और उनका जो है परीक्षण करते हुए और दरियाफ्त के अंतर्गत जो राहत राशि उनको देने का व्यवस्था की जा रही है। और हम ये भी कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि इस बीच जो है जो क्योंकि लगातार जो है मौसम विभाग से जो अलर्ट जारी किया जा रहा है और आपदा प्रबंधन से उसके दृष्टिगत सावधान रहने की जरूरत है।
0: चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज पूर्वान 11:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खोलने के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा क्षेत्र जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठा। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिख धर्म का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ तपस्या की थी। बर्फ से ढकी 7 पर्वत चोटियों और हिम झील के बीच स्थित ये गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्मिक शांति का प्रमुख केंद्र है। हरिद्वार में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने अपर रोड पर चल रहे सीवरेज निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अपर रोड पर चल रहे सभी सीवरेज कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरे किए जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क पर पड़े मलबे और निर्माण सामग्री को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं। गंगा दशहरा के मद्देनजर जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में सड़क किनारे और फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मां मनसा देवी मार्ग, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने मिशन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी और प्रतिभागियों ने मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला में ABDM की प्रबंधक प्रज्ञा पालीवाल ने कहा कि राज्य में मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में लगातार कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज ABDM की मॉडल फैसिलिटी है और आभा ID, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री तथा स्कैन एंड शेयर जैसी व्यवस्थाएं मिशन का आधार हैं। इस अवसर पर दून अस्पताल के विभाग अध्यक्ष डॉ. सुशील ओझा ने स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में ABDM के प्रयासों की सराहना की और सभी प्रतिभागियों से मिशन की सफलता में सहभागिता करने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ किया। आयोजन के शुभंकर क्यालू हिम तेंदुआ का भी अनावरण किया। टिहरी गढ़वाल में तेज आंधी और तूफान से कई क्षेत्रों में नुकसान, मकान क्षतिग्रस्त होने और सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित, प्रशासन ने राहत और सर्वे कार्य शुरू किया। और सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए अब सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में फाइज अनवर का लिखा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है नाटक दो दोस्त।
1: दो दोस्त आज प्रस्तुत है श्री मोईरांग थेम इनाव सिंह के मणिपुरी नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक दो दोस्त।

0: सुनीता सुनीता,
1: अरे आ गए आप।
0: हाँ सुनो, कुछ सोचा है डोबी के बारे में?
1: हाँ देखो, कोई अच्छा सा बहाना बनाकर मना कर दो।
0: वो रुपए जरूर लौटा देगा, तुम जरा अपने मायके में पूछ कर।
1: मैं तो बताना ही भूल गई, सुनीति आई थी, कह रही थी कि माँ ने सारे गहने मंगवाए हैं।
0: क्यों, अब क्या हुआ?
1: पिताजी को ठेके का बिल नहीं मिला, कुछ दिन गहनों के सहारे काम निकालना चाहते हैं।
0: ससुर साहब को कभी बिल मिला भी है
1: क्या? गाड़ी लेते समय जो 2000 लिए थे वो भूल गए, एक दिन मोगरा मछली देकर गए।
0: वो ठेके की नहीं थी।
1: तुम
0: अच्छा अच्छा छोड़ो इसे, ये डोभी को ना कहते?
1: देखो अगर देने ही है तो कह दो कि एक आध महीने बाद देखेंगे, वैसे अगर रुपए दिए तो समझो पानी में गए।
0: हाँ क्यों नहीं, अगर पिताजी का है तो।
1: सारी चीजें पिताजी की बनवाई हुई हैं और कोई बाप अपनी बेटी की चीज को खोने नहीं देता।
0: डोभी भी लौटा देगा?
1: कहाँ से, मुर्गी पालन और डेयरी फार्म से।
0: देखो ज्यादा दिन के लिए नहीं मांग रहा, कह रहा था लोन मिलने वाला है, मिलते ही लौटा दूंगा। मनचाही और सस्ती चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, खुशकिस्मती से 6 बार उसे सस्ते मिल रहे हैं। वैसे लगा कि लोन मिलने में देर लगेगी तो हम उसके बैल बेचकर पैसे वसूल कर सकते हैं।
1: अगर सारे बैल मर जाए और लोन भी ना मिले तो?
0: ओफ़ गाड़ी बेचकर अगर बात बन जाती तो। खैर छोड़ो तुमसे तो।
2: डैडी डैडी हमें पढ़ाई है।
0: हाँ हाँ आओ आओ बेटे बैठो, बोलो ए फॉर एप्पल,
2: ए फॉर एप्पल,
0: बी फॉर बॉल,
2: बी फॉर बॉल,
0: सी फॉर कैट,
2: सी फॉर कैट,
0: डी फॉर
3: सुना जाओ बा,
0: कौन इडोबी, अरे आओ अंदर चले आओ।
2: ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट।
4: अरे वाह वाह वाह वाह, हमारी सनारा भी बेटी तो पढ़ाई में बड़ी होशियार हो गई है। नमस्ते बेटे, नमस्ते नमस्ते।
0: अच्छा बेटी अब जाओ अंदर जाकर मम्मी से बोलो कि इडोबी काका आए हैं चाय बनाए।
2: अच्छा डैडी, मम्मी मम्मी इडोबी काका आए हैं चाय बनाओ।
0: अरे खड़े क्यों यार,
4: बड़ी नटखट हो गई है मालूम है। पिछली बार जब मैं आया तो फाटक पर खड़ी क्या कह रही थी, काका पता है आप कैसे लगते हैं, और यूं करके मुंह बनाया ऐसे। क्या बात है सना जाओबा, तुम्हारा मुंह आज कुछ उतरा हुआ सा?
0: कुछ नहीं यार, वो सारी रात स्नान भी की बुखार की वजह से जागना पड़ा।
4: ये छोटे बच्चों का बीमार पड़ना भी बस।
0: इससे तो मैं बीमार पड़ जाता। खैर यार अब वो तुमसे कुछ कहते नहीं बन पड़ा, वो क्या है कि।
4: क्यों क्या हुआ, भाभी ने ना कर दी?
0: ना ना करने की बात नहीं है, दरअसल मेरे सामने भी एक प्रॉब्लम आ गई है। यार क्या तुम 1-2 महीने और इंतजार नहीं कर सकते?
4: अगर वो ना माने तो?
0: देखो भाई 1-2 महीने बाद ही मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा।
4: ओ ठीक है, कहकर तो देखना ही पड़ेगा।
0: इडोबी मुझे बड़ा अफसोस है।
1: कहाँ चले गए थे भाई साहब, बहुत दिनों बाद आपकी।
4: बस यही था, ऐसे ही आना नहीं हुआ।
1: अच्छा चाय लीजिए।
4: थैंक यू भाभी।
1: स्नान अभी तुम बाहर खेलो बेटे, यहाँ रहोगी तो चाय पीने की जिद करोगी। चलो
2: मम्मी।
1: आपकी शर्ट बहुत सुंदर है।
4: वाकई?
1: हाँ
4: सेकंड्स की है, कीमत भी सिर्फ 25 रुपए।
0: कपड़ा भी अच्छा,
1: रंग भी अच्छा है, पुरुषों पर ये कत्थई रंग बड़ा ही फपता है।
4: अरे फपना अपना क्या, सस्ती मिल गई थी इसलिए ले ली।
1: चाय में चीनी तो ठीक है ना भाई साहब?
4: जी हाँ।
0: पीने के बाद पूछनी तो अच्छा रहता, क्या खाने वाने को कुछ नहीं है सुनीता?
1: हाँ हाँ बिस्किट है, अभी लाती हूँ।
0: यार घर में होते हुए भी भूल जाती है यार, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ।
4: अरे कोई बात नहीं सुना जाओ बा,
1: एक दिन हम आपके घर आएंगे।
4: अरे क्या करोगी भाभी वहाँ आकर,
1: आपका घर देखेंगे।
4: अरे क्या देखोगी, मेहमान के बैठने के लिए कमरे में सोफा सेट तो क्या, टूटी फूटी कुर्सी तक नहीं है।
1: चटाई या मोटा तक नहीं है क्या?
4: नहीं नहीं वो तो मिल जाएगा।
0: लो यार खाओ।
1: अब कब तक अकेले रहोगे भाई साहब, कुछ सोफा सेट लाने वाली देख लो ना।
4: अरे कोई मन पसंद की मिले तो। भाई अगर मैं भी कहीं अच्छी नौकरी पर होता या पिताजी कहीं ऊंचे पद पर होते तो शायद आसानी से मिल जाती।

0: तो सुनीता,
1: क्या
0: अपनी सुनीति बाला के बारे में क्या ख्याल है?
1: ये मानेंगे?
2: अपनी साली के बारे में कह रहे हो?
0: हाँ, ये अक्सर आती रहती है, अभी अभी गई है।
1: आपको आने में थोड़ी सी देर हो गई।
2: भाभी, एक तो वो सुंदर और ऊपर से बड़े बाप की बेटी। अरे भाई, कहाँ वो और कहाँ हम। अगर कहीं रास्ते में मुझे देख ले तो कहेगी कि आज का दिन गया।
1: क्यों, आप में क्या कमी है? खूबसूरत है, पढ़े लिखे हैं।
2: हाँ, शर्ट भी सुंदर है, सेकंड्स के कपड़े पहनते हैं।
1: मैं हम मजाक नहीं कर रहे हैं। सच, आपके पास रहेगी तो सुखी रहेगी, क्योंकि आपके घर में ना तो कोई बहन है और ना ही कोई और, इसीलिए किसी से झगड़ा होने का डर ही नहीं।
2: हाँ, मारूंगा भी नहीं।
1: उसका गृहस्थ जीवन शांति से कट जाएगा।
2: और जब बड़े बूढ़े ये पूछे कि दामाद बाबू क्या करते हैं, तो कहिएगा कि पहलवान बनने के लिए व्यायाम करते हैं।
0: ये भी कहूंगा कि 2 करोड़ का एक लॉटरी का टिकट भी खरीद रखा है।
2: अच्छा छोड़ो यार, बहुत बातें हो गई। ऑफिस चल रहे हो ना?
0: हाँ, पर यार थोड़ी देर में जाऊंगा।
2: ये नींबू का पेड़ काफी बड़ा हो गया है।
0: हाँ, भूल गए, हम दोनों ही तो लमशा वाले बेरन के यहां से लाए थे।
2: हाँ याद आया। अरे उस तरफ भी एक दो पेड़ कटहल के क्यों नहीं लगा लेते?
0: लगाने का वक्त ही नहीं मिलता यार,
1: कुछ आलसी भी हैं।
2: अच्छा भाई चलता हूँ, मेरे काम का ख्याल रखना।
0: क्या बताऊँ यार, बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या है कि मेरे सामने एक साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अब तुम्हें क्या बताऊँ। छोटा भाई है, घर बसाना चाहता है, बड़ा होने के नाते मुझे उसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा। कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन फुसफुसाहट सुन चुका हूँ। पिछले महीने गाड़ी के लोन की किस्त भी नहीं चुका पाया, इस वक्त वर्कशॉप में पड़ी है, अब पता नहीं कितना पैसा लगेगा।
1: कहने को तो हम दोनों कमाते हैं।
0: उधर बुआ जी की अलग प्रॉब्लम, बहन की अलग प्रॉब्लम, जिस पर माँ जी को हम पर विश्वास नहीं है।
1: कभी कभी तो इन्हीं कारणों से हम दोनों में झगड़ा हो जाता है भाई साहब।
2: कमाल है, महीने में 2-3 हजार कमाने वाले तुम लोगों के हाथ मुझसे भी ज्यादा तंग है।
1: सच, फिर भी लोग विश्वास ही नहीं करते।
2: माफ करना भाई, तुम लोगों को तंग कर रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ।
0: अच्छा ही डोबी, 1-2 महीने बाद देखूंगा।
2: ठीक है, लेकिन उस समय मत टाल देना।
1: इतने चालाक बनने की क्या जरूरत थी, मना क्यों नहीं कर दिया? 1-2 महीने बाद कहाँ से दोगी?
0: तुम्ही ने तो कहा था।
1: वो मैंने तो यूं ही कहा था, अगर पिताजी नहीं लौटा पाए तो।
0: जरूर लौटाएंगे, अगर नहीं लौटाए तो मैं कोई दूसरा रास्ता खोजूंगा। जब मैं छोटा था तभी से दोस्ती निभाते आए हैं, सुख दुख में हमेशा उसने मेरा साथ दिया है। आज पहली बार उसने मुझे किसी काम के लिए कहा है।
1: एक बार पैसे दे दिए तो बार बार मांगने लगे।
0: सुनीता, ये मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर उससे दोस्ती ना हुई होती तो मैं कभी बीए पास नहीं कर सकता था। किताबों, यहां तक कि बीए की अंतिम परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए रुपए भी इसी ने दिए। उस समय इसके पिताजी जीवित थे, तब इसकी ऐसी हालत नहीं थी।
1: रहने दो, ऐसी कहानियां सुनते सुनते उब चुकी हूं मैं।
0: एक कहानी ऐसी भी है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं सुनाई, हालांकि उसे सुनाकर मेरी इज्जत पर धब्बा तो लगेगा, लेकिन फिर भी सुनो। एक दिन इडोबी मेरे घर भागा भागा आया।
2: अरे सुना जाओ बा, सुना जाओ बा।
0: क्या है रे इडोबी?
2: एक खुशखबरी सुनी?
0: नहीं तो।
2: अरे हमने जो कोऑपरेटिव के इंटरव्यू दिए थे ना,
0: हाँ हाँ,
2: उसके पैनल के अनुसार 5 आदमियों का ऑर्डर कल निकलने वाला है।
0: हाँ? तब तो मैं रह गया दोस्त।
2: हाँ?
0: मेरा नाम तो 6 नंबर पर है।
2: क्या?
0: हाँ चलो, तुम्हारा तो पहला नंबर है, इसलिए तुम्हारा ऑर्डर जरूर निकल जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
2: पर मुझे नहीं।
0: अरे मेरी चिंता मत करे डोबी, मेरा नंबर भी आ ही जाएगा कभी ना कभी।
2: अगर उन्होंने 5 के बाद और लोग नहीं बुलाए तो?
0: अब क्या किया जा सकता है
2: यार, तुम्हारे घर में तो और कोई कमाने वाला भी नहीं है। अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो सुनीता भी तुम्हारी नहीं बनेगी।
0: तुम्हारी हालत तो अच्छी है ना, तुम अपनी तनख्वाह मुझे दे देना।
2: यार मजाक मत करो। सुनो ऐसा करते हैं, कल सुबह हेड क्लर्क से मिलते हैं।
0: क्यों?
2: अगर पैनल में से 5 आदमी लिए जा रहे हैं तो मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी क्योंकि 6 नंबर तुम्हारा।
0: अगले दिन सुबह हेड क्लर्क से बातचीत की, हेड क्लर्क को एक पार्टी भी थी, सारा खर्चा इडोबी नहीं उठाया। फॉर्मेलिटी के मुताबिक उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 5 दिन बाद

0: मुझे ऑफर किया गया। ये राज मेरे और उसके सिवा कोई नहीं जानता सुनी था, यहां तक कि उसके पिताजी तक को नहीं मालूम था। उसने तुम्हें बताने से भी मना किया।
1: वो तो दोस्ती का फर्ज था।
0: तो क्या अब उससे मेरी दोस्ती नहीं है?
1: लेकिन हमारे पास है ही क्या जो हम उसे दे सकें? उसे देने का मतलब है खो देना।
0: वो तुम्हारे गहने जरूर लौटा देगा सुनीता।
1: मुझे विश्वास नहीं। वैसे तुम अपना स्कूटर बेचकर उसकी मदद क्यों नहीं करते थे?
0: तुम समझती क्यों नहीं हो सुनीता, स्कूटर का रहना बहुत जरूरी है, ऑफिस आने जाने में दिक्कत होगी। अब वैसे भी स्कूटर स्टेटस सिंबल है, और फिर तुम तो जानती हो लोन में 7,000 मिले थे, बाकी 2,000 तुम्हारा सोना गिरवी रख कर लिए थे।
1: सुनो, क्यों ना गिरवी रखे सोने को छुड़ा ले, वरना ब्याज बढ़ता ही चला जाएगा।
0: छुड़ाने के लिए पैसे कहाँ से लाए?
1: इसीलिए तो कहती हूँ इस बारे में बात करना बेकार है।
0: अगर फिर आए तो क्या जवाब देंगे?
1: तुम्ही ने तो कहा है उसे।
0: देखो, तुम्हारे कहने के मुताबिक ही मैंने उसे जबान दी, कुछ दे दो। अगर वो नहीं लौटा सका तो स्कूटर बेचकर या कहीं कहीं और से इंतजाम करके मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा।
1: उसमें किसका नुकसान है, मेरा, तुम्हारा, या हम दोनों का, या स्नानबी का? मुझे उससे हमदर्दी है, जानती हूँ वो असहाय है, उसका कोई नहीं, सिर्फ तुम ही उसके दोस्त हो। लेकिन लेकिन क्या उसके लिए हम नुकसान उठाएं?
0: सुनीता, हम मिट तो नहीं जाएंगे।
1: तुम कहना क्या चाहते हो? माँ बाप ने कितने प्यार से एक एक पाई जमा करके 20-30 हजार के गहने बनवाए, और फिर कहीं आना जाना पड़ गया तो?
2: मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है।
1: स्नाना भी से पूछूंगी, दू या नहीं?
0: उसका कहना मानोगी?
1: हाँ। बता बेटे, मम्मी का सोना काका इडोबी को दू या नहीं?
2: दे दो।
1: पूरी बाप पे गई है, फुलिश।
2: यू आर फुलिश।
0: बोलो, यू आर बैड।
2: यू आर बैड।
1: बड़ी अच्छी बातें सिखा रहे हो बच्चे को।

0: सुनीता सुनीता, अरे भी कहाँ हो?
1: क्या है
0: भाई? डोबी आया है, उसका भी खाना बनाना, मोंगरा मछली भी बनाना।
1: अच्छा।
2: नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा।
0: अरे रहने भी दो, पता इतने दिन क्यों नहीं आया?
2: एक तो लोन का झमेला, फिर चीज को बिकने से रोकता रहा,
0: हा?
2: और फिर हमारे बराबर में मडलेम था ना, वो मर गया।
0: ओ,
2: उसका मरना भी एक काम बन गया। तुम्हारे दिए गए समय का इंतजार करता रहा।
0: क्या वो चीज अभी तक नहीं बिकी?
2: नहीं।
0: और लोन की क्या प्रोग्रेस है?
2: फाइनल अप्रूवल के लिए सेक्रेटेरिएट पहुंच गया है, लेकिन क्या होगा कह नहीं सकता।
0: यार समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मेरी बात सुनकर तुम नाराज तो नहीं होगे?
2: हाँ।
0: देखो यार, इस समय भी मेरा हाथ तंग है। वैसे चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूं।
2: तो क्या कुछ नहीं दे रहे हो?
0: यही समझ लो।
2: ओ, समझ गया सना जाऊंगा। लेकिन दोस्त, तुम्हारी वो कहावत अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, फ्रेंडशिप इज पिक्यूलियर बून ऑफ हेवन, कहां गई? याद है वो दिन?
0: नहीं नहीं यार, मैं इम्तिहान नहीं दूंगा।
2: क्यों?
0: वैसे भी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है।
2: अरे देकर तो देखो यार, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो जो एक तुम्हारी चाची है,
0: उन्होंने भी आज मना कर दिया।
2: ओ, कोई बात नहीं यार, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम इम्तिहान दोगे। ये लो।
0: क्या क्या?
2: ये घड़ी रख लो, चाहे गिरवी रखो या बेच दो।
0: इधो भी?
2: हाँ यार, बाकी माँ को दे देना। और हाँ, पहले भी तो तुम्हारी कुछ महीने की फीस बाकी है।
0: हाँ, 3 महीने की।
2: ओ, तब तो इस घड़ी से काम नहीं बनेगा। ऐसा करो, कल सुबह तुम मेरे घर आना, 50-100 रुपए का शायद और इंतजाम हो जाए।
0: हाँ?
2: और सुबह का खाना भी वहीं खा लेना।
0: इडोबी, इडोबी, इडोबी, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला, किसी ने सच ही कहा है, फ्रेंडशिप इज पिक्यूलियर बून ऑफ हेवन।

0: मेरा कोई नहीं है, न मां न बाप न रिश्तेदार, पर सोचता था कम से कम जीवन में तुम मेरा साथ दोगे, सुख दुख में मर मिटने के लिए तैयार रहोगे। याद है हम दोनों का पागलपन, सूर्य निकलने से पहले एक दूसरे से मिलने की व्यग्रता, दिन भर साथ रहने के बाद भी बिछड़ने की बेचैनी, उस समय का सनाजा होगा कहां चला गया, वो अनगिनत कहानियां आज कहां गईं। लेकिन दोस्त, मैंने आज भी उन यादों को, उन कहानियों को संजो कर रखा हुआ है। तुमने ठुकरा दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैं जीवन में दोस्ती का रिश्ता कायम रखूंगा।
1: डैडी डैडी, मम्मी पूछती आप चाय पियेंगे?
2: हाँ ले आओ।
0: सनाना भी, कहना मैं नहीं पीऊंगा।
1: अच्छा काका।
0: अगर तुम पहले ही इनकार कर देते तो कम से कम उन लोगों के सामने मैं झूठा तो साबित नहीं होता।
2: गलती हो गई यार।
3: चाय पीजिए ना, खाना भी बन रहा है।
0: हाँ? रास्ते में तोम भी मिला था, उसके साथ भी नहीं पी।
3: होटल की चाय और हमारी चाय में बहुत अंतर होगा। मैं भी खाना बनाकर अभी आती हूँ। हाँ, परसों सुनीति बाल आई थी।
2: चुप भी करो, चलो खाना खत्म करो।
3: मैंने मजाकिया तौर पर बात चलाई तो बहुत हंसी।
2: तुम कहना क्या चाहती हो?
0: हाँ, मुझे भी एक दो दिन पहले उसकी याद आई थी, एक रात तो मुझे नींद ही नहीं आई।
3: अगर ये बात उससे कोई कहता तो।
0: इसीलिए तो मैंने।
3: आप तो बहुत मजाक करते हैं भाई।
0: मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उस दिन जो बातचीत हुई थी, अगर वो मजाक था तो दूसरी बात है। वैसे एक दिन मिली भी थी, बहुत सुंदर है।
3: खाना बनाकर अभी आती हूँ।
2: लो यार, चाय पियो।
0: नहीं, सोचता हूँ अब चलूं।
2: खाना खाकर चले जाना।
3: खाना खाकर जाइएगा भाई साहब, वरना मैं बुरा मानूंगी। हाँ।
0: नहीं भाभी, आज नहीं, फिर किसी दिन खा लूंगा। वैसे घर में एक आदमी मुझसे मिलने आने वाला है।
2: तो ठीक है डोबी, मैं कल या परसों आऊंगा।
0: अच्छा, चलता हूँ।
2: ओके। सुनीता। आज वो बुरा मान गया। आज की तरह उसका दुखी चेहरा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा।
3: चलो अच्छा हुआ, आगे अब हमसे कुछ नहीं मांगेगा।
2: तुम चाहती हो हमसे कुछ ना मांगे, हमसे दूर चला जाए? उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया।
3: अगर तुम भी अविवाहित होते तो उसकी सहायता कर सकते थे। मैं जो कुछ भी कर रही हूं ये ना तो तुम्हारे लिए है और ना ही अपने लिए, ये सब अपने बच्चों के लिए है। आगे बच्चों का क्या होगा कुछ तो सोचो। अभी तो एक ही बेटी है, लेकिन ढंग का कोई जेवर तक नहीं बनवा पाए, बाद में तो हाथ और भी तंग हो जाएगा।
2: क्या मुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं है? वो तो अभी बहुत छोटी है। और फिर तुम सिर्फ अपने बच्चों और मायके वालों के लिए सोचती रहो। मेरे भाई बहन रिश्तेदार तुम्हारे क्या लगते हैं उसके बारे में तुम क्यों सोचोगी?
3: तुम भी तो मेरी सहेली और मेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं सोचते।
2: मैं तुमसे ज्यादा सोचता
3: हूं। बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे भाई की पत्नी आएगी ना तब तक चलेगा, वो भी ऐसा ही करेगी।
2: ठीक है, तुम जीत गई।
3: मैं जीत गई?
2: जीत गई तब भी नाराज होती हो, चलो हार गई बस, अब ठीक है।
3: अच्छा अब खाना खा लो।
2: मुझे भूख नहीं है।
3: खाना बनवाने से पहले क्यों नहीं कहा?
2: अब भूख का क्या भरोसा,
3: और उसके लिए भी बनवा डाला। अब तुम ही खाना बासी खाना।
2: क्यों?
3: घर में पड़ा सोना जेवरात रुपए पैसे सब ले जाकर उसे दे दूंगी ना, तब खुश होगे, है ना?
2: ऐसा मैंने कब कहा? नहीं दिया ठीक है, और हाँ, आइंदा मुझसे अपने मायके के बारे में कभी जिक्र ना करना।

0: इडोबी अरे कहाँ हो यार?
1: कोई नहीं है क्या?
2: अरे ये आ गए काका।
3: अरे आज इस तरह अचानक?
1: नमस्ते भाई साहब।
3: नमस्ते भाभी, नमस्ते। हेलो बेटे, कैसे हो?
2: ठीक हूँ काका।
3: आइए आइए, इधर भीतर आ जाइए।
0: कल सुनीता की बहन सुनीति बाला की शादी हो रही है, वहीं जा रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते जाएं। तुम्हारे बारे में भी काफी कुछ सुनने को मिल रहा है।
3: यहाँ तो बैठने के लिए ठीक से जगह तक नहीं है। भाभी इधर मुड़े पर आ जाइए, इधर यहाँ बैठिए।
1: बड़ी शांति है यहाँ।
3: अरे तुम इधर बिस्तर पर आ जाओ ना। हमारी बेटी सना ने भी क्या खाएगी?
1: कुछ नहीं, अभी भी खाना खा कर आ रहे हैं।
0: सना ने भी, उसे मत छेड़ो, टूट जाएगा।
3: अरे खेलने दो, खेलो बेटी खेलो। हाँ तो किसकी शादी?
1: सुनीति बाला की।
3: किस जगह?
1: खगेमपली में।
3: दूल्हा क्या करता है?
0: स्कूल मास्टर है, शादीशुदा है। पहले वाली औरत भी शायद है।
1: नहीं नहीं, उसे तो तलाक दे चुका है।
0: उससे एक बच्चा भी है।
2: डैडी डैडी, वो क्या है?
0: वो वॉल क्लॉक है बेटी।
3: अच्छी है, अच्छी लगी हो तो ले जाओ बेटे।
2: ये बंद क्यों पड़ी है?
3: ये बंद इसलिए पड़ी है कि चाबी नहीं थी।
1: काफी पुरानी चीजें हैं आपके घर में और मूल्यवान भी।
3: दादाजी के समय के हैं।
1: आपकी जमीन कहाँ तक है भाई साहब?
3: जमीन उत्तर में देखिए उस बाड़े तक, और इधर दक्षिण में वो जो आम का पेड़ देख रही है ना, वहां तक।
1: काफी बड़ी जमीन है। सुनो हम दोनों जरा घूम के आते हैं। स्नान भी, चलो बेटा तालाब तक घूम कर आए।
0: सुना है जमीन बेच रहे हो?
3: हाँ, तीन भाग करके दो बेच रहा हूँ।
0: भाई कम से कम हमसे तो विचार विमर्श कर लेते।
3: सुना जाओ बा, विचार विमर्श, और वो भी तुमसे? क्यों
0: भाई, वो जमीन मैं भी तो ले सकता हूँ।
3: हाँ
0: हाँ, हर महीने 100-200 रुपए की किश्त दे दूंगा।
3: क्या?
0: हाँ, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए कह रहा था।
3: दोस्त?
0: हाँ,
3: दोस्ती का नाम मत लो सुना जाओ बा। आज मुझे पता चल गया, दोस्ती वोस्ती कोई चीज नहीं है, सब मतलब ही होते हैं। लेकिन लेकिन जिन लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है ना, मैं उन्हीं लोगों को दिखला दूंगा कि मैं बगैर लोन लिए बिना किसी की सहायता के जीवित रह सकता हूं, चाहे इसमें मेरा सब कुछ ही क्यों ना चला जाए।
0: अगर सब कुछ चला गया
3: तो क्या होगा? अरे ये शरीर भी एक दिन राख में मिल जाएगा, और फिर मेरा है भी कौन? न माँ, न बाप, भाई बहन दोस्त, कोई नहीं। आई एम अलोन, आई विल गो अलोन। लेकिन चाहता था मेरा एक दोस्त हो जो मुझसे प्यार करे, सिर्फ प्यार।
0: तुम्हें मुझ पर नाराज होने का पूरा हक है डोबी, लेकिन अगर तुम असलियत जानते।
3: असलियत? अच्छा तुम ही बतलाओ क्या है असलियत।
0: ये मानता हूं दोस्त कि मैं आज जो कुछ भी हूं तुम्हारी बदौलत हूं, लेकिन अगर तुम असलियत जानते तो ये सवाल नहीं करते। सुनीता के पिताजी ने हला भेजा कि 5,000 रुपए लेकर आओ। सुनीति की दहेज में हमें गैस और कुकर देने को भी कहा है। किसी तरह ऑफिस से एडवांस लेकर और सुनीता का हार गिरवी रखकर 5,000 रुपए का इंतजाम कर पाया हूं। तो छोटा भाई शादी करना चाहता है, इसलिए या तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा या नया मकान बनवाना पड़ेगा। तो माँ अलग रट लगाए है कि एक ही बेटी है, उसके लिए गले का हार तक नहीं बनवाया। स्कूटर पिछले 1.5 महीने से वर्कशॉप में पड़ा है। चलो ये सब भी भुगत दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो मुझे सता रही है वो है सुनीता के इलाज की।
3: सुनीता के इलाज की?
0: हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज जल्दी कराना है, नहीं तो उसके लिए बाहर जाना होगा ही डोबी। 10-20 हजार रुपए लग जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर पैसों की कमी के कारण सुनीता को कुछ हो गया तो सुना नबी का क्या होगा? लगता है मुझे कहीं से उधार।
3: अरे चिंता क्यों करता है सना जाऊबा, कल या परसों तक जमीन का लेन देन हो जाएगा, मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा ही।
0: क्या इडोबी, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ।
3: अरे छोड़ भी, वक्त वक्त की बात है, सुनीता का इलाज कराना बहुत जरूरी है।
0: तुम में और मुझ में बहुत अंतर है डूबी। चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, लेकिन दोस्त ये फैमिली लाइफ भी।
3: बस बस बस बस, तुम्हारा इतना कहना ही काफी है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करूंगा ही।
0: नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया तो मुझे भी कोई।
3: हाँ, दोस्ती में कभी ऐसा सोचते हैं?

0: पटला कहीं का।
1: अब चलिए ना, वरना देर हो जाएगी।
0: हाँ भाई, अब तुम्हें चलना चाहिए।
2: काका को बाय बाय करो बेटे।
3: बाय बाय काका।
0: जरा इधर आओ बेटे पहले।
3: लो आ गई।
0: अब बाय बाय। देखिए भाभी, आपको चाय तक नहीं पिला सकता।
1: कोई बात नहीं।
2: अरे छोड़ो भी यार। अच्छा अब चलते हैं।
1: अच्छा भाई साहब, नमस्ते।
0: नमस्ते भाभी। मैं एक दो दिन में आऊंगा।
2: इतने पर भी डोबी में त्याग की भावना है? तुम्हारे इलाज के लिए रुपया दे रहा है?
1: बड़ी खुशी की बात है।
2: हाँ, अब तो तुम खुश होगी ही।
1: अविवाहित है ना, इसीलिए दे पा रहा है। विवाहित होता तो देखती।
2: सुनीता।
1: हाँ।
3: डैडी डैडी गोद में लो ना, मैं थक गई हूँ।
2: हाँ आओ बेटी आओ।
3: मम्मी को भी प्यार करो ना।
2: काश हम सब की भावनाएं तुम जैसी निर्मल और सच्ची होती। काश।

0: दो दोस्त। अभी आपने श्री मोइरांग थेम इनाउसिंग के मणिपुरी नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद राजकुमारी सनाजाओबी देवी ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सनाजा ओबा अश्वनी कुमार, सुनीता रश्मिदर, सनाह नबी फराह वकील और इडोबी विपिन शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आपने सुना नाटक दो दोस्त, FM 16.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है।

अभी आपने सुरेश प्रसाद के स्वर में ये कुमाऊनी लोकगीत सुना। इसी के साथ उत्तराखंड के लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि

0: पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार

0: सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने

0: के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2-21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:23 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर राजेश कुमार की जानकारी, मक्का की फसल की वैज्ञानिक खेती।
3: किसान भाइयों, हमारे देश में खरीफ ऋतु में धान के बाद उगाई जाने वाली फसलों में मक्का का प्रमुख स्थान है। मक्के की उत्पत्ति स्थान मेक्सिको है। मेक्सिको से यूरोपियन देशों से होते हुए आज मक्का की खेती विश्व के अधिकतम देशों में की जाती है। भारत में कुल अनाज उत्पादन में मक्का का योगदान 9% है। मक्के का उपयोग खाने के साथ साथ स्टार्च, तेल, प्रोटीन, अल्कोहल, औषधीय सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र उद्योग, गोंद, पैकिंग एवं कागज उद्योग में किया जाता है। साथ ही साथ मक्के का प्रयोग पशुपालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन व्यवसायों में चारे एवं दाने के रूप में भी किया जाता है। भारत में कुल मक्का उत्पादन का 85% भोजन के रूप में, शेष 15% उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में मक्का उत्पादन का अधिकांश क्षेत्रफल वर्षा आधारित है। मानसून के अनियमित हो जाने के कारण फसल में जल की आवश्यकता की पूर्ति सिंचाई से करनी चाहिए। सिंचाई सही तरीके से ना करने के कारण मक्के की बढ़वार व उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में मक्का लगभग

84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है। मक्का पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख फसल है, जिसकी खेती असंचित अवस्था में अनाज, भुट्टे, पॉपकॉर्न एवं हरे चारे के लिए की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मक्का की स्थानीय प्रजाति ही प्रचलन में है, जिसमें उत्पादकता कम होने के साथ साथ रोग व्याधि का प्रकोप भी अधिक होता है। मक्का की वैज्ञानिक खेती करके औसत उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाई जा सकती है। मक्का की खेती मैदानी क्षेत्रों से लेकर 2500 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। मक्का की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई डोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। किसान भाइयों, अगर हम संस्तुत उन्नत प्रजातियों की बात करें तो तराई भावर एवं मैदानी क्षेत्रों में पंत शंकर मक्का 1, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 11, सरताज, तरुण, नवीन, कंचन, नवज्योति, माही, प्रताप मक्का 4, पर्वतीय क्षेत्रों में हिम 129, वीएल 42, विवेक शंकर मक्का 5, विवेक शंकर 9, विवेक शंकर मक्का 15, विवेक शंकर मक्का 23, विवेक मक्का हाइब्रिड 25, विवेक मक्का हाइब्रिड 33, विवेक संकुल मक्का 11, विवेक संकुल मक्का 31, वीएल मक्का 16 एवं वरुण हैं। संकर मक्का के लिए 240 ग्राम से 280 ग्राम बीज प्रति नाली, संकुल किस्मों के लिए 360 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति नाली की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, मक्का की बुआई करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि बीज अपने घर का प्रयोग कर रहे हैं तो बीज का शोधन अवश्य करें। बीज शोधन के लिए फफूंदी नाशक रसायन कार्बनडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बुआई पंक्तियों में ही करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के परिणामों के आधार पर करना चाहिए। किसी कारण मृदा परीक्षण ना हुआ हो तो शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के लिए 1 किलो 600 ग्राम नत्रजन, 1 किलो 200 ग्राम फास्फोरस एवं 800 ग्राम पोटास प्रति नाली, साथ ही मध्यम व देर से पकने वाली प्रजातियों के लिए 2 किलो से 2 किलो 400 ग्राम नत्रजन, 1 किलो 200 ग्राम फास्फोरस एवं 800 ग्राम पोटास प्रति नाली की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा एवं 1/3 नत्रजन की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें तथा शेष नत्रजन की मात्रा 2 बार में प्रयोग करें। प्रथम बार जब पौधे 2 फुट के हो जाएं तब तथा दूसरी बार फूल नर मंजरी निकलते समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी अधिकांश खेती जैविक विधि से की जा रही है। जैविक विधि से मक्के की खेती के लिए भली भांति सड़ी हुई गोबर की खाद 20 क्विंटल प्रति नाली की दर से एवं बुआई से 15 दिन पूर्व खेतों में डालकर गहरी जुताई करके छोड़ दें एवं समय अनुसार बीज की बुआई करें। अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है तो किसान भाई 4 से 6 पत्तियां आने पर पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई पौधे 2 फीट के हो जाएं तब, तीसरी सिंचाई जब मक्के में नर मंजरी निकलने लगे, चौथी सिंचाई भुट्टे निकलते समय एवं अंतिम सिंचाई दाने बनते समय करनी चाहिए। मक्का की खेती में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही गंभीर समस्या है। खरपतवार मक्के की फसलों के साथ उगकर भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों का 1/3 भाग अकेले ही तेजी से ग्रहण करते हैं, जिसके कारण फसलों का के आवश्यक पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जिससे फसलों की बढ़वार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मक्का की उपज एवं गुणवत्ता में कमी आ जाती है। मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपी, हैंडहो एवं कुदाल का प्रयोग करना चाहिए एवं बुआई के 25 दिन बाद निराई गुड़ाई अवश्य कर दें। दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 35 से 40 दिन के उपरांत भी कर दें, साथ ही साथ पौधों पर मिट्टी भी चढ़ा दें। किसान भाइयों, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए एट्राजीन

0: 50 WP की 40 ग्राम मात्रा को 10 से 12 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति नाली छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही एलाक्लोर जो बाजार में लासो के नाम से बिकती है कि 1 मिलीलीटर दवा को 10 से 12 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति नाली बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें। मक्के की फसल में बहुत से कीट रोग लगने की संभावना रहती है। इन कीट एवं रोगों से बचाव के लिए किसान भाई कीटनाशी एवं रोगनाशी दवाओं का प्रयोग करें। अगर हम कीड़े की बात करें तो मक्के की फसल में तना छेदक कीट की सूढ़ियाँ तने में छेद करके उसे अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्यूनाल्फास 25 EC नामक दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रारोह मक्खी, यह एक बहुत छोटे आकार की मक्खी होती है जिसके लार्वा फसल को हानि पहुंचाते हैं। ये पौधे की प्रारंभिक अवस्था में मध्य प्रारोह में घुसकर उसके भीतरी भाग को खाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेक्रान की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे निकलने के पश्चात छिड़काव कर दें। मक्का की खेती में पत्तियों का झुलसा रोग एवं तुलसीता रोग प्रमुख है। इस रोग से ग्रसित पत्तियों पर लंबे अंडाकार नाव के आकार के पीले भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में काले हो जाते हैं और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां झुलस कर सूख जाती हैं। पत्तियों के नीचे सतह पर सफ़ेद रुई के समान फफूंदी दिखाई देती है। रोगी पौधे में भुट्टे कम बनते हैं या बनते ही नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए इंडोफिल Z78 या इंडोफिल M45 की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। भुट्टों के छिलके जब अच्छी तरह सूख जाएं और दाने कड़े हो जाएं तो तुड़ाई कर लेनी चाहिए। तुड़ाई के पश्चात छिलके हटाकर भुट्टों को भली भांति सुखाकर दाने अलग कर लें। भंडारण से पूर्व दोनों को पुनः सुखाना अत्यंत आवश्यक होता है। मक्का के दानों में 12 से 14% तक नमी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नमी होने पर भंडारण में कीड़ों से नुकसान की संभावना अधिक रहती है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते समय किसान भाई दस्ताने एवं चश्मे का प्रयोग अवश्य करें और छिड़काव करने के बाद हाथ मुंह साबुन से अवश्य धो लें एवं रसायनों को छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। किसान भाइयों, इस प्रकार वैज्ञानिक विधि द्वारा मक्का की खेती करने से 1 क्विंटल से 1 क्विंटल 20 किलोग्राम प्रति नाली उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: अभी आपने डॉक्टर राजेश कुमार की जानकारी सुनी, मक्का की फसल की वैज्ञानिक खेती। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम में विज्ञान भारती। रात्रि 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चांगना सेरी सीपी माधवन नंबूथिरी का कर्नाटक गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। 7:30 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये सभी समाचार हमारे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। साई 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैलस्वर में आज हम आपको सुनवाएंगे गोपाल जोशी और पुष्पा जोशी का गाया कुमाऊनी लोकगीत। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी सुनेंगे साई 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा साइबर बुलिंग, ना करें ना सहें। और साथ ही आपके लिए

लेकर आएंगे खेल जगत और आज का इतिहास। इसके अलावा आप सुनेंगे आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्ष पर आधारित कार्यक्रम प्रश्न मंच। प्रतिभागी होंगे पवन कुमार, गौरव आर्या, सोहन आर्या और देवेंद्र आर्या। ग्रामीण श्रोताओं के लिए उत्तरायण कार्यक्रम की प्रसारण का समय रहेगा 5:45। इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत योजना, मिशन लाइफ, कचरा कम करें विषयों पर।

किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं साय 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज की बातें के अंतर्गत आपसे बातें होंगी राष्ट्रीय बागवानी मिशन विषय पर, साथ ही आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता कुरमुला कीट प्रबंधन विषय पर डॉक्टर प्रताप ए दिवेकर से प्रमोद कुमार पांडे की बातचीत। भक्ति संगीत कार्यक्रम में 6:41 पर आज आप सुनेंगे सूर्य गायत्री और कुमार केशव की गाई भक्ति रचनाएं। मिले जुले गीत और गजलों के कार्यक्रम सबरस का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8 बजे, और फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद यानी कि अपराह्न 2:45 पर। कार्यक्रम होगा एक ही फनकार, 3 बजे आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। फिल्म संगीत 7:40 पर। इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत रात्रि 9:15 पर।

श्रोताओं, हमारे आज के फनकार हैं बहुत कम वक्त में ही फिल्म जगत में अपने अनूठे संगीत से सफलता हासिल करने वाले संगीतकार एआर रहमान। उन्होंने भारतीय संगीत को एक नया रूप दिया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की। एआर रहमान ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में रिलीज फिल्म रोजा से की, जिसके संगीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में। एआर रहमान के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा पीके मिश्रा ने।

एआर रहमान को 2008 की फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर और 2010 की 127 आवर्स फिल्म के संगीत के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। समय के साथ उन्होंने बॉम्बे, दिल से लगान और जोधा अकबर जैसी फिल्मों का बेहतरीन संगीत तैयार किया। तो लीजिए पेश है उनकी फिल्म दिल से का गीत सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाजों में। इस गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत एआर रहमान ने।

श्रोताओं, सिनेमा जगत के अलावा एआर रहमान ने बॉम्बे ड्रीम्स और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे मंच प्रस्तुतियों के लिए भी काम किया। उन्होंने मिक जैगर, हैंस जिमर और माइकल जैक्सन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ भी बखूबी काम किया है। आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं उनका संगीतबद्ध किया जब तक है जान फिल्म का गीत, श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का गाया, गुलजार ने गीत लिखा है।

श्रेया घोषाल और मोहित चौहान के गाए जब तक है जान फिल्म के इसी गीत के साथ एक ही फनकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हमारे आज के फनकार थे संगीतकार एआर रहमान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनकी फिल्म राजकुमार के गीत से। गीत लता मंगेशकर का है और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

दोस्तों, जब भी 60s 70s के शम्मी कपूर के गाने हम सुनते हैं तो हम शम्मी कपूर स्टाइल में थिरकने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। तड़क भड़क वाला अंदाज, हवा में हाथ फैलाना, संगीत के ताल पर सिर झुकाना और ढेर सारी ऊर्जा के साथ कदम रखना, यही शम्मी का अंदाज था। पहले फिल्मों में गाने तो बहुत होते थे लेकिन हीरो कभी ज्यादा डांस नहीं किया करते थे। लेकिन शम्मी कपूर के आने से सब कुछ बदल गया। वो अपनी अनोखी नृत्य शैली के लिए

संगीत की ताल पर सिर झुकाना और ढेर सारी ऊर्जा के साथ कदम रखना, यही शम्मी का अंदाज था। पहले फिल्मों में गाने तो बहुत होते थे, लेकिन हीरो कभी ज्यादा डांस नहीं किया करते थे। लेकिन शम्मी कपूर के आने से सब कुछ बदल गया। वो अपनी अनोखी नृत्य शैली के लिए आइकन बन गए। गंभीर नायकों के किरदार को शम्मी ने मजेदार और हंसमुख बना दिया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म कश्मीर की कली का गीत। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, बोल SH बिहारी के हैं और OP नैयर ने संगीत दिया है।

0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्म गीत। बोलने का अलहदा अंदाज, एक खास तरीके से झुकती गर्दन लोगों को सबसे अलग और अनोखा लगा। पुष्पा ये आंसू पोछ डालो, आई हेट टीयर्स, अमर प्रेम फिल्म का ये डायलॉग आज भी लोगों के पसंदीदा डायलॉग्स में से एक है। राजेश खन्ना का तिलिस्म हिंदी सिनेमा के दीवानों की सिर चढ़कर बोलता रहा। आइए सुनते हैं अब उनकी फिल्म अमर प्रेम का गीत, किशोर कुमार का गाया। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

दोस्तों बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हेलेन, जिन्होंने बॉलीवुड में कैबरे डांस की शुरुआत की, उन्हें डांसिंग क्वीन कहा जाता रहा। ऑन स्क्रीन उनकी डांस एनर्जी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। शानदार डांस और मन मोहने वाली अदाओं से हेलेन ने सिनेमा प्रेमियों के दिल पर सालों साल राज किया। लीजिए पेश है उनकी फिल्म गुमनाम का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने गीत लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

जब अलग अंदाज की बात हो ही रही है तो भला राजकुमार को कैसे भुलाया जा सकता है। जानी शब्द जिनका पर्याय बन चुका था, जानी के साथ ही उनकी आवाज की कशिश और एक्टिंग का हुनर लोगों की जहन में बसा है। जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम

की नींद से भी उठकर चले आते। जैसे अनेक असरदार संवाद हमारे दिलों में आज तक बसे हुए हैं। आइए सुनते हैं अब उनकी फिल्म नीलकमल का गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने।

ये था हमारा आज का सदाबहार फिल्मी गीत। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर एक नई सोच और नए विषय के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अभी दीजिए कार्यक्रम से माधुरी गैड़ा को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत FM 16.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न हो रही है। अपनी सायंकालीन सभा में 5:30 बजे आपके सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे प्रसारण मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र और एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बागेश्वर केंद्र से भी रिले किए जा रहे हैं। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ हो रही है। संध्या के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को

0: बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीत शैल स्वर में। आज कलाकार हैं गोपाल जोशी और पुष्पा जोशी।

गोपाल जोशी, पुष्पा जोशी के युगल स्वरों में कुमाऊनी लोकगीत शैल स्वर में अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष और कल दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें आज सुनिएगा चांगनार सेरी सीपी माधवन नंबू थेरी का कर्नाटक शैली में गायन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार शाम 7:30 पर देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर में शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा, साइबर बुलिंग ना करें ना सहें खेल जगत। और आज इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पर आधारित प्रश्न मंच युवा साथियों के लिए हम लेकर आएंगे, जिसमें प्रतिभाग करेंगे पवन कुमार, गौरव आर्या, सोहन आर्या और देवेंद्र आर्या। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा के विषय आज रहेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत योजना, मिशन लाइफ, कचरा कम करें। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत में आज कलाकार होंगे सूर्य गायत्री और कुमार केशव। संध्या 7:00 किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज की बातें राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर होंगी और कुर्मुला कीट प्रबंधन इस विषय पर डॉक्टर प्रताप ए दिवेकर से प्रमोद कुमार पांडे की भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। फिल्म संगीत आप सुनिएगा शाम 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में। सुगम संगीत आप सुनेंगे सबरस में रात 8:00। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष कार्यक्रमों का। और अब एक नजर कल दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:55 पर। 6:05 पर विचार बिंदु में सुनिएगा श्रम का महत्व विषय पर विचार। भक्ति संगीत आराधना 6:10 पर। आज की बात 6:40 पर। प्रातः 6:50 पर विविधा। प्रातः 7:10 पर श्री रामचरित मानस गान पाठ। प्रातः 7:40 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा में आर्थराइटिस कारण लक्षण और बचाव इस विषय पर डॉक्टर श्रुति अग्रवाल से संजय जोशी की भेंट वार्ता। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे कल सुबह 8:30 पर, जिसमें गंगा दशहरा पर्व, विश्व फुटबॉल दिवस, विनायक दामोदर सावरकर हिंदी पत्रकारिता दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो विषयों पर बच्चों के लिए चर्चाएं होंगी। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी प्रस्तुतियां भी सुन सकेंगे। कल दोपहर 12:30 पर बहनें सुनेंगी घर संसार, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा कुछ नया सीखें। दिन में 1:30 पर रूपक सुनिएगा कुमाऊं के झोड़े, प्रस्तुति होगी शंकर उप्रेती की। कल दिन में 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में सिंचित धान की वैज्ञानिक

वैज्ञानिक खेती इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर पूरन सिंह मेहता। और कल सायंकालीन सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे। कल रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा में पंडित हर शंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कल शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कल शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कल शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं, राष्ट्रमंडल दिवस और घटनाक्रम भी युवा साथी सुनेंगे। संध्या 5:45 पर कल उत्तरायण कार्यक्रम में, कल रविवार है तो श्रोता सुनते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम जो कि फरमाइशी होता है बुराश, आप सुनेंगे। इसके अलावा चर्चा के विषय रहेंगे अंत्योदय अन्न योजना, मिशन लाइफ, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कल संध्या 7:15 पर कृषि समृद्धि ये प्रायोजित कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे, जिसमें प्रमुख खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन इस विषय पर डॉक्टर गौरव वर्मा जानकारी देंगे। संचालन करेंगे श्री देवेंद्र सिंह कार्के। यह था विवरण हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष और कल दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मीनाक्षी। दोस्तों, आज हम सब डिजिटल दुनिया के नागरिक हैं। सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग के नोटिफिकेशन से होती है और रात का अंत रील्स और मीम्स स्क्रॉल करते हुए। इंटरनेट ने दुनिया को मुट्ठी में तो कर दिया है, लेकिन इसी मुट्ठी से एक ऐसी बुराई भी बाहर निकली है जिसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हमारा मंत्र साफ है, साइबर बुलिंग ना करें ना सहे। दोस्तों, अक्सर हम मजाक मजाक में किसी की पोस्ट पर कोई कड़वा कमेंट लिख देते हैं, किसी की फोटो का मीम बनाकर वायरल कर देते हैं, या किसी को ऑनलाइन ट्रोल करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ मजाक है, टाइम पास है, लेकिन क्या आप जानते हैं स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठा इंसान इस मजाक के अंदर टूट सकता है। गलत कमेंट्स, बिना मर्जी की तस्वीरें शेयर करना या किसी को इंटरनेट पर लगातार मानसिक रूप से परेशान करना कोई साधारण बात नहीं, ये एक अपराध है। इसे ही साइबर बुलिंग कहते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो क्या करें। कई बार हमारे युवा दोस्त डर जाते हैं, खुद को कमरों में बंद कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, डरना समाधान नहीं है। अगर आप या आपका कोई दोस्त साइबर बुलिंग का शिकार है तो इन चार बातों को हमेशा याद रखें। सामने वाले को ब्लॉक करें, उनके उकसाने पर पलट कर वैसे ही गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उस चैट कमेंट या फोटो का स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें, ये आगे कार्रवाई में बहुत काम आता है। इसे छुपाए नहीं, अपने माता पिता, शिक्षकों या किसी भरोसेमंद दोस्त को ज़रूर बताएं। बात करने से बोझ आधा हो जाता है। सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए www.cybercrime.government.in पोर्टल बनाए हैं। आप यहाँ

अपनी पहचान छुपाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि दोस्तों, इंटरनेट एक खूबसूरत जगह है नई चीज़ें सीखने के लिए, दोस्त बनाने के लिए और अपनी कला को दुनिया के सामने लाने के लिए। इसमें नफ़रत मत फैलाइए। किसी की उंगलियों की बोट पर चलने से पहले ये ज़रूर सोचें कि हमारे शब्द किसी को खुशियाँ दे रहे हैं या जख्म। डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और खूबसूरत बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। तो याद रखिएगा, साइबर बुलिंग ना करना है और ना ही सहना है। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए अब सुनाते हैं कार्यक्रम में आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में बढ़ते हैं अब हमारे आज के अंक यानी खेल जगत की ओर, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण खेल समाचारों के बारे में। दोस्तों, आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका रोनाल्डो को 4 बरस से इंतज़ार था। रोनाल्डो के हाथों ने सऊदी प्री लीग की चमचमाती ट्रॉफी उठा ली है। दिसंबर 2022 में जब उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर अल नस्र का दामन थामा था तो पूरी दुनिया दंग रह गई थी। लेकिन 4 साल से एक सवाल हर किसी को चुभ रहा था कि दुनिया के महानायक के खाते में अब तक खिताब क्यों नहीं आया। लेकिन गुरुवार की रात को रोनाल्डो ने इस अधूरे ख्वाब को हकीकत में बदल दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। साथ ही दोस्तों, हरफनमौला अनुकूल रॉय को श्रीलंका में 9 से 21 जून तक होने वाली आगामी त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत ए टीम में चुना गया। वे टेस्ट और वनडे टीम में चुने गए हर्ष दुबे की जगह लेंगे। अश्मिता चालिहा मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल क्वार्टर में पहुंच गई हैं, जबकि भारत के बाकी खिलाड़ी हार कर बाहर हो गए हैं। गुरुवार को अश्मिता ने मलेशिया की गोह जिन वे को 21-13, 21-16 से पराजित किया। फराटा दौड़ 100 मीटर में शुक्रवार को 2 बार कुछ ही मिनटों के भीतर 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे। यहां चल रही सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दौरान गुरिंदर वीर सिंह ने अनिमेश कुजूर के 10 माह पहले बनाए गए 10-18 सेकंड के रिकॉर्ड को 10-17 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी कर तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण खेल समाचार। चलिए कार्यक्रम युववाणी में अब सुनाते हैं आपको आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पर आधारित ये प्रश्न मंच, जिसके प्रतिभागी हैं पवन कुमार गौरवार्या, सोहन आर्या और देवेंद्र आर्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी के बेहद खास और रोमांचक अंग में, क्योंकि आज हम कराने जा रहे हैं प्रश्न मंच के अंतर्गत रेडियो क्विज, जिसके लिए आज हमारे साथ है 2 टीम्स, टीम ए और टीम बी, जो हमें काफी उत्साह में नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, हम पूछेंगे इनसे सवाल और ये देंगे हमें इसका सही जवाब। साथ ही आप भी ध्यान दीजिए और अगर जानते हैं आप सही उत्तर, क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम चरण में होगा आपके लिए एक बेहद खास प्रश्न, जिसका सही उत्तर आपको लिख भेजना है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। तो चलिए इस रोमांचक से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न हमारा जाता है टीम ए को। टीम ए से हमारा प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? टीम ए
1: 1923।
0: जी बिल्कुल सही जवाब 1923। 1923 में रेडियो का शोर गूंजना शुरू हुआ था, पर क्या आप जानते हैं कि जिस ऑल इंडिया रेडियो को हम आज इतने गर्व से सुनते हैं, उसे ये पहचान कब मिली? तो इसके लिए दूसरा प्रश्न हमें पूछना होगा टीम बी से, और हमारा प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? टीम बी
2: 1936 में।
0: जी बिल्कुल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो तो बन गया, लेकिन एक और खूबसूरत नाम अभी बाकी था, आकाशवाणी। अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका सही जवाब जानते हैं, और इसका सही जवाब हम जानना चाहते हैं टीम ए से। तो टीम ए से हमारा सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया?
2: 1957।
0: बिल्कुल एकदम सही जवाब टीम ए का। पुनः प्रश्न मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारा सवाल जाता है टीम बी को, और सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र थे?

0: एमबी। जी बिल्कुल, आजादी के समय हमारे पास सिर्फ 6 केंद्र थे और आज देखिए आकाशवाणी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। समय के साथ तकनीक बदली और आई एफएम की बारी। तो एफएम से अगला सवाल हमारा जाता है टीम ए को। सवाल है, भारत में पहली एफएम सेवा कब और कहां शुरू हुई?
1: इसका जवाब तो मैं मालूम नहीं।
0: जी कोई नहीं, चलिए इस प्रश्न को हम पास करते हैं टीम बी को और देखते हैं कि क्या उन्हें इसका सही जवाब पता है। तो यही सवाल हमारा टीम बी से कि भारत में पहली एफएम सेवा कब और कहां शुरू हुई?
2: 23 जुलाई 1977 को चेन्नई मद्रास में।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं इसका जवाब किसे पता है, जो है हमारा अगला प्रश्न, वो है कि एफएम का फुल फॉर्म क्या है। टीम ए,
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
0: जी बिल्कुल, टीम ए का एकदम सही जवाब। दोस्तों अभी तो रेडियो की शुरुआत हमने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने अल्मोड़ा केंद्र की सुबह कितनी जल्दी होती है? तो अगला प्रश्न है अल्मोड़ा केंद्र से और देखते हैं इसका जवाब हमारे इन टीम्स को आता है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें इसका जवाब बिल्कुल एकदम सही पता है। तो सवाल है टीम ए से और सवाल है कि आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा की शुरुआत कब होती है?
3: सुबह 5:53 में आकाशवाणी संकेत धुन के साथ।
0: जी बिल्कुल, अब सवाल है युवाओं के कार्यक्रम युववाणी से और सवाल जाता है टीम बी को कि आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से युवाओं का कार्यक्रम युववाणी कब प्रसारित किया जाता है? टीम बी,
4: 5:15।
0: बिल्कुल, शाम को 5:15 पर। और साथ ही चलिए अब देखते हैं कि कौन शाम की चाय रेडियो के साथ पीता है, क्योंकि अगला प्रश्न है हमारे आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सायंकालीन सभा की शुरुआत कब होती है? ये सवाल हमारा जाता है टीम ए को।
1: 4:58।
0: जी बिल्कुल, 4:58 में हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत होती है। दोस्तों अब थोड़ा रुख बदलते हैं और बात करते हैं वर्तमान की। तो अब हमारा सवाल जो है वो है टीम बी से कि प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
2: प्रसून जोशी।
0: जी बिल्कुल, प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अब बताइए कि कैलेंडर की वो कौन सी तारीख है जो खास रेडियो के नाम समर्पित है? और ये सवाल है हमारा टीम ए से, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है?
3: 13 फरवरी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेहद खास प्रोग्राम की, बच्चों का वो प्यारा संसार जिसका इंतजार उन्हें पूरे हफ्ते रहता है। तो बताइए आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल वाटिका का प्रसारण कब किया जाता है? ये सवाल है हमारा टीम बी से।
4: रविवार को।
0: बिल्कुल, रविवार को बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल वाटिका का प्रसारण आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से किया जाता है। अब पुनः प्रश्न बढ़ता जाता है हमारा टीम ए को और सवाल है कि आकाशवाणी अल्मोड़ा केंद्र की स्थापना कब हुई?
1: जून 15, 1986।
0: बिल्कुल सही। अगला सवाल है टीम बी से, हाल ही में 2021 के बाद आकाशवाणी अल्मोड़ा ने अपना प्रसारण किस एफएम फ्रिक्वेंसी पर शुरू किया है?
2: जी माफ कीजिए, हमें इसका आंसर नहीं पता है।
0: जी ये सवाल पास होता है टीम ए को। टीम ए से सवाल है, हाल ही में 2021 के बाद आकाशवाणी अल्मोड़ा ने अपना प्रसारण किस एफएम फ्रिक्वेंसी पर शुरू किया है?
1: 100.8 MHz।
0: जी बिल्कुल, 100.8 MHz पर एफएम फ्रिक्वेंसी शुरू हुई। अब अगला सवाल जाता है टीम बी को और सवाल है कि रेडियो प्रसारण में आरजे का फुल फॉर्म क्या होता है?
4: रेडियो जॉकी।
0: जी बिल्कुल, अगला सवाल पुनः टीम ए को और सवाल है कि ऑल इंडिया रेडियो की पहली महिला न्यूज रीडर कौन थी?
3: माफ करना, हमें इसका उत्तर नहीं पता।
0: ये सवाल पुनः पास होता है टीम बी को और सवाल है कि ऑल इंडिया रेडियो की पहली महिला न्यूज रीडर कौन थी?
2: जी उनका नाम था शहीदा बानो।
0: बिल्कुल सही जवाब टीम बी का। और दोस्तों हमें लग रहा है कि टीम बी पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ रही है। तो अब अंतिम सवाल हमारा है टीम ए से और सवाल है कि महिलाओं के लिए ऐपण कार्यक्रम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से कब प्रसारित किया जाता है?
1: 12:30।
0: जी बिल्कुल, एकदम सही जवाब टीम ए का। क्या बात है दोस्तों, आज का ये रेडियो क्विज काफी शानदार और मजेदार रहा। उम्मीद है कि आप सबको ये बेहद पसंद आया होगा। आज आप टीम्स ने क्विज में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। जिनके जवाब सही थे उन्हें बधाई और जो नहीं जानते थे उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों आज के हमारी रेडियो क्विज की जो विजेता टीम है वो है टीम बी। वो अपने अत्यधिक पॉइंट्स के साथ टीम ए से आगे रही, लेकिन आप दोनों टीम्स बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने कोशिश की है। तो दोस्तों फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए और अंक के साथ। नमस्कार।

दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत अभी आपने सुनी आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पर आधारित प्रश्न मंच, जिसके प्रतिभागी थे पवन कुमार गौरव आर्या, सोहन आर्या और देवेंद्र आर्या। लीजिए, कार्यक्रम में पेश है अब आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। ऐसे में 23 मई के दिन भी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। 23 मई साल 1984 को बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंची। पहली भारतीय महिला बछेंद्री ने एवरेस्ट फतह कर इतिहास रचा था। उन्होंने ये उपलब्धि अपने 30वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हासिल की। उनका जन्म 24 मई साल 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ। बछेंद्री को अपने परिवार और रिश्तेदारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा जब उन्होंने स्कूली शिक्षक के बदले पेशेवर पर्वतारोही के रूप में करियर चुनने का फैसला किया। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित बछेंद्री पाल अर्जुन पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों से भी अलंकृत हैं। भारत सरकार ने बछेंद्री पाल को साल 1985 में पद्मश्री और साल 2019 में पद्म भूषण से नवाजा। 23 मई 2000 से दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा प्रायोजित किया जाता है। कछुए पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी घटती संख्या के कारण कछुए जंगल में दुर्लभ हो गए हैं, जिससे उनकी आज़ादी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में बन गई है। इसलिए ये दिन लोगों को दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों को बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 30 मई 2000

16 को भारत ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV-TDD का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह अंतरिक्ष में उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के बाद हवाई जहाज की भांति पृथ्वी पर पुनः वापस लाता है। इससे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का खर्च 10 गुना कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने जानी आज दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। फिर से समय हो चला है मनोरंजन का, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में अंतिम चरण की ओर और जान लेते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। हमारे कल का प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या है, जिसका सही उत्तर है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। अब नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया। अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो मित्र मीनाक्षी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनेर सब दगड़ी के अब दगड़ी मनीषा का नमस्कार श्रोताओं, आज बात करूँ पीएम विश्वकर्मा योजना बारे में, जो एक हमार पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार को आधुनिक संसाधन और प्रशिक्षण और बाजार तक पहुँचने तले बढ़ाई जा रहे। जय हमार जतुले पारंपरिक कारीगर छिन, उनके बेहतर और उनार हुनर दगे उनके मजबूत स्थिति तक पहुँचों में यो मदद करूँ। देवड़ी योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों आजीविका के मजबूत करना छो, ताकि वो आधुनिक तकनीकों द्वारा अपन हुनर के और ज़्यादा विकसित कर सकूँ। जेल उनार आर्थिक स्थिति बेहतर हो और अपन पारंपरिक काम के बनाई धर पाल जेल बड़ी सुनार लोहार कुम्हार और अन्य पारंपरिक शिल्पजास कारीगरों के एक फायदा मिलो, जो कई सालन में अपन हुनर के परंपरा में अखिल बढ़ने लग रही और योजना में कारीगर के नई उम्मीद और समर्थन मिलो। देखो यह उनके वित्तीय सहायता मिलो, जय लो अपन नान नान व्यवसाय के बढ़ सकनी। यह पहल वे पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के बढ़ावा मिलो, जेल कारीगरों आय और आत्मनिर्भर दिव्य बढ़ते रहो और उस समाज में एक मजबूत आर्थिक आधार बड़ा पाल। देवड़ी देश एक सांस्कृतिक विरासत तले सहजनक काम करनी, जेल पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पक संरक्षण हूँ, जेल हमार जो उन्हीं वाल पीढ़ियों के लिए अपूर्ण संस्कृति पर जुड़ाव और इमें प्रेरणा मिले। योजना एक ठुल फैद यल चुकी, येल कारीगरन के नई बाजार

में जुड़न में मदद मिलनी, क्योंकि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटिंग बाजार ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण में दी जा। यह लूनार उत्पाद न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचनी, जेल उनार कमाई और पहचान दिए बड़ी रुनी। यह ना कारीगरों कमाई बढ़ेल बल्कि उनार पहचान और आत्मविश्वास के लिए यो बढ़ू। ये केवल पारंपरिक बाजार तक सीमित ना रहूं बल्कि वैश्विक स्तर पर यह अपन शिल्पक प्रदर्शन कर पानी। यह उनार लीजिए नई अवसर खुलनी और वो अपन परिवार और समुदाय के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर सकनी। यह योजना महिलाओं और युवा कारीगरों के लिए एक मजबूत स्तंभ रूप में ठहरू, जैलू अपन पारंपरिक कौशलक उपयोग आधुनिक तरीकल कर पाल और जैक चलते एक समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकासिक राह बढ़ते रहो और हर वर्ग के लोगों के अपन प्रतिवादी होने इमें मौका मिलो। ये योजना देशिक सामाजिक समरसता के लिए बढ़ावा दी, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि मन की एक समान मंच पर होनी और एक दोहरक हुनर में वो प्रेरित होनी। यह एक यश माहौल बनू जैल रचनात्मक कौशल और आत्मनिर्भरता समागम हो जो देशिक विकास में एक मजबूत आधार बनू। पीएम विश्वकर्मा योजना न केवल पारंपरिक कारीगरों के आत्मनिर्भर बनू में मदद करूँ बल्कि एक समावेशी टिकाऊ और सांस्कृतिक रूप बल ठोस मजबूत भारतक निर्माण करनी जहाँ हर कारीगर और हर शिल्प अपन पहचान और भविष्य बढ़ पानी। तो दुगड़े हम तय आपको यही कौन कि आप सब अपन हुनर पर गर्व करो, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना अपन जी एक भल मौक लिभे रहो जो अपन काम के न केवल सम्मान जोर बल्कि आपू के नई संसाधन प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करो जैल आपू मजबूत और आत्मनिर्भर बढ़ सकला। तो ये तो छी आपू देखे जरूरी बातचीत अखिल आप लोग कन्नु मनोरंजन और आपको सुनानू महिपाल मेहता और ज्योति उप्रेती गई हो कुमारी लोकगीत।

जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा मैं जानू नेपाला मेरी जमुना साई चुम।

जो पौजिया सुनूं का दपे पौजिया सुनूं का मेरी जमुना साई चूं चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चूं चुमा पौजिया सुनूं का मेरी जमुना साई चूं।

दपै पूजी रे छोखुना मेरी जमुना साई छूं चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई छूं चुमा मैं जानू नेपाला मेरी जमुना साई छूं चुमा हिट

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आयुष्मान भारत योजना जगह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ले कही जा। यह भारत सरकार की एक क्रांतिकारी स्वास्थ्य पहल छू। यह उद्देश्य देशा गरीब और कमजोर वर्गों उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना छू। यह योजना के तहत आर्थिक रूप में कमजोर परिवार के 5 लाख रुपये तक सालाना निःशुल्क उपचार मिलूँ। यह योजना देश में स्वास्थ्य असमानता के कम करण और हर मनखी के एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जनक अधिकार जनक दिशा में एक ठुल कदम

देखो, ये योजना उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता ना बल्कि यह हर मनकी के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुनिश्चित करण छु। यह न सिर्फ गरीब परिवारों के गंभीर बीमारियों का इलाज मिलू, बल्कि यो स्वास्थ्य खर्च कारण परिवार के आर्थिक बोझ के लिए कम करूँ। ये योजना देश में लाखों मनखिनक जीवन में सकारात्मक रूप बटिक बदल लो। ये योजना 2018 में शुरू करी गई थी। ये दुनियाक सबसे ठुल स्वास्थ्य बीमा योजना छू, जिनमें करीब 50 करोड़ मनखी शामिल छीन। यह सरकारी और निजी अस्पताल दिनों में काम करूँ। सभी मन की उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं इनमें उपलब्ध है जानी। इनमें हजारों अस्पताल शामिल छीन और यह एक मकसद ले यही छू कि कोई ले मन की गंभीर बीमारी का इलाज ली आर्थिक बोझ बटिक न गिर जाओ। ये योजनाओं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करी जाओ। ये योजना में डिजिटल कार्ड ले जारी होनी, जेल आपू सिद्ध अस्पताल में दिखे सकता। ये योजना खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में ठुल सफलता हासिल करने लग रहे, क्योंकि ये उ मनखिन लीजिए फ्री इलाजक मौका मिलूँ जो पहली यह सुविधा वे वंचित रह जानी। ये योजना विशेष रूप में वृद्ध महिला नंदिन और दिव्यांग जा समूह के लिए लाभ पहुँचूँ, जेल सभी वर्गों समाज स्वास्थ्य सुविधा मिल सको। ये योजना के देश के सामाजिक सुरक्षा में एक मजबूत स्तंभ मानी जा। यह देश में स्वास्थ्य असमानता के कम करने में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होने लग रहा हो। ये योजना स्वास्थ्य सेवाओं के आम मनखी तक पहुँचने में क्रांतिकारी बदलाव कर रहा हो और यह के अलावा गरीब और वंचित वर्ग का सुरक्षित निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज अधिकार इनमें दे रहा हो, जेल हर मन की लिए एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत तक सपन साकार होने लग रहा हो।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: धगड़ियो मिशन लाइफ कचरा कम करणक अंतर्गत कचरा साफ करण एक कुण उठुण ना बल्कि अपुन पूर्व जीवन शैली में बदलाव लूँ छू। हम प्लास्टिकक कम इस्तेमाल करूँ, रिसाइकिल करूँ और अपुन लोकल प्रोडक्ट यानी जो हमारे आसपास मिलनी उन्हर उपयोग हम कर सकूँ। और एक बार उपयोग कर बेर फेंकणक आदत लय हमको छोड़ पड़े, यह प्रदूषण लय कम हो। दगड़ियों संसाधनों का उपयोग संतुलित मात्रा में होल और हम अपन पर्यावरण के सच में बचा पान। यह मिशन का उद्देश्य मनखी और समुदाय के पर्यावरण प्रति जागरूक और सक्रिय बनाना छू। यह एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल के कम करण, घरेलू कचरा के अलग करण और ई कचरा सुरक्षित प्रबंध जांच कदमों में जोड़ दूँ। दगड़ियों अक्टूबर 2022 में शुरू हुई यह पहल मई 2023 में जून 2023 तक 24 मिलियन से ज्यादा लोगों के में शामिल कर रहा और 2028 तक यह 1 अरब से ज्यादा मनखिन के जोड़ने लक्ष्य में शामिल रहो। यह मिशन लाइफ के तहत स्कूल कॉलेज और कार्यस्थल पर ले विशेष अभियान चलाई जा रहा जब मैं नानतीन और युवाओं के सिखाई जा कि कचरा सही प्रबंधन कसिक करी जा, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पुनर्चक्रण सुविधाओं के बढ़ावा दें। यह तरीका यह मिशन न सिर्फ कचरे के कम करने में मदद करनी बल्कि लोगों में एक स्थायी सोच ले पैदा करने लग रही जेल ऊनी वाल पीढ़ी के लिए पर्यावरण सुरक्षित हॉल और मिशन लाइफ का मकसद ले यही चूँकि लोग सिर्फ कचरा न साफ करें बल्कि रोजमर्रा आदतों में ले बदलाव लाओ, जेल कचरा ले कम पैदा हो और हम जो चीज़ नौ इस्तेमाल करनू वो ज़्यादा टिकाऊ हो। किले कि अगर हम अपन नन कदम सही दिशा में उठनो तो हमारे पूर्व पर्यावरण सुरक्षित हो और ऊनी वाल पीढ़ियों के लिए साफ हाउ पान और एक बल मोहन लोल। तो दुगड़ियों यही विषय पर आपको सुनानू राजकीय इंटर कॉलेज सुनौली अलमाड़ा सहायक अध्यापक श्री संतोष कांडपाल जी तक करेगी यह बातचीत और इन भेंट करना लागरी मनीष साहब।

0: गीले कचरे से
1: है हमारा उसमें
0: का।
1: तो गुरुजी हमको आप बताइए कि जो आजकल पर्यावरण है हमारा उसमें बहुत सारी बर्बादी हो रही है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इसको हम लोगों को जागरूक करते हुए कैसे कम कर सकते हैं?
0: देखिए ऐसा जी, इसको हम कैसे करें, जो हमारे घर के आसपास जो कचरा कम करने का सबसे जो असरदार तरीका है वो है 3R
1: जी,
0: यानी हम खरीदारी कम करें, चीजों का दोबारा इस्तेमाल करें और उन्हें रिसाइकिल करें
1: जी।
0: इसके अलावा हम गीले कचरे से घर पर खाद बना सकते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक से हम पूरी तरह से हमको बचनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि जैसे हमारा जो प्लास्टिक है उसको हमको बचना चाहिए, तो इसको बचने के लिए जैसे आप हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो देखने में आता है कि अगर हम बहुत सारे लोग क्या जनरली सभी लोग क्या करते हैं, जैसे बाजार से हमें सब्जी लानी है, कोई सामान लाना है, अपने साथ कोई ऐसा कोई जूट का थैला ना ले जाके, कोई कॉटन का थैला ना ले जाके, क्या करते हैं कि हम अपने

0: को बचना चाहिए। तो
1: जी
0: इसको बचने के लिए जैसे आप हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो देखने में आता है कि अगर बहुत सारे लोग, क्या जनरली सभी लोग क्या करते हैं, जैसे बाजार से हमें सब्जी लानी है, कोई सामान लाना है, अपने साथ कोई ऐसा कोई जूट का थैला ना ले जाके, कोई कॉटन का थैला ना ले जाके, क्या करते हैं कि हम अपने एक आलस जैसा समझ के हम उससे पॉलिथीन में ही खरीद के लाते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए जिससे कि ये पर्यावरण में हमारा कोई असर न डाल सके।
1: हम प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करें हमेशा अपने साथ। हमको क्या करना चाहिए, जब हम बाजार जा रहे हैं तो अपने साथ हम कपड़े का थैला रखें।
0: जी
1: प्लास्टिक की बोतलों की जगह हम तांबे, कांच या स्टील की बोतलों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए।
0: जी
1: प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी लाने के बजाय हमको क्या करना चाहिए, जूट कॉटन के बैगों का हमको अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।
0: और गुरु जी, इसके साथ साथ जैसे हमारा बिजली है, पानी है, तो इसकी भी हमको बहुत सारी बर्बादी देखने को मिलती है, तो
1: जी
0: हम इसको कैसे रोक सकते हैं?
1: जैसे हम क्या करते हैं, हम दिन में भी हम कभी बाहर जाते हैं तो हमारी इस प्रकार की आदत बन चुकी है कि हम लाइट को ऑन करके हम बाहर चले जाते हैं,
0: जी
1: और हमारे पास दो या दो से ज्यादा कमरा है, हम जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे के बजाय के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम सब चार के चार या पांच पांच के कमरों में लाइट खोल के छोड़ देते हैं। लेकिन
0: जी
1: हमको इस चीज से बचना चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: हमको उसी कमरे में लाइट जलानी चाहिए जिस कमरे में हम रह रहे हैं, जिसका हम उपयोग कर सके हैं।
0: और दूसरा, जैसे हमें देखना पड़ता है कि जैसे हमारे ये शादी ब्याहरातों के हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा क्या होता है कि कभी कभी भोजन बन जाता है,
1: जी
0: तो उस जरूरत के हिसाब से खाना जो ज्यादा बनता है, तो उसका सही मात्रा हम कैसे उपयोग कर सकते
1: सही उपयोग करना तो हमारे लिए बहुत मुजरा मुश्किल होगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हमारे शादी ब्याह में कभी खाना बच जाता है तो हमको हमारे आसपास के काफी अनाथ आश्रम ऐसे हैं, वृद्ध आश्रम ऐसे हैं और जरूरतमंद ऐसे हैं, हम वो खाना उन तक पहुंचा पाए,
0: जी
1: उसका सही उपयोग हो पाए, इस प्रकार को हम यूज में कर सकते हैं।
0: जी गुरु, जैसे क्या कहते हैं, हम जहाँ जो हम देखते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में हम किस तरह से वेस्टेज को हम नोटिस कर सकते हैं, या फिर जो हमें आपको लगता है कि जो हमारी फिर छोटी छोटी आदतें हैं, उससे हम कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं समाज में?
1: जी चीजों को जैसे हम वेस्टेज है, हम उन चीजों को हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कांच के जार है या कोई फूल को हमने लेके आए हैं तो हम उनको घर में दोबारा यूज कर सकते हैं, दाल रखने में, मसाला रखने में और सामान रखने में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पुराने कपड़े हैं उनको
0: जी
1: फेंकने के बजाय हम घर में पोछा बना के उनको हम उसका यूज कर सकते हैं।
0: जी
1: और हमें खरीदारी हमें सोच समझ के करना चाहिए, जैसे मॉल या दुकानों में हम सामान खरीदते हैं, खरीदते समय हमें वही सामान लेना चाहिए जो हमें जरूरत है,
0: बिल्कुल
1: और हम कोई भी सामान है उसे थोक या बल्क में बिना पैकेजिंग वाले सामान को हमें ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए, ताकि घर में प्लास्टिक और कागज के पर क्या हो जाए, कम से कम हमारे घर में आए।
0: और गुरु जी, जैसे आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते जो हमारा स्कूली पाठ्यक्रम है या फिर स्कूल के हमारे जो बच्चे हैं, उन पे हम कैसे जागरूकता बढ़ा सकते हैं कि वो बाहर जब स्कूल के बाहर दायरे में निकलते हैं तो उसका वो भी सही उपयोग करें?
1: हम आजकल बच्चों को हम ये चीजें बहुत प्रभावी रूप से हम सिखा रहे हैं कि किसी भी चीज का हम रीयूज कैसे करें, उसे
0: जी
1: क्या जो बेस्ट से बिल्कुल बेकार चीजें हैं उनसे अच्छी चीजें कैसे बना सकते हैं, हम इस चीजें हम उनको सिखाते हैं तो का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। देख रहे हैं हम समाज में आजकल, देख रहे हैं बच्चों को, देख रहे हैं कि वो रास्ते से जाते हुए टॉफी के रेफर हो गए या स्टाफ की रेफर से बहुत अच्छे अच्छे सामग्री बना रहे हो।
0: जी बिल्कुल, आपने जो बताया, तो इसी से मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ, क्या आपने कोई कभी ऐसा प्रोजेक्ट किया जिससे बच्चे खुद वेस्टेज को कम करने के उपाय अपना रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं अपने विद्यालय में देखता हूँ हमारे स्कूल के जब बच्चे हम प्रोजेक्ट उनसे मंगाते हैं तो जो रद्दी की चीजें होती हैं, जो बेकार की चीजें हमारे घर में या हमारे स्कूल में कभी पड़ी रहती हैं, तो वो उनसे इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे बना के लाते हैं कि हमको लगता नहीं है कि ये चीजें हमने बेकार फेंकी है,
0: जी
1: और वो हमारे विद्यालय में आज हम सजावट के तौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसको अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं सजावट के तौर पर उन चीजों का।
0: बिल्कुल, तो बच्चों के लिए जैसे कोई उदाहरण हम लेते हैं जिसमें उनको कोई कहानियां या फिर उसको किसी चीज से हम उसको उनको प्रेरित कर सकते हैं जिससे कि वो इस चीज के लिए आ गए हैं।
1: पहले तो हमको बच्चों को इनके दुष्प्रभाव के बारे में बताना पड़ेगा
0: जी
1: कि जो हम आज समाज में इस प्रकार की गंदगी फैला रहे हैं तो इसका आने वाला भविष्य क्या होगा, कितना भयंकर इसका भविष्य होगा,
0: जी
1: जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रत्येक प्रकार की बातें हम उनको बच्चों को बताएं ताकि उनको पता चले कि आने वाला भविष्य कैसा होगा,
0: जी
1: तभी आगे बच्चे इस चीज को समझ सकते हैं कि हम इन चीजों से कैसे बचें।
0: बिल्कुल, जैसे कि ये इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से छोटे बदलाव हो सकते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और आखिर इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है?
1: देखिए, बदलाव छोटी चीजों से बदलाव होता है, हम अपने घरों से बदलाव करेंगे
0: जी,
1: जो हम चाहते हैं कि हम समाज को सीधे तौर पर बदल दें ये तो बहुत मुश्किल है, हम अपने

0: भरोसे छोटे स्तर से, जब हम कभी मार्केट में चल रहे हैं तो वहां पर रैपर, टॉफी के रैपर या स्टाफी, आप फास्ट फूड कुछ खाते हो तो वहां न फेंके
1: जी,
0: क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, हम लोग वो देख कर ही सीखते हैं
1: जी,
0: हम वहां पर कोई चीज खा रहे हैं, फ्रूटी खा रहे हैं, पी रहे हैं या कोई टॉफी खा रहे हैं, तो उन रैपर को अपने साथ अपने जेब में रखें और ऐसी जगह जाके उनको फेंकें जहां पर डस्टबिन रखा गया है।
1: बिल्कुल,
0: जो हमारे घर के बच्चे हमको देखें और भविष्य में उस चीज को खुद करें।
1: बिल्कुल जी, आपने देखा भी होगा कि जैसे आप भी अपने घर से स्कूल की तरफ बाहर को निकलते होंगे तो आपने कई जगह देखा होगा कि आपको खुले में कूड़ा बिखरा हुआ मिलता है। क्या होता है कि यहाँ पर अगर वो नगर निगम के दायरे में आता है तो कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है कि चलो उठा लिया होता है, कभी कभी वो बहुत दिनों तक कूड़ा वैसे ही पड़ा रहता है। तो उसके लिए क्या सख्त उपाय कर सकते हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले और वो उस कूड़े को खुले में ना फेंक के जो उनके आसपास डस्टबिन रखे हुए हैं उसमें वो डालें।
0: देखिए आप, जैसे वो कोई व्यक्ति, कोई इंसान उसको फेंक रहा है, यदि वो फेंकते हुए पकड़ा गया तो उसमें कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकती है।
1: बिल्कुल, जुर्माना के लिए हम कह सकते हैं,
0: जुर्माना लगा सकते हैं।
1: सही कहा, ताकि उसके उसके वजह से उसके दिमाग में जो रहे कि एक भय जैसा बना रहे और वहां पर सफाई भी रहे,
0: इस प्रकार से उसको दंड दिया जा सकता है समाज में, ताकि उसको देख के और लोग प्रकार का कार्य न करें।
1: जैसे एक सवाल ये कि हम कोई पुराने, जैसे हमारे पुराने डिब्बे होते हैं, बोतल होते हैं और अखबार होते हैं, वो हम क्या करते हैं घरों में कबाड़ी को देते हैं
0: जी,
1: तो क्या फिर वो उन्हें रिज्यूज करते होंगे?
0: ये तो सवाल तो एक काफी है, आप उसको समझ पाना दो कि उसको क्या यूज करते हैं। तो उसको हमको एक अपने स्तर से हम उसको यूज कर सकते हैं, अपने घरों में यूज कर सकते हैं, और घरों में यूज करने का नहीं है तो हम अपने नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से हम उसको ऐसी जगह जमा कर सकते हैं जहाँ पर उसका समाधान हो सके।
1: अच्छा, दूसरा पैकेजिंग का जो कचरा है उसको कम करने के लिए हम क्या बदलाव कर सकते हैं?
0: हमें ऐसे ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, ऐसी चीजें यूज में नहीं आनी चाहिए, जो पैकेजिंग वाली चीजें हैं उनको नहीं यूज करनी चाहिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमको घर में ऐसी चीज बल्क में
1: जी
0: ऐसी चीजें लें जो पैकेजिंग कम से कम हो
1: जी,
0: और अपने बच्चों को भी हमको इस टाइप की शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसी चीजों का यूज नहीं करना है जिससे हमारे प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में जिसका असर पड़े।
1: बिल्कुल, आपने सही बात कही, क्योंकि हमारा जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है इसमें इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं हम उससे उसको बदल सकते हैं, जैसे रिसाइकिल करना, फिर ज्यादा सोच समझ कर खरीदारी करना
0: जी।
1: तो क्या होता है कि ये बहुत लंबे समय तक इसका क्या होगा कि समाज में असर पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दूसरा, जैसा कि आजकल देखने में आता है कि जैसे प्लास्टिक जैसी चीज है, कुछ प्लास्टिक तो क्या होते हैं कि कुछ समय बाद चलो हल्के फुल्के नष्ट हो जाते हैं, कुछ तो बहुत लंबे समय तक वो नष्ट ही नहीं होते
0: जी,
1: जिससे क्या होता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत प्रदूषित है। और आज देखने में भी आता है कि देखो इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है कि इतना मौसम में बदलाव आ रहा है, अचानक से गर्मी बढ़ जाती है, फिर अचानक से कभी बारिश हो जाती है, और फिर जैसे जैसे हमारे आजकल गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि वनों में जो वनाग्नि है बहुत ज्यादा हो रही, उससे भी क्या होता है कि आग लगती है, तो आग लगने के बाद जो कचरा होता है वो बरसात के साथ होने का उसमें सब हमारे जो नदी है, नाले हैं उसमें बहता है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, जैसे कटान वगैरह हो रहा है और जो क्या कहते हैं हमारे जंगल में आग हाग गर्मियों में लगाई जाती
0: है। सलाह तो ये है सरकार को कि पहले इन चीजों में बिल्कुल बैन लगा दिया जाए प्लास्टिक पे
1: जी।
0: हाँ, अब यदि इसमें बैन नहीं लगाया जा रहा है तो सरकार को एक ऐसी योजना लानी चाहिए हर शहर में कि इन प्लास्टिक के चीजों को वहां पर जमा कर दिया जाए और इसका दोबारा इसका इस्तेमाल करने के लिए इस टाइप की कंपनी बनाई जाए कि वहां पर उनको दोबारा यूज करने के लिए इसको फेंका ना जाए, इस प्रकार का सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: और संतोष जी, आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो भी जो ये कचरा है इसको कम करें, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको उसका उपयोग कैसे कम करें?
0: मैं हाँ, खरीदारी करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीजों से बचना है जो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर बुरा असर डाले, हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और हमें हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि किस प्रकार की चीजों का यूज करना है, किन का यूज नहीं करना है, कौन हमारे भविष्य के लिए हमारे खतरा है, इस प्रकार की शिक्षा हमको अपने बच्चों को देनी चाहिए, हमें अपने समाज को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो एक अच्छा जीवन जी पाए, अच्छा उनको पर्यावरण मिल पाए।
1: बिल्कुल गुरु जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपकी बातों को सुनकर जितने भी हमारे श्रोता हैं वो इस बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अमल में लाकर जो हमारा वेस्टेज है, जो

0: हमारा कचरा है उसको कम करेंगे। आपने हमारे साथ बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।
2: श्रोताओं, वेस्टेज रेड्यूज यानी बर्बादी कम करना, ये विषय पर राजकीय इंटर कॉलेज सुनौली अलमड़ा सहायक अध्यापक श्री संतोष कांडपाल जी दग करेंगे ये बातचीत आपको सुनी और इन दग भेंट करना लग रही मनीषा और अखिल आपको सुनानू एक लोकगीत जे गायक कलाकार छीन गिरीश सिंह बरगली।

श्रोता और लाभुल सुनो, गिरी सिंह बरगिली का ये लोकगीत और यही लोकगीत दगे आज एक उत्तरायण कार्यक्रम इतिके संपन्न हूँ। और अब माठोमाठ भगत होने लाग रो उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार न बहु फिर भेंट करन। तब तक लीजिए आप होते बड़ी मनी सागर दियो आ गया। नमस्कार।

0: तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और
1: नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले में आज भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नो व्हीकल डे मनाया गया। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए दिया गया संदेश। देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बेसहारा महिलाओं, बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने निशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू की और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संबंधित जिलाधिकारियों को तीर्थ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन आज भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने BLO मिंटू देवी से मतदाता सूची पुनरीक्षण, मैपिंग और स्मार्टफोन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री कुमार ने सीमांत क्षेत्र में BLO मिंटू देवी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्रों में इस प्रकार की सक्रियता और समर्पण चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है।
2: इस मतदान केंद्र पर आने के बाद हमने यहाँ की BLO मिंटू देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई, जो स्मार्टफोन पर जो BLO ऐप का इस्तेमाल करते हुए SIR का काम कर रही हैं और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फर्नर्स, इन पांच लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रही है। ऐसे BLOs को चुनाव आयोग सलूट करता है और ये भी आशा करता है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश के सारे BLOs भी इतनी ही सक्षमता के साथ कार्य करेंगे।
1: निरीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ SIR कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नो व्हीकल डे मनाया गया। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान में भागीदारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार पैदल अपने कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। जिलाधिकारी ने कहा कि सप्ताह में एक दिन निजी वाहनों का सीमित उपयोग करने से ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। पिथौरागढ़ में भी जिलाधिकारी आशीष भटगाई अपने कैंप कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे। अपर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पैदल चलकर अभियान का समर्थन किया। वहीं बागेश्वर में भी नो व्हीकल डे सफलतापूर्वक मनाया गया। नगर क्षेत्र में निजी वाहनों और टैक्सियों की आवाजाही सीमित रही और लोग पैदल चलते नजर आए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
1: देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्ध जनों तथा बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने निशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र और केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन के लिए अलग अलग ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांग और वृद्ध जनों को आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अब निशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू होने से दिव्यांग और वृद्ध जनों को अस्पतालों और अन्य संस्थानों तक आने जाने में सुविधा मिलेगी। केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह और शिशु सदन में रह रही महिलाओं और बच्चों को भी इस सेवा का लाभ मिलेगा। प्रशासन के अनुसार इससे जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र की बेटियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कनाली छीना की 25 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के तहत छात्राओं को विभिन्न शासकीय कार्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया और महिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद का अवसर भी मिला। इस दौरान छात्राओं ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझा और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने छात्राओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत को सफलता की कुंजी बताते हुए बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।
4: मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का 5वां संस्करण आज यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कनाली छीना की जो हमारी बालिका है उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन बालिकाओं के साथ हुआ। उन्होंने हम लोगों के साथ अपने एस्पिरेशंस को शेयर किया और महिला अधिकारियों के द्वारा उनको उसके संबंध में गाइड भी किया गया। इसके साथ ही साथ आज जो हमारे उत्तराखंड मैरिट में स्थान प्राप्त हमारे जो स्टूडेंट्स थे पूरे जनपद के, उनको भी यहां पर आमंत्रित किया गया था, तो उनके साथ भी हेल्दी डिस्कशन हुआ।
5: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज देहरादून के आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
3: मुख्य सचिव ने कहा कि चारों धामों में श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन, बीकेटीसी और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था भी संचालित की जा सकती है। श्री वर्धन ने यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर होल्डिंग एरिया सक्रिय करने और वहां सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए सभी जिलों में पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए। भारी बारिश और भूस्खलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकासी योजना तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही यूकाडो को भी आपातकालीन तैयार रहने को कहा गया। मुख्य सचिव ने जिलों में राशन और अन्य जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडारण रखने के भी निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
1: सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा का आज विधि विधान के साथ शुभारंभ हो गया। सबद कीर्तन और अरदास के बाद दोपहर 12:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के अवसर पर लगभग 7,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे। इससे पहले कल पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का जत्था गोविंद घाट से निशान साहिब के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। गोविंद घाट गुरुद्वारे में गुरुवाणी पाठ के बाद जत्था घंगरिया पहुंचा, जहां रात्रि प्रवास किया गया। इसके बाद आज सुबह श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे। सुबह 9 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में सचखंड से दरबार साहिब में सुशोभित किया गया। इसके बाद सुखमणि पाठ और सबद कीर्तन हुआ। दोपहर 12:30 बजे कपाट खोले गए और पहली अरदास के साथ इस वर्ष की यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित एन कार्ड समिति की बैठक में जिले में नशे की रोकथाम, तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियानों की समीक्षा की गई। बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही प्रवर्तन कार्रवाई, नशा मुक्ति केंद्रों की व्यवस्थाओं और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रखकर सामाजिक अभियान के रूप में चलाया जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और बाजार क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर नियमित निगरानी रखने को कहा। बैठक में NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों और कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नशे से जुड़े मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए।

और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मेडिकल स्टोरों की निगरानी और बिना चिकित्सकीय परामर्श के प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने पर भी जोर दिया गया। विशेष कार्यबल एसटीएफ ने नकली दवाइयों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फेक पिल के तहत कोटद्वार में बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के तहत सिडकुल सिगड्डी क्षेत्र में संचालित एक अवैध फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। एसटीएफ के अनुसार मेसर्स नेक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स नामक प्रतिष्ठान में छापेमारी के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री का औषधि निर्माण लाइसेंस वर्ष 2024 में निरस्त किया जा चुका था। इसके बावजूद वहां दवा निर्माण से संबंधित मशीनें संचालित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान करीब 3 किलोग्राम कंप्रेस्ड टैबलेट और टैबलेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 34 पंच उपकरण बरामद किए गए। प्रथम दृष्टया मामला औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उल्लंघन से जुड़ा हुआ पाया गया है, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसटीएफ ने बताया कि इस फैक्ट्री पर पहले भी नकली दवाइयां बनाने के आरोप लग चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले में आज भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नो व्हीकल डे मनाया गया। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए दिया गया संदेश। देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बेसहारा महिलाओं बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने निशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू की। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संबंधित जिलाधिकारियों को तीर्थ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कुमार केशव और साथियों के गाए इसी भक्ति वंदन के साथ भक्ति संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार आकाशवाणी देहरादून बिटिन गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी संजना वस्ती। पहली मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से लग्या हरसिल और आसपास का मतदान केंद्रों को निरीक्षण करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का काउंटडाउन रन तय हरी झंडी दिखाई। आयोजन को शुभांकर क्यालू हिम तेंदुआ को भी अनावरण करी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चारधाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करी। संबंधित जिलाधिकारियों तय तीर्थ यात्रा तय सुचारू और सुरक्षित संचालन का वास्ता निर्देश देने और सिखों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा आज विधि विधान का साथ शुभारंभ वे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिला में द्वि दिवसीय दौरा का दौरान आज भारत चीन सीमा से लग्या हरसिल और आसपास का मतदान केंद्रों को निरीक्षण करी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हरसिल में स्थापित पोलिंग बूथ को निरीक्षण करी और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यों की जानकारी ली। ये दौरान उन BLO मिंटू देवी से मतदाता सूची पुनरीक्षण मैपिंग और स्मार्टफोन का माध्यम से होना कामों का बारे में जानकारी प्राप्त करी। ज्ञानेश कुमार ने सीमांत क्षेत्र में BLO मिंटू देवी द्वारा कर्या कामों की सराहना करी और बॉयल की सीमांत क्षेत्रों में यन प्रकार की सक्रियता और समर्पण चुनाव प्रक्रिया तय और मजबूत बना दू।
1: इस मतदान केंद्र पर आने के बाद हमने यहाँ की BLO मिंटू देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई, जो स्मार्टफोन पर जो BLO ऐप का इस्तेमाल करते हुए SIR का काम कर रही हैं और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फर्नेस, इन पांच लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रही हैं। ऐसे BLOs को चुनाव आयोग सल्यूट करता है और ये भी आशा करता है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश के सारे BLOs भी इतनी ही सक्षमता के साथ कार्य करेंगे।
0: निरीक्षण का बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम पहुंची, जख उन पूजा अर्चना करी और अधिकारियों का साथ SIR कार्यों की समीक्षा बैठक भी करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 को काउंटडाउन रन तय हरी झंडी दिखाई। ये दौरान उन मशाल प्रज्वलित करी और प्रतिभागियों का साथ प्रतीकात्मक दौड़ में भी हिस्सा लेनी। मुख्यमंत्री ने आगामी 31 मई को आयोजित होने वाली नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभांकर क्यालू हिम तेंदुआ को भी अनावरण करी। ये आयोजन का वास्ता देश का 27 राज्यों और 2 अन्य देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण करी छ। मुख्यमंत्री बोल के नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नयो अवसर और नयो विश्वास तय बढ़ावा देने को भी अभियान छ। उन बोल के यू आयोजन केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं बल्कि इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास तय मजबूत करने को माध्यम भी छ।
2: नीति घाटी जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण स्थान पर दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए इसके लिए एक अपने अंदर आत्मविश्वास चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस चाहिए। मुझे गर्व है कि आज मेरे सामने आप सभी जुझारू और दृढ़ संकल्पित युवा खड़े हैं। साहस से पर्यटन और सामंत के आप सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मात्र उत्तराखंड नहीं है, आज का नया उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड का हर क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बन रहा है और नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन नए उत्तराखंड की शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक पर्व है।
0: श्री धामिन बॉयल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांव तय देश का पहली गांव बनाने को विजन तय यू आयोजन अग्नय बनाने छु। उन विश्वास जताई कि यहाँ से सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार, होम स्टे, स्थानीय उत्पाद और युवा उद्यमिता तय नई गति मिलली।
2: आज जिस तेजी से चाहे माड़ा गांव हो, चाहे हमारा गुंजी का क्षेत्र हो, नाभी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा नीति हो, माड़ा हो, ऐसे अनेक बैलियां जो हमारे अंतिम गांव के रूप में जिनको हम लोग पहले जानते थे, अब वो पहले गांव के रूप में भारत के पहले क्षेत्र के रूप में उनका विकास तेजी से किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उस आयोजन के द्वारा उस क्षेत्र में स्थानीय उत्पाद हमारे और ज्यादा उनको प्रसिद्धि मिलेगी, युवा उद्यमिता को भी नई गति मिलेगी।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छ।
4: मुख्य सचिवन बोली कि चारों धाम
0: में आज देहरादून का आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे थे, चार धाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करी। ये दौरान उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों ते यात्रा ते सुचारू और सुरक्षित बनाने का वास्ता आवश्यक दिशा निर्देश देने।
4: मुख्य सचिवन बोली कि चारों धाम में आने वाला श्रद्धालुओं थे आसानी से दर्शन होने और उन्हें कै भी प्रकार की परेशानी न हो, ये खुनी जिला प्रशासन बीकेटीसी और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय का दगड़ सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करौन। उन बोली के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार रात में भी दर्शन की व्यवस्था संचालित की जा सकती। श्री वर्धन ने यात्रा मार्ग का विभिन्न पड़ावों पर होल्डिंग एरिया सक्रियकरण और वह सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करौन का निर्देश दिने। मुख्य सचिवन बोली कि आने वाला मानसून सीजन तय देख दी सभी जिलों में पहले से ही तैयारी करे जौन, भारी बरखा और भूस्खलन की स्थिति तय ध्यान में रख दी निकासी योजना तैयार करण का भी निर्देश दिए गए। दगड़ ही युकाडा को भी आपातकालीन परिस्थितियों में एयरलिफ्ट की व्यवस्था खुनी तैयार रहन को बोले गए। मुख्य सचिव ने जिलों में राशन और अन्य जरूरी सामग्री को पर्याप्त भंडारण रखने का भी निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून खुनी समाचार कक्ष बटिन रविन्द्र सिंह।
0: सिखों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा को आज विधि विधान का साथ शुभारंभ। सबद कीर्तन और अरदास का बाद दिन का 12:30 बजे हेमकुंड साहिब का कपाट श्रद्धालुओं का वास्ता खोल दिने। कपाट खुलने का अवसर पर लगभग 7,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे थे। ये से पहले 42 पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं को जत्था गोविंद घाट से निशान साहिब का साथ हेमकुंड साहिब का वास्ता रवाना हुए। गोविंद घाट गुरुद्वारे मां गुरुवाणी पाठ का बाद जत्था घांगरिया पहुंची, जख रात्रि प्रवास करी, जैका बाद आज सुबह श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंची। सुबह 9 बजे गुरु ग्रंथ साहिब ते पंच प्यारों की अगुवाई मां सचखंड सी दरबार साहिब मां सुशोभित करियात। ये का बाद सुखमणि पाठ और शब्द कीर्तन हुए और दिन का 12:30 बजे कपाट खोली गई और पहली अरदास का साथ है ये साल की यात्रा को विधिवत शुभारंभ हुए। पौड़ी गढ़वाल का सेंजी गांव में पिछला साल 6 अगस्त को आई आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास पूर्व हुएगी। भारी बरखा और भूस्खलन का कारण गांव में कई मकान क्षतिग्रस्त हुएगी थे और 16 परिवार बेघर हुएगी। ये मां 7 परिवार यंत है जो का घर पूरी तरह नष्ट हुए। मुख्यमंत्री का निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्यों तय प्राथमिकता देनी और सभी 16 प्रभावित परिवारों तय मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपयों की सहायता राशि देनी। वखी जो 7 परिवारों की भूमि पूरी तरह क्षतिग्रस्त वेगित है ऊते मकान निर्माण का वास्ता SDRF विस्थापन मद से अतिरिक्त 4,25,000 रुपयों की सहायता प्रदान करी। अभियों परिवारों का नया मकान तैयार हुएगी छ। सेंजी की ग्राम प्रधान रेखा देवी ने बताई कि सरकार का सहयोग से सभी प्रभावित परिवार अब सामान्य जीवन जीना छ।
5: सर 6 अगस्त को यहाँ पे बीते समय में जो आपदा आई थी उससे हमारे गांव में बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारे मकानों में दरारें भी आई और जो 16 परिवार थे उनके तो घर क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इसमें भी सरकार ने उन्हें 2 हिस्सों में बांटा, एक तो ये थे कि जिनको विस्थापन होना था और एक वो कि जिनका अपने ही जगह में उन्होंने उस मकान को रिपेयर कर दिया। तो जो विस्थापन वाले थे तो उनको कुछ और फंड सरकार से मिला। उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी राहत दी है। उन परिवारों ने अपना जो मकान है

0: अच्छे तरह से बना दिया है और उसमें वो व्यवस्थित रूप से वहाँ पे रहने लगे हैं।
1: हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अपर रोड पर चलना सीवरेज निर्माण कार्यों को निरीक्षण करी। उन अधिकारियों और कार्यदायी संस्था ते निर्देश दिनी कि चारधाम यात्रा और आगामी कावड़ मेला ते देखी के श्रद्धालुओं की सुविधा ते प्राथमिकता दी जाली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट बोली कि अपर रोड पर चलना सभी सीवरेज कार्य 15 जून ते हर हाल में पूरा किए जाला और कै भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाली। निरीक्षण का दौरान जिलाधिकारी ने सड़क पर पड़िया मलबा और निर्माण सामग्री ते तुरंत हटाने का निर्देश दिनी। उन बॉयल के निर्माण कार्यों का कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई छेंदी और श्रद्धालुओं का सुगम आवागमन का वास्ता सभी जरूरी व्यवस्था समय पर पूरी किए जाली। आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से लगिया हरसिल और आसपास का मतदान केंद्रों को निरीक्षण करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का काउंटडाउन रन ते हरी झंडी दिखाई। आयोजन को शुभंकर क्यालू हिमतेंदुआ को भी अनावरण करी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने चारधाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करी। संबंधित जिलाधिकारियों तय तीर्थ यात्रा तय सुचारू और सुरक्षित संचालन का निर्देश दिनी और सिखों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा आज विधि विधान का साथ है शुभारंभ वे। ये का साथ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने सदैव श्रोताओं के मैं कृष्ण सिंह लटवालक नमस्कार। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक छिन्न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा किसानों कल्याण के जी बखत बखत पर विभिन्न प्रकारक योजनाएं चलाए जाने लग रहे। ये योजनाओं में एक हमारे भारत में संपूर्ण भारत में बागवानी कसिक विकसित हो और बागवानी क्षेत्र में कसिक आगे बढ़ी जो एक जी राष्ट्रीय बागवानी मिशन आयोजित करे जा रहा। ये योजना बहुत पहली बटीक हमारे भारत में चलाए जाने लग रहे और खास तौर पर अगर हम अपन उत्तराखंड में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करूं तो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष रूप में चलाई जाने वाली जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जैक तहत सेब अखरोट मशाल और जो ऑफ सीजन जिनका हम कह सकूं बेमौसमी सब्जियों के खेत के बढ़ावा देने के लिए 50 मिली भेर 75% तक सब्सिडी प्रदान करी जाए। सतो यो मिशन का उद्देश्य छ कि हमारे जो किसान छन उनके खेत करण में सावधानी उनके सहूलियत दी जो एक लीजिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो एक शुरुआत छ जगह हम NHM कुनु 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अंतर्गत है। भारतक बागवानी के सर्वांगीण विकास पर यह एक केंद्र सरकारक पहल छो, यह एक अर्थ छो कि हमारे जो फल छन सब्जी छन फूल छन और ये फसलों के नकदी फसलों के हम उत्पादन दगर दगड़े ये फसलों भंडारण प्रसंस्करण और विपणन में सुधार लूनक हमन के काम करन छे। यह उद्देश्य किसानों के बेहतर गुणवत्ता वाल उपज उगाण और कटाई के बाद होने वाली बर्बादी के कम करने के लिए फसल बेचने पर उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करन छे।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में शुरू करी गई एक केंद्र सरकार की योजना छे और यह एक मुख्य उद्देश्य फलों सब्जियों मसाले और फूल औषधि पौधों और जो बागान फसल छन जमा की बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के बढ़ावा दिन छ। ये मिशन के अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग फसल कटाई के बाद बेहतर प्रबंधन और कुशल विपणन प्रणालियों के निर्माण के लिए हमारे किसानों के प्रोत्साहित करी जा। यह के तक यह मिशन किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण नर्सरी विकास और शीत भंडारण सुविधाओं पैकेजिंग इकाइयों और प्रसंस्करण केंद्रों जैसे अवसंरचना उपनिर्माण में सहयोग प्रदान करो। उन्नत पौध सामग्री का उपयोग कर भी क्लस्टर आधारित विकास के बढ़ावा दिवे ये मिशन स्थानीय खपत के बढ़ावा दिन और निर्यात बढ़ाने के लिए काम करने लग रहा। स्वतः हम देखने की राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ एक एप्पल मिशन योजना ले हमारे उत्तराखंड में जो बहुत आयत प्रचलित छो जैक माध्यम कई किसान अपन खेतों में जो अपन परंपरागत कृषि दगड़ दगड़े राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो एप्पल मिशन हमारे यहाँ उत्तराखंड में चलाई गया ये योजना का लाभ लिभेर हमें उत्तराखंड के सेब उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे किसानुल या किसानुल दिवे। तो कहीं ना कहीं सरकारक ये प्रयास कि हमारे जो किसान भाई बहने चुनो कसी का अपन खेतों के बढ़ावा दो कसी का अपन बागवानी फसलों के बढ़ावा दो एक निजी सरकारक स्तर पर की मदद है सकी वो ये मैं करी जान लग रहे। सो तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों के भल पौध नर्सरी पौध और एक दगड़ दगड़े गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे हम कह सकनों कि लेकिन अगर हम कोई बाग स्थापित करनू तो बाग के लिए रेखांकन कैसे करी जो नई बाग लगोन बखत में कैसे स्थान चयन करी जो और बहुत सारे जो विकल्प होने बाग स्थापित करने के लिए वह के मूलभूत मुद्दों पर बात कैसे हमारे किसान समझो वह के लिए उन्होंने जो शिक्षा है जो सरकारी स्तर पर दी जाए और एक दगड़ दगड़े 50-75% तक अनुदान बाग स्थापित करने के लिए दी जानी जमें कि बाग चारों ओर वे बाउंड्री करन छो या फिर वह एक देखभाल करने के लिए कसी को का समतलीकरण करी जो यह कर लीजिए और मनरेगा के माध्यम में डबल जो छो दे जाने लग रो। तो हम अपन श्रोता बंधु है तो यही बोल के किसान भाई बहनी जो हमारे छन वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन तक जुड़ भेर हमारे जो बंजर होते हुए खेत छन उनके बागवानी दिशा में आगे बढ़ सकने के लिए कि हमारे यहाँ जो बागवानी छ वो प्रचुर मात्रा में है सके अखरोट अनार नाशपति और ले बहुत सारे जो आड़ू सेब पुलम ये जो प्रजाति पहुँचन और एक दगर दगड़े जब हम बात कर लूँ जो हमारे नींबू छ माल्टा छ उनर बात लगकर हम करूँ तो यहाँ एक बाग जो है स्थापित भल तरीके करी जा सकनी और हम मर जो किसान भाई बहनी छे वो भल फैद उठा सकने। तो कार्यक्रम में अखिल आपू के सुननू यह लोकगीत प्रहलाद सिंह मेहराग स्वर में

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
7: मिलेगा।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रताप ए दिवेकर जी। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कुरमुला कीट का एकीकृत प्रबंधन विषय पर। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि कुरमुला कीट क्या है और जो किसानों के लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों बनता जा रहा है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए ये कुरमुला कीट जो है ये एक बहुभक्षी कीट होता है, यानी कि उसके एक से ज़्यादा फसलों पर वो अटैक करता है या भोजन करता है, तो ये बहुभक्षी प्रकार में आता है। कुछ कीड़े कीट होते हैं कि जो केवल एक ही तरह के पौधों पर खाते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा गंभीर समस्या इसलिए कि बहुभक्षी बहुत से ज़्यादा फसलों पर खाता है। इस क्षेत्र में मतलब माने कि उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों में बोई जाने लगभग सभी फसलों पर इसका प्रकोप होता है। विशेषतः पराऊ भूमि में बोई जाने वाली खरीफ फसलों के लिए फसलों में लगभग इस कीट से 90% तक हानि पहुँचती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर रेतीली एवं कार्बनिक पदार्थों से युक्त रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है जो कि कुरमुले के प्रकोप के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसीलिए फलस्वरूप इसमें कुरमुले की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में कुरमुला कीट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि लोहार कीट, गुबरिया कीड़ा, सफ़ेद गिडार एवं उकसा एवं गुबरेला इत्यादि। इस कीट की उत्तराखंड में लगभग 78 प्रजातियों की पहचान की गई संस्थान द्वारा, इनमें एनोमला डेमिडेटा, होलोट्राइकिया लॉन्गिपेनिस एवं होलोट्राइकिया सेटिकुलिस आदि प्रमुख हैं।
0: जी डॉक्टर, कुरमुला कीट का जीवन चक्र क्या है और इसका नियंत्रण कब सबसे प्रभावी होता है?
1: जी देखिए, अगर कुरमुला कीट की अगर हम जीवन चक्र की बात करें तो इसमें मुख्यतः चार अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे हम इंसानों की बात करें तो इंसानी प्रजाति में होता है कि बाल्यावस्था, शेषावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ये अवस्था होती है। जैसे इस कीट के में भी जैसे एक अंडा मतलब जिसको एक कहते हैं वो अवस्था हो गई पहली, फिर बाद में गर्भ जिसको गिडार भी कहते हैं ये दूसरी अवस्था हो गई, तीसरी जिसकी प्यूपा कहते हैं मतलब एक सुप्त अवस्था होती है, और चौथी आती है वयस्क यानी अडल्ट। ये चार अवस्था होती है। इन चारों अवस्था में से दो अवस्था जो है जो कि गिडार कहते हैं और एक वयस्क अवस्था, ये हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी जो दो अवस्था है अंडा मतलब एक और प्यूपा, ये दोनों सुप्त अवस्थाएं, इनमें ये फसलों के लिए कोई नुकसान नहीं करती है।
0: जी डॉक्टर,
1: अगर हम देखेंगे कि कुमाऊं में एनोमला डेमिडेटा ये मुख्यतः मुख्य रूप से पाया जाता है, और गढ़वाल क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इसमें होलोट्राइकिया लॉन्गिपेनिस का प्रकोप ज़्यादा होता है। इन सब प्रजातियों के जीवन चक्र में अंतर पाया जाता है। कुछ जो प्रजातियाँ उनका जीवन चक्र ज़्यादातर प्रजातियों का जीवन चक्र एक वर्ष होता है, और कुछ प्रजातियों का जीवन काल जो या जीवन चक्र है वो दो वर्ष या उससे अधिक भी होता है।
0: जी डॉक्टर, डॉक्टर आपने भी बात कही कि कुमाऊं क्षेत्र में भी काफ़ी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में पाए जाने वाला कुरमुला के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: देखिए कुमाऊं क्षेत्र में मुख्यतः मुख्य रूप से एनोमला डेमिडेटा ये जो कुरमुले की प्रजाति है ये मुख्यतः पाई जाती है, और इसका पहचान हम किसान भाई या कोई कैसे कर सकता है? तो इसके लिए देखिए इसके जो वयस्क यानी जो अडल्ट होते हैं वो चमकीले हरे रंग के होते हैं, एवं उसके गिडार यानी जो ग्रब्स कहते हैं तो वो हल्के पीले सफ़ेद या क्रीमी रंग के होते हैं। तो इन रंग से भी आप चाहे वो अडल्ट हो गए या गिदार हो गए दोनों की पहचान कर सकते हैं। इस प्रजाति के नर व मादा मानसून की पहली बारिश के पश्चात मई जून से सितंबर अक्टूबर तक भूमि की सतह से बाहर निकलकर अपने रुचि के पोषक पेड़ पौधों पर बैठकर उनकी पत्तियां खाते हैं। वयस्क गुबरेले झुंड में पत्तियों को खाकर सुबह होते ही पास की भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। मैथुन क्रिया होने के 6 दिन बाद मादा 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर चौलाई के समान 20 से 50 तक सफ़ेद अंडे देती है, जिससे 13 से 15 दिन बाद प्रथम अवस्था की गिडार प्रकट होती है। इस प्रथम अवस्था की गिडार होती है अत्यंत कोमल, काफ़ी छोटी होती है और एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाती है।
0: जी
1: यह अवस्था लगभग 11 से 12 दिनों की होती है। प्रथम अवस्था की गिडार बड़ी होकर द्वितीय अवस्था की गिडार कहलाती है। इस अवस्था से कुरमुले की गिडार लगभग 38 दिन के बाद तृतीय अवस्था में परिवर्तित होकर मिट्टी के अंदर 242 दिनों तक रहती हैं।
0: जी
1: जुलाई से अक्टूबर तक द्वितीय एवं तृतीय अवस्थाओं की गिडारें फसलों के जड़ को हानि पहुंचाती है। अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में जबकि हम जान रहे हैं अक्टूबर के बाद थोड़ा सा तापमान में गिरावट होती है, तो अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में तापमान की गिरावट के साथ साथ ये भूमि में गहराई की ओर बढ़ती है। ये मिट्टी में लगभग 100 सेंटीमीटर तक नीचे चली जाती है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर तक नीचे चली जाती है।
0: जी जी।
1: और मिट्टी का खोल बनाती है जो उस स्थान के तापमान नमी पर निर्भर करता है।
0: जी।
1: और जब मार्च अप्रैल में तापमान बढ़ता है तब इस सुसुप्तावस्था को तोड़कर गिडार सक्रिय होती है और ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। तापमान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सदा कार्यक्रम में अगले आप सुनू कुरमला कीट प्रबंधन विषय पर डॉक्टर प्रताप ए दिवेकर दगे प्रमोद कुमार पांडे यो भेंटवार्ता।

0: बढ़ने के साथ साथ ये सक्रिय हो जाते हैं एवं कभी कभार रबी की जो फसलें होती है जो मार्च अप्रैल में भी हमारे रहती हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचाती हैं। वयस्क बनने से पूर्व ये 16-17 दिनों तक निष्क्रिय कोषावस्था में रहती है एवं पूर्ण परिपक्व होने पर जून में उचित तापमान एवं आर्द्रता मिलने पर गुबरेले जो एडल्ट होते हैं वो बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से इस कीट मतलब एनोमला डिमिडेटा इस प्रजाति की एक पीढ़ी पूर्ण होती है जो कि लगभग 325 दिन ले लेती है।
1: जी डॉक्टर साहब, कुरमला कीट किन किन फसलों और पौधों को ज़्यादा क्षति पहुँचाता है?
0: जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कि मानसून की पहली बरसात के साथ ही यानी कि मई जून के जो महीने होते हैं इनमें वयस्क जो एडल्ट होता है जमीन से बाहर निकलकर विभिन्न पोषक पत्तियों को काटकर खाते हैं। फल वृक्षों में अगर वृक्षों की हम बात करें मुख्यतः सेब, खुमानी, अखरोट, नाशपाती एवं आड़ू की पत्तियों को ये हानि पहुंचाते हैं तथा पत्तियों के अतिरिक्त कच्चे अथवा अधपके फलों को भी गुबरेले चट कर जाते हैं। अगर हम वन वृक्षों की बात करें तो इनमें बाज, तून, उतीस, खड़क, भीमल, क्वेराल इत्यादि को एवं फूलों में की बात करें तो जीनिया, डहेलिया, गुलाब एवं गुड़हल इत्यादि पौधों की पत्तियों

0: या पोर्शन होता है
1: उसको
0: नुकसान पहुँचाते हैं। हाँ, ये मुख्यतः अगर बात करें हम तो धान, मडुआ, मदिरा, चौलाई, मूंग, उड़द, मिर्च, टमाटर, भिंडी, बैंगन, गोभी और गेहूँ, कद्दू और फसलों को भी मात्रा में हानि पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त चारा गाह की घास एवं अन्य पेड़ पौधों को भी ये क्षति पहुँचाते हैं।
1: जी डॉक्टर, ऐसा कोरोना कीट नियंत्रण हेतु समेकित नियंत्रण रणनीति क्या होनी चाहिए?
0: जी, कुरमुला कीट को आप कोई भी एक ही नियंत्रण नीति से नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए एक समेकित नियंत्रण रणनीति जो है जो संस्थान के द्वारा बनाई गई है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ।
1: जी,
0: पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु की विभिन्नता एवं कुरमुले की विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति से इस कीट का नियंत्रण एक जटिल क्रिया है। इसके अतिरिक्त वयस्क गुबरेले भोजन की तलाश में काफी दूर तक उड़ जाते हैं एवं गिडारे भी आसानी से एक से दूसरे खेत में चली जाती है। कुरमुला नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशक पर निर्भर रहना उचित नहीं है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसीलिए हम एक इसके लिए समय की जो रणनीति है उसको देखते हैं। तो उसमें मुख्यतः हम पहले देखेंगे कि ये मार्च अप्रैल में प्रति जमीन की गहराई जुताई करनी चाहिए। हमने देखा था कि जो कुरमुला कीट है उसकी सुसुप्ता अवस्था जो तीसरी गिडार होती है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक चली जाती है, इसलिए हमें मार्च अप्रैल के महीने में जमीन की गहरी जुताई करनी चाहिए जिसमें पल रहे कुरमुला कीट की विभिन्न अवस्थाएं सूर्य के प्रकाश से प्रभावित हो सके एवं परभक्षकों द्वारा उनका भक्षण हो सके। फिर दूसरी रणनीति आती है सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करें। कच्ची गोबर खाद का प्रयोग करने से कुरमुला कीट का प्रकोप बढ़ता है। हमने जीवन चक्र जानते वक्त ये देखा था कि कुरमुला की प्रथम या द्वितीय अवस्था जो अधकच्ची गोबर खाद है इनमें ज्यादा सक्रिय होती है, कार्बनिक पदार्थ चाहिए होते हैं, तो अगर हमने कच्ची खाद का इस्तेमाल किया तो कुरमुला का प्रकोप बढ़ता है, लेकिन हम अच्छी खाद या अच्छी सड़ी गली खाद इस्तेमाल करेंगे तो उस कुरमुले का प्रकोप बढ़ेगा। फिर अगर हम तीसरी रणनीति की बात करें कि रात्रि के समय गुबरेले अपनी रुचि के पोषक वृक्षों पर एकत्रित होते हैं, तो इनमें से हम देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर बतेन हो गया, और अगर हम थोड़ा मैदानी प्रदेशों की बात करेंगे तो वहाँ नीम हो गया, एकेशिया हो गया, इन पौधों पर ये रात में ज़्यादातर आकर्षित होते हैं, और अतः मैं 8 से लेकर 10 बजे तक इन पेड़ों की टहनियों को हम डंडे से हिलाकर गुबरेले को एकत्रित करके पानी में डाल देना चाहिए। यह कार्य हम एकजुट होकर करेंगे तब गुबरेले के विनाश में हम सबको एक अच्छी सी सफलता मिलेगी।
1: जी,
0: अगर हम चौथी रणनीति की बात करेंगे तो इसमें वयस्क गुबरेले के नियंत्रण के लिए हमारे संस्थान द्वारा यानी विकास अल्मोड़ा संस्थान द्वारा विकसित किया गया वीएल कुरमुला ट्रैप जो प्रकाश प्रपंच बनाया गया है, इसके द्वारा वयस्कों को आकर्षित करके प्रचुर मात्रा में मार सकते हैं। ये प्रकाश प्रपंच बहुत ही कम लागत के हैं एवं इसे आसानी से पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। इस कुरमुला वीएल कुरमुला ट्रैप की कीमत लगभग 1,090 रुपये है जो कि हमने 6 फर्म्स को लाइसेंसिंग दिया गया, उनसे कोई भी किसान भाई ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहां बिजली उपलब्ध नहीं है वहां इस ट्रैप को सोलर बैटरी से जोड़कर वयस्क कुरमुले को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर जुलाई अगस्त की बात कर माह की बात करेंगे तो इनमें खेतों में निराई गुड़ाई करते समय कुरमुले को हाथ से भी इकट्ठा कर नष्ट किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर, तो साहब आपने कुरमुला कीट का एकीकृत प्रबंधन विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, अब चलते चलते आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से?
0: देखिए, कुरमुला कीट के बारे में हमने इतने विस्तार से जाना। इस कीट की दो मुख्य अवस्थाएं हैं, जो एक तो हो गई गिडार और दूसरी हो गई वयस्क। ये दोनों अवस्था जो होता है ये फसलों के लिए नुकसानदायक होती है, तो उनके कीट के लिए जो हमारे संस्थान द्वारा दो टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है तकनीकी, जो कि एक तो वीएल कुरमुला ट्रैप और दूसरा है बायो फॉर्मुलेशन जो है बैसिलस सीरियस। ये भी जो वीएल कुरमुला ट्रैप है वो कुरमुले की वयस्क को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए बहुत ही अच्छे कारीगर है, और दूसरी जो है बैसिलस सीरियस, ये जो बायो फॉर्मुलेशन जो ये गिडार को मतलब जो जमीन के अंदर रहकर नुकसान करता है कुरमुला उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी तकनीकों का आप इस्तेमाल करके कुरमुले को नियंत्रित कर सकते हैं, और ये दोनों जितने भी प्रयास मैंने आपको समेत के नियंत्रण में बताए इन सबको सभी किसान भाई आप सामूहिक रूप से फॉलो करेंगे मतलब इनका आप इस्तेमाल करेंगे तब ये कुरमुले को आप अच्छी तरह से मतलब इस विनाशकारी कीट को अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, अब हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सदा मूल्य अब सुनो कुरमुला कीट प्रबंधन विषय पर डॉक्टर प्रताप ए दिवेकर दगे यो भेंटवार्ता इनर दगे भेंट करने लग रहा छी प्रमोद कुमार पांडे। स्वताओं आपू के हम हर रोज अपन कार्यक्रम में आज कृषि सलाह बतौनू, तो आज एक कृषि सलाह में हम अपने श्रोताओं के बतौन चाहूँ कि अगर हमारे श्रोता भाई बहनी के अनुकूल शिमला मिर्च बैगन या जो नर्सरी पौच वो लगे हैली और नर्सरी पौच के अब उन्होंने स्थानांतरित कर भी अपन खेतन में लगे है लोन तो इसमें गर्मी के बखत में अगर उन्होंने बहुत पानी उन्होंने प्रचुरित मात्रा में दी जो तो यो ऐल फल देना उनर बखत है गो तो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में कृषक भाई बहने छिन अगर वो वैज्ञानिक तौर पर शिमला मिर्च में शुरुआती तीन फूलन के हटाला तो उनके एक ज्यादा उपज जो छ वो मिल सकी किले की जो शुरुआती तीन पौधनी वो थोड़ा अवरोधक इस्तेमाल हम कह सकूँ कि अवरोधक रूप में है सकनी तो इसमें जो शुरुआती तीन फूल में उन्हीं किले के किसान भाई बहनी आसानी लेके पहचान सकनी तो शुरुआती तीन फूलन के हट भी कृषक भाई बहनी शिमला मिर्चक पौधन में भल उपज जो है प्राप्त कर सकनी यह के देखे एक कृषि सलाह हम अपने तरफ आज दे सकनू कि हमारे जो किसान भाई बहनी छन वो खरपतवार नियंत्रण हेतु प्लास्टिकक मल्चिंगक इस्तेमाल हमारे जो शिमला मिर्च छ और वैगनक पहुँच छन उनमें अवश्य करन छन किले के खरपतवार नियंत्रण और ज़्यादा उत्पादन के लिए शिमला मिर्च में और बैगनक पौधन में मल्चिंग सीड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है सके तो अब माठोमात आज कार्यक्रम के हम इतने के संपन्न करनू भोला पुदगे फिर भेंट करूँ एला पुदगड़ी कृष्ण सिंह लटवाल के दो अनुमति नमस्कार हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: प्रादेशिक समाचारों का दगड़, मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारल उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा बटी लगी हरसिल और आसपासक मतदान केंद्रों का निरीक्षण करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 काउंटडाउन रनक फ्लैग ऑफ करो। आयोजनक शुभांकर क्यालू हिम तेंदुआक ले करो अनावरण। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर बेर संबंधित अधिकारियों के तीर्थ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित संचालनक देई निर्देश। और सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिबक यात्रा का आज विधि विधानक दगड़ शुभारंभ। अब समाचार विस्तारल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारल उत्तरकाशी जिला के द्वि दिनों के दौरे के दौरान भारत और चीन सीमा है लगी हरसिल और आसपासक मतदान केंद्रों का निरीक्षण करो। मुख्य निर्वाचन आयुक्तल हरसिल में स्थापित पोलिंग बूथक निरीक्षण कर वे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR क्रमांकों की जानकारी ले। यह बीच उन्होंने BLO मिंटू देवी है मतदान सूची पुनरीक्षण मैपिंग और स्मार्टफोन के माध्यम करी जाने वाले कामों के बारे में जानकारी ली। ज्ञानेश कुमारल सीमांत क्षेत्रों में BLO मिंटू देवी द्वारा करी जाने वाले कामों की सराहना करी को सीमांत क्षेत्रों में यह सक्रियता और समर्पण चुनाव प्रक्रिया को और ही मजबूत बनू।
1: इस मतदान केंद्र पर आने के बाद हमने यहाँ की BLO मिंटू देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई कि जो स्मार्टफोन पर जो बी

0: ऐप का इस्तेमाल करते हुए SIR का काम कर रही हैं और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फर्नेस, इन पांच लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रही है। ऐसे BLOs को चुनाव आयोग सलूट करता है और ये भी आशा करता है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश के सारे BLOs भी इतनी ही सक्षमता के साथ कार्य करेंगे।
1: निरीक्षणक बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजपाठ करी और अधिकारियों के दगर SIR कामों की समीक्षा बैठक लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 और काउंटडाउन रन के फ्लैग ऑफ करो। यह बीच उन्होंने मसाल जलेबेर प्रतिभागियों के दगड़ प्रतीकात्मक दौड़ ले हिस्से ले। मुख्यमंत्री ओणीवाल 31 मई को आयोजित ओणीवाल नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक शुभारंभ क्यालू हिम तेंदुआक ले अनावरण करो। यह आयोजनक लीजी देशक 27 राज्यों और देशों बटी 900 है ज्यादा प्रतिभागियों पंजीकरण कराई छू। मुख्यमंत्री कहो कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नई मौक और नई विश्वास के बढ़ावा देने का अभियान छू और उन्होंने कहो कि यह आयोजन केवल शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण न बल्कि इच्छा शक्ति, धैर्य, आत्मविश्वास के मजबूत करण का माध्यम ले छू।
2: नीति घाटी जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण स्थान पर दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए इसके लिए एक अपने अंदर आत्मविश्वास चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस चाहिए। मुझे गर्व है कि आज मेरे सामने आप सभी जुझारू और दृढ़ संकल्पित युवा खड़े हैं। साहस से पर्यटन और सामंत के आप सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मात्र उत्तराखंड नहीं है, आज का नया उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड का हर क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बन रहा है और नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन नए उत्तराखंड की शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक पर्व है।
1: श्री धामिल को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमावर्ती गांव को देशक पहली गांव बनुणक संकल्प को यो आयोजन अखिल बढ़ुणय। उन्होंने विश्वास जता कि यह सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार, होम स्टे, स्थानीय उत्पादों और युवा उद्यमिता को नई गति मिले।
2: आज जिस तेजी से चाहे माड़ा गांव हो, चाहे हमारा गुंजी का क्षेत्र हो, नाभी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा नीति हो, माड़ा हो, ऐसे अनेक बैलियां जो हमारे अंतिम गांव के रूप में जिनको हम लोग पहले जानते थे, अब वो पहले गांव के रूप में भारत के पहले क्षेत्र के रूप में उनका विकास तेजी से किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आयोजन के द्वारा उस क्षेत्र में स्थानीय उत्पाद हमारे और ज्यादा उनको प्रसिद्धि मिलेगी, युवा उद्यमिता को भी नई गति मिलेगी।
1: मुख्य सचिव आनंद वर्धनल आज देहरादून में IT पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करी। यह बीच उन्होंने संबंधित अधिकारियों के यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए।
3: मुख्य सचिव ने कहा कि चारों धामों में भक्तों को भव्य दर्शन हो और उनको के प्रकार परेशानी न हो, यह के लिए जिला प्रशासन, BKTC और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय दगड़े ऐसा में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि भक्तों की संख्या बढ़ने पे जरूरत के अनुसार रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था ले संचालित की जा सके। श्री बधनल यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पे होल्डिंग एरिया सक्रियकरण और वहाँ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए सभी जिलों में पहले से ही तैयारी सुनिश्चित की जाए। भारी दियो और भूस्खलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकासी योजना तैयार रखने के लिए निर्देश दिए छन। यह दगड़े युकाडा को ले आपातकालीन परिस्थितियों में एयरलिफ्ट व्यवस्था के लिए तैयार रहने को कही गयो। मुख्य सचिव ने जिलों में राशन और अन्य जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडारण रखने के लिए निर्देश दिए छन। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष में वेणु प्रीति
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: सिखों प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा आज विधि विधानक दगर शुभारंभ है गई। शबद कीर्तन और अरदासक बाद दोपहर 12:30 बजे हेमकुंड साहिब कपाट श्रद्धालुओं के वास्ते खोल दी गई। कपाट खुलने के मौके में लगभग 7,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे। यह पहली बेई पंज प्यारों की अगुवाई में

0: श्रद्धालुओंक जत्था गोविंद घाट बटी निशान साहिबक दगड़ हेमकुंड साहिबक लिजी रवाना है गेची। गोविंद घाट गुरुद्वार में गुरवाणी पाठक बाद जत्था घांगरिया पहुंची जहां ऊ रात बस रही। यह बाद आज राती श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचिन। राती 9 बजे गुरु ग्रंथ साहिबक पंच प्यारों अगुवाई में सचखंड बटी दरबार साहिब में सुशोभित करी गई। यह बाद सुखमणि पाठ और शबद कीर्तन है। दोपहर 12:30 बजे कपाट खोली गई और पहली अरदासक दगड़ सालक यात्रा विधि विधान शुभारंभ है गई। पौड़ी गढ़वालक सेंजी गांव में पिछले साल 6 अगस्त आई आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वासपुर है गए। बहुत ज्यादा बरखा और भूस्खलन कारण गांव में बहुत मकानों टूट फूट है गए थी और 16 परिवार बेघर ले है गए थी। इन मध्य 7 परिवार यशी जनर घर पूर तरीकाल नष्ट है गए थी। मुख्यमंत्री के निर्देश में जिला प्रशासन राहत कामों के प्राथमिकता देवे सभ्य 16 परिवारों के मुख्यमंत्री राहत कोष बटी 5-5 लाख डबलों सहायता राशि दी गई। वह जनु 7 परिवारों को जमीन पूरी तरह टूट फूट है गई थी। उनके मकान बनोना के लिए एसटीआरएफ विस्थापन मतदानक अलावा 4,25,000 रुपए की सहायता दी गई। अब इन परिवारों के मकान पूरी तरह से तैयार है गई। सेंजी ग्राम प्रधान रेखा देवी बता कि सरकार का सहयोग सभी प्रभावित परिवार अब सामान्य जीवन जी पाने।
1: सर 6 अगस्त को यहाँ पे बीते समय में जो आपदा आई थी उससे हमारे गांव में बहुत सारा नुकसान हो गया। बहुत सारे मकानों में दरारें भी आई और जो 16 परिवार थे उनके तो घर क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इसमें भी सरकार ने उन्हें 2 हिस्सों में बांटा। एक तो ये थे कि जिनको विस्थापन होना था और एक वो कि जिनका अपने ही जगह में उन्होंने उस मकान को रिपेयर कर दिया। तो जो विस्थापन वाले थे तो उनको कुछ और फंड सरकार से मिला। उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी राहत दी है। उन परिवारों ने अपना जो मकान है वो अच्छे तरह से बना दिया है और उसमें वो व्यवस्थित रूप से वहाँ पे रहने लगे हैं।
0: हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल अपर रोड में चलनवाल सीवरेज निर्माण कामों का निरीक्षण करो। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के निर्देश दी कि चारधाम यात्रा और अणिवल कावड़ म्याल को देखभेर श्रद्धालुओं की सुविधा के प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी साफ कहे कि अपर रोड में चलने वाल सभी सीवरेज काम 15 जून तक हर हाल में पूरा करी जा और कैले प्रकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जा। निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी सड़क में पड़ी मलबा और निर्माण सामग्री के तुरंत हटूणक निर्देश दी। उन्होंने कहा कि निर्माण कामों कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और श्रद्धालुओं के सुगम आने जाने के लिए सभ्य जरूरी व्यवस्था भगत में पूरी करी जानी चाहिए। आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा बटी लगी हरसिल और आसपास मतदान केंद्रों निरीक्षण करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 काउंटडाउन रन के फ्लैग ऑफ करो। आयोजनक शुभांकर कयालू हिमतेंदुआ के करो अनावरण। मुख्य सचिव आनंद वर्धन चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करी संबंधित जिलाधिकारियों को तीर्थ यात्रा सुचारू और सुरक्षित संचालन देई निर्देश और सिखों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिबक यात्रा का आज विधि विधानक दगड़ शुभारंभ। यह दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, शाम का खूबसूरत समय है और ऐसे में शाम से ही सजे खूबसूरत नगमे हम पेश कर रहे हैं फिल्म संगीत में। तो आगाज कर रहे हैं लेकिन फिल्म के गाने से। सुरेश वाडकर की आवाज है गुलजार के बोल और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
4: शाम का एक और खूबसूरत रंग पेश है कानून और मुजरिम फिल्म के नगमे के साथ। आवाजें हैं सुरेश वाटकर और उषा मंगेशकर की।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: तो सुधो शाम के सुरमई रंगों से सजे मधुर तराने इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है फिल्म संगीत। अगला गाना वासना फिल्म से है। लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर हैं। साहिर के शब्द और चित्रगुप्त का मधुर संगीत है।

तो शुदों शाम के सुरमई रंगों से सजी खूबसूरत तराने अभी आपने सुने फिल्म संगीत में। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। इस समय श्रोताओं को हम सुनवाते हैं सुगम संगीत का प्रोग्राम सबरस। आगाज कर रहे हैं पपोन की गाई इस गजल के साथ।

सुगम संगीत के प्रोग्राम सबरस में अब श्रोताओं को सुनवाने जा रहे हैं एक खूबसूरत नगमा गुलाम अली की आवाज़ में।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना

0: प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: और लीजिए सुनिए पंकज उधास को, कलाम है कैसर उल जाफरी का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुगम संगीत इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। अगली पेशकश इब्ने इंशा की गजल के साथ, आवाज जगजीत सिंह की।

कल चौदहवें की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। जगजीत सिंह की आवाज़ में यह गज़ल आपने सुनी और अब प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं दीक्षांत सहरावत और पलाश सेन की आवाज़ों में ये खूबसूरत गीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। कल हैदराबाद जीत के बावजूद क्वालिफायर से चूकी।

सुपर शतरंज क्लासिक में आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वॉचवियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगला मुकाबला अनीस गिरी से। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी उत्साह के साथ जारी और जिनेवा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कुछ खिलाड़ियों ने रजत तो कुछ ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। फाइनल मुकाबले के 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज वशिष्ठ को कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोक से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह उज्बेकिस्तान के एजान खलमा खानोव से 9-0 से हार गए। 77 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कुमार सचिन ने पदक अपने नाम किया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में रोहित ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। आइए सुनते हैं मैच का हाल।
1: प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम वर्ग में आज सूरज वशिष्ठ उप विजेता रहे। फाइनल में उन्हें कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोव से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में सूरज ने किर्गिस्तान के नूरिस्तान सुई और गुलोव को 3-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में सागर सिंह ने सऊदी अरब के मुंथिर अब्दुल्लाई जंदू को 4-0 से शिकस्त दी थी। प्रतियोगिता में नेहा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ चैंपियनशिप में रही हैं। उन्होंने पहले अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और साथ ही अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। दूसरी ओर काजल ने तेजी से खुद को भारत की सबसे होनहार कुश्ती प्रतिभाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। वे मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन, अंडर 17 विश्व चैंपियन और अंडर 20 एशियाई चैंपियन के तौर पर दानांग पहुंची हैं। प्रो रेसलिंग लीग के कई पहलवान भारतीय दल का हिस्सा हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि ये लीग भारत की अगली पीढ़ी की कुश्ती प्रतिभाओं को निखारने, विकसित करने और उनकी प्रगति के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रही है। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को मंच भी प्रदान करती है, जिसके जरिए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। इन प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय रेसलिंग के विकास में अहम योगदान देना होता है, जिससे वे उभरती हुई प्रतिभाओं को सपोर्ट कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। चैंपियनशिप से सीधे चलते लखनऊ की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला जारी है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इससे पहले पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया।
2: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने 22 गेंद पर 56, तो वहीं हेड ने 16 गेंद में 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने 48 गेंदों में 113 रन की जबरदस्त साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ईशान ने 46 गेंदों में ताबड़तोड़ 79 रन, जबकि क्लासेन ने 24 गेंदों पर 51 रन बनाए। अंतिम ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी 29 रन जोड़े। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए। बेंगलुरु की ओर से रसिक सलाम डार ने 2, तो वहीं सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट चटकाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। मिडिल ओवर्स में कप्तान रजत पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद कुणाल पांड्या ने 31 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ईशान मलिंगा को 2, साकिब हुसैन और ट्रेविस हेड को 1-1 सफलता हाथ लगी। ईशान किशन को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये ईशान किशन का आरसीबी के खिलाफ लगातार 4th अर्धशतक था। मैच के बाद ईशान किशन ने आरसीबी के साथ खेलने का अपना अनुभव साझा किया।
3: I don't know, to be very honest, like I said, I just take one match at a time, but I don't know why, but I do feel confident when I'm playing against them, and I think end of the day fortune favors the brave, and I just try to do my thing.
2: इस जीत के बावजूद हैदराबाद क्वालिफायर में जगह नहीं बना सकी। वहीं बेहतर नेट रन रेट के कारण

0: आरसीबी शीर्ष स्थान पर रही। 26 मई को क्वालिफायर वन में आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा, वहीं 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर पहुंचने वाली टीम से खेलेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी जरूर, कल सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की, लेकिन वे क्वालिफायर में अपनी जगह बनाने से पीछे रह गए। वहीं आरसीबी और गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर वन में अपनी जगह बना ली है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं विशेष, हमारे सहयोगी। विशेष, कल अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टॉप टू की जगहें फिक्स हो गई, लेकिन चौथे स्थान के लिए अब भी जद्दोजहद बाकी है। कौन से ऐसी टीम है जो आपको नजर आ रही है कि चौथे स्लॉट के लिए अपना स्थान पुख्ता करती नजर आ रही है?
2: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि तीन टीमें अपनी जगह पहले ही प्लेऑफ के लिए पक्की कर चुकी हैं और तीनों लगभग जो है बराबर दर्जे की टीमें हैं और 18-18 अंकों के साथ इन्होंने प्लेऑफ्स में जगह बनाई है। सिर्फ नेट रन रेट के चलते इन टीमों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहना पड़ा है। वहीं अगर बात करें हम चौथे स्थान की, तो जिसके लिए राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली अभी रेस में बनी हुई हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो वह अपना मुकाबला पहले तो जीतें, उसके बाद उन्हें राजस्थान, कोलकाता और पंजाब तीनों के मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो वो अपना मुकाबला जीतें, साथ ही साथ राजस्थान और पंजाब के मुकाबले हारने की कामना करें। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सबसे पहले अपना मुकाबला जीतें और राजस्थान अपना मुकाबला यदि हारती है तो पंजाब को प्लेऑफ्स में जगह मिलेगी। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे सुनहरा मौका उन्हीं के पास है कि बस वो, उन्हें अपना मुकाबला जीतना है और उनके लिए प्लेऑफ्स में स्थान पक्का हो जाएगा।
1: तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स का फॉर्च्यून जो है अपने हाथों में है और वो अपने मुकाबला जीत करके सीधे टॉप चार में जगह बना लेंगे। अब सीधे रुख करते हैं शतरंज की ओर। सुपर शतरंज क्लासिक में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने प्रतियोगिता के आठवें दौर में फ्रांस के मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगली बाजी में प्रज्ञानंदा का मुकाबला अनीस गिरी से होगा। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में अब तक के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में।
3: प्रतियोगिता के मुकाबले में आज आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल करने के कुछ अच्छे मौके गवा दिए। दिन के अन्य मुकाबलों में अमेरिका के फेबियानो कारुआना और जर्मनी के विसेंट कीमर के बीच बाजी ड्रॉ रही, जबकि विश्व चैंपियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जावोखेर सिंदारोव ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। नीदरलैंड के एक अन्य खिलाड़ी अनीश गिरी को रोमानिया के डीएक बोगदान डेनियल से हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के नाम वापस लेने के बाद अमेरिका के वेस्ली सो को वॉक ओवर मिला। अब प्रतियोगिता में आखिरी दौर का खेल बाकी है, जहां पांच खिलाड़ी खिताब के लिए दावेदारी पेश करेंगे। अभी कीमर और कारुआना दोनों 5-5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। सिंदारो, वेस्ली और फोरेस्ट 4.5 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे, जबकि प्रज्ञानंदा, गिरी और वाचियर लाग्रेव 4-4 अंक लेकर संयुक्त छठे स्थान पे हैं। डीएक बोगदान डेनियल ने अपना अभियान 3.5 अंकों के साथ समाप्त किया। अंतिम दौर में उन्हें वॉक ओवर मिलेगा, जिससे उनका स्कोर 4.5 हो जाएगा। सिंदारोव पर दूसरे दौर में जीत के बाद प्रज्ञानंदा की दूसरी जीत की तलाश वाचियर लाग्रेव के खिलाफ लगभग पूरी हो गई थी। प्रज्ञानंदा अपनी अंतिम बाजी में गिरी का सामना करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: आर प्रज्ञानंदा ने लगातार शार्प माइंड और दमदार खेल प्रदर्शन के दम पर पहले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई और अपनी अमिट छाप छोड़ी। हालांकि कैंडिडेट्स में उनका प्रदर्शन मिला जो रहा, तो ऐसे में ये प्रतियोगिता उनके लिए बेहद अहम है। कर लेते हैं अब एथलेटिक्स पे, जहां झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। आइए चलते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता महवीश के पास। महवीश हमारे साथ रांची से जुड़ गई हैं। तो महवीश, रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस समय राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता चल रही है। पहले दिन तो खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए, लेकिन आज दूसरे दिन के मुकाबले में कौन कौन से बड़े उलटफेर या रिकॉर्ड देखने को मिले?
4: जी हाँ, इस प्रतियोगिता में इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों की 100 मीटर रेस रही है। जैसा कि आपने बताया कि आज खेले हुए फाइनल में रिलायंस के खिलाड़ी गुरिंदरवीर सिंह ने ओडिशा के धावक अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया।

0: और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पुरुषों के 400 मीटर में तमिलनाडु के विशाल टीके ने 44.98 सेकंड का भी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अनुभवी एथलीट सीमा ने 57.29 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। आज पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा के फाइनल में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं महिलाओं के शॉर्ट पुट स्पर्धा का खिताब रिलायंस की कृष्णा जयशंकर ने जीत लिया है। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की सुदेशना हनुमंत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आज
1: मैविस, इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के प्रदर्शन प्रतियोगिता पर क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है?
0: बिल्कुल, रांची में पारा लगातार बढ़ रहा है, यहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों का हौसला कम नहीं हुआ है। देश भर के करीब 700 एथलीट इस कड़कती धूप में भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। आयोजकों ने खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए मैदान पर ORS, मेडिकल टीम और पर्याप्त पानी की विशेष व्यवस्था कर रखी है।
1: महेश, ये प्रतियोगिता आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉमनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का प्रदर्शन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के लिए बेहद अहम है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के लिए आगे चयन की क्या प्रक्रिया होने वाली है?
0: जी बिल्कुल, ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन होना है। जो भी खिलाड़ी यहाँ तय किए गए क्वालिफिकेशन मार्क को छू रहे हैं उन्हें सीधे भारतीय टीम का टिकट मिल रहा है, तो अगले दो दिनों में कई और रोमांचक फाइनल मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद महेश, आपने ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताया जिनसे पूरे देश को उम्मीदें रहती है, और जैसे जैसे प्रतियोगिता अंतिम रूप लेगा हम और भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करते देखेंगे। बात करते हैं स्क्वैश पर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। लड़कों के वर्ग में शिवेन अग्रवाल, वहीं लड़कियों में अनिका दुबे ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। अब सीधे चर्चा कर लेते, बात कर लेते जिनेवा ओपन टेनिस पर। जिनेवा ओपन 2026 टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे। न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार माइकल विनस के साथ खेलते हुए फाइनल मुकाबले में रोमेन अर्नियार्डो और मार्क पॉलमेन से 6-3, 6-7, 7-10 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जरूर वे उप विजेता रहे, लेकिन कई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें यूकी भांबरी ने और जिसको अपने नाम किया है। 18वीं वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने 2025 में दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे US ओपन जैसे प्रमुख टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल खेल चुके हैं। रुख कर लेते गोल्फ की ओर। बेल्जियम में भारतीय गोल्फर युवराज संधू ने रिंकवेन इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में चल रहे सौडाल ओपन में कट हासिल किया, लेकिन शुभंकर शर्मा चूक गए। दक्षिण अफ्रीका के जेंडर लोम्बार्ड और फ्रांस के टॉम वैलियन दूसरे दौर के बाद संयुक्त बढ़त बना चुके हैं। और श्रोताओं, हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला जारी है। लखनऊ ने 4 विकेट पर 14 ओवर में 134 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ

0: और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
0: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।

0: अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure.

0: Akashvani at 90.
1: इंद्रधनुष का अगला रंग हम लेकर आए हैं जिंदगी 50-50 फिल्म के नगमे के साथ। नगमनिगार हैं शब्बीर अहमद, मौसीकार अमजद नदीम, आवाज़ रेखा भारद्वाज की।

और अब इंद्रधनुष का समापन कर रहे हैं अरिजीत सिंह के गाए मिक्की वायरस फिल्म के गीत से। गीत और संगीत हनीफ शेख का है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुँच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, एल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले

0: वाले विद्यार्थियों न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT कुछ NIT कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोग का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं और उससे क्या है कि अगर आप मटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है प्लास्टिक्स है तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च मिला है इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर

0: तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुँचते हैं। और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक

0: नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
2: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
3: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, इसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, बट थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। K.R. रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर।

0: भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
1: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
2: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का आजीवन साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
3: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने

0: मुझे कंसंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे आनंद सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
2: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूं आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूं और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह

0: चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। He is an A-grade vocal artist of Akashwani and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Sri Umayalpuram K. Shivaraman, Sri Sri Mushnam Raja Rao and Sri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Changanasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaran Narayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Sri P.R. Kumara Kerala Varma and Sri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the R.L.V. College of Music and Fine Arts, Tripunathra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचम सेट टू खंडु चापु ताल।

0: अप्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहि माम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वाज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगना श्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।

0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspectives on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for PAC Silica.
3: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. In the 19th edition of Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government departments and organizations were distributed. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of the next month, citing that the land was acquired for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest project. Delhi government decided to transform all sub-registrar offices into modern technology-driven and citizen-friendly service centres. The initiative aims to eliminate delays, corruption, middlemen and unnecessary procedural hurdles in property registration services across the city. In a statement, Chief Minister Rekha Gupta said the new model registrar office will provide facilities such as digital assistant for counters, smart token systems, online appointment booking, real-time application tracking and trained staff to ensure transparent and time-bound service delivery. The centre has released more than 527 crore rupees under the National Health Mission as the first tranche for West Bengal for financial year 2026-27. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda today reviewed the healthcare systems in the state during a virtual meeting with Chief Minister Suvendu Adhikari. The Chief Minister also announced that Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. In China, 90 people have been killed in a gas explosion at a coal mine in Shanxi province. The gas explosion occurred at the Liushenyu coal mine in Jinan County yesterday. The state media reported that 201 miners have so far been rescued while rescue efforts are ongoing. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief at the loss of lives in a mining accident in China. In a social media post, he extended his condolences to President Xi Jinping and the people of China on behalf of the people of India. In IPL cricket, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at Ikana Cricket Stadium in Lucknow tonight. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants in Lucknow, Punjab Kings made 200 for 3 in 18 overs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. Put into bat, Lucknow Super Giants posted 196 runs.